0: प्रेमी लाली जी, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: बताते चलिए सुबह की ठीक है 6 बज रहे हैं। समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम आशिता के साथ है संध्या। नमस्कार आपको आशिता।
1: नमस्कार रिया और श्रोताओं को भी सुप्रभात। 30 मई शनिवार का दिन, इस पहले प्रातकालीन संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले हम स्थानीय खबरों के बारे में बात करते हैं। अमेरिकी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा आयोजित 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में मॉरिशस और सेशल्स की विभिन्न संस्थाओं के लगभग 50 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटने के लिए स्मार्ट इंटेलिजेंस प्रणाली को मजबूत करना और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को और सुदृढ़ करना है। मॉरिशस रोड्रिग्स में मतदाता पंजीकरण अभियान आज दोपहर 1 बजे समाप्त हो जाएगा। चुनावी सूची को अपडेट करने के लिए बड़ी संख्या में लोग अपने विवरण की जांच और संशोधन कराने केंद्रों पर पहुंचेंगे। और रोड्रिग्स में मतदाता पंजीकरण अभियान, जैसे कि आपको बताया गया है, आज शनिवार को समाप्त होगा। इस वर्ष ये प्रक्रिया विशेष परिस्थितियों में पूरी की जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर ये अभ्यास चुनावी तैयारियों के लिए अहम माना जा रहा है। राज्यसभा में कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल पर बहस के दौरान प्राइवेसी यानी कि निजता और डिजिटल अधिकारों की सुरक्षा का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। विपक्ष और सरकार दोनों ने संविधान सुधार की आवश्यकता और जन परामर्श की अहमियत पर अपने अपने तर्क रखे। कैबिनेट की बैठक ने सप्लीमेंटरी अप्रोप्रिएशन 2024-2025 बिल, बंदरगाह विकास परियोजना और राज्यसभा में मॉरिशन क्रियोल भाषा के उपयोग से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन फैसलों को देश के प्रशासनिक और संस्थागत सुधारों की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। मॉरिशस यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में स्टूडेंट नेशनल एंटरप्रेन्योर एटीजॉन कार्यक्रम का फाइनल आयोजित किया गया। इस पहल का उद्देश्य छात्रों में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ 3 प्रोजेक्ट को पुरस्कृत किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वैश्विक तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नई अंतर्राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल की घोषणा की है। उन्होंने अगले वर्ष रूस में एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय एआई सम्मेलन आयोजित करने का भी प्रस्ताव रखा है। तो इसी के साथ ये पहला फ्लैश न्यूज समाप्त हो चला। बढ़ते हैं अब हम मौसम संबंधी जानकारियों की ओर।

सुनते हैं मौसम का हाल। आम हालत, पूर्व से आने वाले अस्थिर बादलों का असर हमारे स्थानीय मौसम पर पड़ने लगेगा। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है। धीरे धीरे दिन के दौरान विशेषकर पूर्वी और ऊंचाइयों पर बादल घिराएंगे और वर्षा होगी। जहां पर आमतौर पर कोहरा छाता है, वहां पर कोहरा छाने लगेगा और शाम के समय विशेषकर पूर्वी और सेंट्रल प्लेटो वाले इलाकों पर रहकर वर्षा होती रहेगी। रात के दौरान बाद में आसमान साफ हो जाएगा। तापमान, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच। अधिकतम तापमान ऊंचाइयों पर 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। हवा सुबह के समय पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हल्की बहेगी और झोंके जब बारिश होगी तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। प्रवाह रेखा के पार समुद्र खराब रहेगा और दक्षिण की ओर से 2 मीटर 50 सेंटीमीटर के जुआर उठेंगे। खुले समुद्र में न निकलने की सख्त

0: बलाती जाती है। आज सूर्योदय सुबह 6:37 पर और सूर्यास्त शाम 5:37 पर।
1: RM3 Radio.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए है, हम उसकी तारीफ़ करते हैं, उसी से मदद चाहते हैं और उसी से मग़फ़िरत तलब करते हैं. हम अपने नफ्स के शर से और बुरे आमाल से अल्लाह ताला की पनाह चाहते हैं. अल्लाह ताला जिसे हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और वो जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता. और मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं. और मैं गवाही देती हूँ कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल है. सामिन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. ये मनोरंजन रेडियो की उर्दू नशरियात है. मैं हूँ आपकी मेज़बान अबीनाज जान अली. सबाल खैर प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है. अंजू टेक्निकी मदद दे रही है. प्रोग्राम का आगाज़ कुरान मजीद की तिलावत से करने जा रहे हैं. बागौर व अदब समात फरमाएं.

हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की जीनत तीन चीज़ों में है, माल, औलाद और औरतें। आखिरत की जीनत तीन चीज़ें हैं, इल्म, तक्वा और सदका। बदन की जीनत भी तीन चीज़ों में है, कम सोना, कम खाना और कम बोलना। और दिल

या अल्लाह हमारे लिए हमारा काम आसान कर दे, हमारी तौबा कबूल कर और हमारे गुनाह धो दे। ऐ अल्लाह वालिदैन की उम्र में बरकत अता फरमा और उनके दिल में नूर अता फरमा और उनके चेहरे में रोशनी कर दे और उनकी रोज़ी में फरावानी अता फरमा और उनको अपने आप से राज़ी कर दे और उनसे हर बुराई और बीमारी को दूर कर दे। ऐ अल्लाह हमसे ऐसे दरवाज़े पर दस्तक न दिलवाना जो हमारा नहीं है। या अल्लाह हमारी ज़िंदगी में नामुकम्मल मोहब्बत को दाखिल न होने देना, हमारी रूह को उससे मुंसलिक न कर जो उसका नहीं। ऐ अल्लाह गम के बग़ैर खुशी अता फरमा।

ए अल्लाह पाक, हम पर अपनी ख़ास रहमत नाजिल फरमा और तमाम नागहानी आफात, बीमारियों, नुकसानात और रंजो फ़िक्र से हिफाजत फरमा। हमारे ज़िंदगी का सबसे बड़ा असासा रब्बे करीम की रहमत और फ़ज़लो करम है।

अल्लाह हमें हमारी औलाद के बारे में ऐसे गम में मुब्तला न करना जिससे हमारी आंखें अश्कबार हो जाएं। ऐ अल्लाह उन्हें दुनिया व आखिरत की सआदत नसीब फरमा और उनके बारे में हमें आजमाइश में मुब्तला न करना। ऐ अल्लाह उनकी उम्र और सेहत में बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह उन्हें हर हासिद और कीना रखने वाले की नज़रें बद से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह हमारे सीनों को उनके लिए कुशादा फरमा और हमारे दिलों में उनके खिलाफ कोई नफ़रत पैदा न होने दे। ऐ अल्लाह जब वो हमारी निगाहों से ओझल हों तो अपनी इस निगाह हिफाजत से उनकी हिफाजत फरमा जो ना गफलत करती है और न सोती है। आमीन या रब्बल आलमीन। सामिन कराम सबाल खैर प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म होने जा रहा है। टेक्निकी मदद के लिए अंजू का शुक्रिया। अपनी मेज़बान अबिनाज जान अली को इजाज़त दे। खुदा हाफिज़। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैका।

मन मन मन मेड़िए चढ़ू हरखनी आ जहेली चढ़ू तारा विना मने फावतू नथी मम्मी ना हाथ नु बनेलू जमवानू नथी भावतू केव थाय तारा मारा जो लगन थाय मौजू मौजू मौजू मौजू पड़ी।

भक्ति में शक्ति। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप इस समय सुन रहे हैं हमारा पवित्र कार्यक्रम भक्ति में शक्ति। इस सुहानी सुबह में हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। दोस्तों, जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर मन में श्रद्धा और भक्ति हो तो हर रास्ता आसान लगने लगता है। आज का दिन प्रेम, दया और सेवा का संदेश लेकर आया है। चलिए मिलकर भगवान का नाम लेते हैं और अपने मन को शांति से भर देते हैं। और इसी के साथ हम सबसे पहले प्रणाम करते हैं भगवान गणेश को।

एक बार फिर विदिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम भक्ति में शक्ति। भक्ति वो रोशनी है जो अंधेरों में भी हमें सही रास्ता दिखाती है। जब हम सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं ना, तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का जन्म होता है। आज हम सब ये संकल्प लें कि हर दिन किसी एक व्यक्ति की मदद अवश्य करें, क्योंकि सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। भगवान आपके घर में सुख शांति और समृद्धि लाएं।

अभी अभी अगर आप हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, नमस्कार, शुभ शनिवार। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भक्ति में शक्ति। श्रोताओं, शनिवार का दिन तो शनिदेव और हनुमान जी की आराधना के लिए बहुत पवित्र माना गया है। आज के दिन अगर हम सच्चाई और ईमानदारी के साथ प्रार्थना करें तो जीवन के कष्ट कम होते हैं। दोस्तों, अपने मन से गुस्से को, द्वेष को दूर करिए और प्रेम को अपनाइए, फिर देखिए जीवन कैसे प्यारा सा लगने लगता है।

प्यारे श्रोताओं, आप सबको हम एक बार फिर हमारे कार्यक्रम भक्ति में शक्ति में स्वागत करते हैं। जी हाँ श्रोताओं, भक्ति में शक्ति हम आपके लिए लेकर आए हैं आध्यात्मिकता और शांति का संदेश। आज की तेज भागती जिंदगी में मन की शांति बहुत जरूरी है और ये शांति मिलती है भगवान के नाम से। रोज कुछ पल

इस समय आप भक्ति में शक्ति कार्यक्रम विदिता के साथ सुन रहे हैं। श्रोताओं, हमारे संस्कार हमें सिखाते हैं कि बड़ा वही है जो दूसरों की सेवा करे। भक्ति सिर्फ मंदिर जाने से नहीं होती, बल्कि हर जरूरतमंद की मदद करने में भी है। आज इस पवित्र सुबह हम सब ये प्रतिज्ञा करें कि हम प्रेम और दया का संदेश फैलाएंगे। भगवान की कृपा से आपके हर दिन मंगलमय होंगे।

जय श्री राम दोस्तों, और आप सभी को बस हमारे इस कार्यक्रम में हम फिर से स्वागत करते हैं। हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करती हूँ कि अपने मन में कभी कभी कभी कोई भी ऐसी चीज़ न लाएं जिससे आपके जीवन में उनकी ऊर्जा जो है वो नकारात्मक हो जाए। जी हाँ, ये सब हमारी सोच का ही होता है। हम तो यही चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि हो, आपके जीवन में कोई दुख ना आए। अगर हम सच्चे दिल से ईश्वर का नाम लेते हैं तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। चलिए श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम को आगे ले चलते हैं।

पता है श्रोताओं, जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ मुश्किल लगने लगता है, लेकिन भगवान पर विश्वास हमें कभी टूटने नहीं देता। ये विश्वास ही है जो हमें बांध के रखता है। भक्ति हमें अंदर से मजबूत बनाती है। इसलिए हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ शुरुआत कीजिए अपने जीवन का। भगवान का धन्यवाद कीजिए, भगवान आपके जीवन में खुशियाँ और सफलता भर देंगी। प्रिय श्रोताओं, कार्यक्रम भक्ति में शक्ति, यहाँ पर हमारा कार्यक्रम जो है इसका समय समाप्त होने जा रहा है। आपने भक्ति के साथ हमारे इस कार्यक्रम में आपने हमारा साथ दिया, हमें सुना। आज्ञा दीजिए आप सभी को हमारी ओर से शुभ दिन। नमस्ते।

马里求斯广播电台听众朋友上午好，欢迎收听音乐风景线。周末午间，卸下一周的忙碌与奔波，

0: के लिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार एक बार फिर से अर्षिता के साथ। नमस्कार आपको।
1: नमस्कार मनीषमा, श्रोताओं को भी नमस्कार। 12 बजे के समाचारों में आप सभी लोगों का स्वागत है। अमेरिकी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा आयोजित 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में मॉरिशस और सेशल्स की विभिन्न संस्थाओं के लगभग 50 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटने के लिए स्मार्ट इंटेलिजेंस प्रणाली को मजबूत करना और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को और सुदृढ़ करना है। मॉरिशस और रोड्रिग्स में मतदाता पंजीकरण अभियान आज दोपहर 1 बजे समाप्त हो जाएगा। चुनावी सूची को अपडेट करने के लिए बड़ी संख्या में लोग अपने विवरण की जांच यानी चेक और संशोधन कराने केंद्रों की ओर बढ़ रहे हैं। रोड्रिग्स में मतदाता पंजीकरण अभियान फिलहाल जारी है और जैसे कि आपको बताया गया है कि ये अभियान आज दोपहर 1 बजे समाप्त हो जाएगा। इस वर्ष ये प्रक्रिया विशेष परिस्थितियों में पूरी की जा रही है और प्रशासनिक स्तर पर ये अभ्यास चुनावी तैयारियों के लिए अहम माना जा रहा है। राष्ट्रीय सभा में कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल पर बहस के दौरान प्राइवेसी और डिजिटल अधिकारों की सुरक्षा का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। विपक्ष और सरकार दोनों ने संविधान सुधार की आवश्यकता और जन परामर्श की अहमियत पर अपने अपने तर्क रखे। कैबिनेट की बैठक ने सप्लीमेंटरी अप्रोप्रिएशन 2024-2025 बिल, बंदरगाह विकास परियोजना और राष्ट्रीय सभा में मॉरिशन क्रियोल भाषा के उपयोग से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन फैसलों को देश के प्रशासनिक और संस्थागत सुधारों की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। और रोड्रिग्स के बेलास्को स्थित नए समुद्र तट क्षेत्र का नाम प्लास रास नासिबेबी होगा। कार्यकारी परिषद ने ये निर्णय प्रसिद्ध रोड्रिग्स कलाकार जोसेफ निकोला एमिलिया, जिन्हें रास नासिबेबी के नाम से जाना जाता था,

0: को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार ये नामकरण उनके सांस्कृतिक योगदान, संगीत के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों और रॉड्रिग्स की पहचान को मजबूत बनाने में निभाई गई उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मानित करता है। इस पहल के माध्यम से रॉड्रिग्स की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और आने वाली पीढ़ियों तक उनके योगदान को पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। और फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन FSC के CEO डिजिरे वेंकटाचलम अगले 30 जून को अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। उनका ये निर्णय पारिवारिक कारणों से लिया गया है क्योंकि उन्हें विदेश में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी। गौरतलब है कि उन्होंने सितंबर 2025 में ये पद संभाला था और उनका कार्यकाल एक वर्ष से भी कम समय का रहा। FSC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आश्वासन दिया है कि संस्था के कार्यों की निरंतरता बनी रहेगी और सभी परिचालन गतिविधियां सामान्य रूप से जारी रहेंगी। साथ ही बोर्ड ने उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू किए जाने की घोषणा भी की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वैश्विक तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नई अंतर्राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल की घोषणा की है। उन्होंने अगले वर्ष रूस में एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय AI सम्मेलन आयोजित करने का भी प्रस्ताव रखा है। तो इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। साथ रहिए, बढ़ते हैं हम शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। रोसेट रोड पुतिव्याजी सैपिया में 86 साल की 86 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती बगमोनिया लोफर, जिन्हें देवरानी के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके बेटे मनोज गोवर्धन के घर पुतिव्याजी सैपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेगोसों सैपिया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। रॉयल रोड पुथोदो हमलेट में 60 साल के 60 ईयर्स ओल्ड के श्री विजय आनंद सुहाती, जिन्हें पोलो के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 2 बजे उनकी पत्नी श्रीमती संध्या सुहाती के घर पुथोदो हमलेट से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। गर्ल डू लू वेद सैपिया में 69 साल की 69 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती तिलोत्तमा धनवा, पैदाश नाम फेकनाथ, और जिन्हें सुरेखा के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके बेटे श्री कृष्ण कुमार शर्मा धनवा के घर वैद्य सैपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकोसा सैपिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। शोक में डूबे इन तीनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: RM3 Radio. Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: You're listening to RM3 Radio Mana.

नमस्कार, प्रणाम, आदाब और एक प्यार भरा स्वागत करते हैं यहाँ पर आप सबों का सुहाना सफर प्रोग्राम में। मैं हूँ आपकी मेजबान देवीना और आप सुन रहे हैं सुहाना सफर और एम फ्री रेडियो मनोरंजन पर। जहाँ सुहाना सफर, जहाँ संगीत के सुनहरे मोती सजते हैं और यादों की खुशबू हर दिल को महका जाती है। शनिवार की इस खुशनुमा दोपहर में अगले दो घंटों तक हम साथ रहेंगे, सुनेंगे कुछ अनमोल गाने, कुछ पुराने गाने, साथ में 70s, 80s, 90s के दशक के कुछ सदाबहार नगमे जिनकी मिठास आज भी दिलों में वैसी ही बसी हुई है। वैसे कहते हैं जीवन में खुशियां पाने का सबसे सरल तरीका है

छोटी छोटी बातों में भी मुस्कुराने की आदत डालना। तो मुस्कुराइए, गुनगुनाइए और शुरू करते हैं अपने संगीत भरे सफर को मेरे दोस्त। अभी आपने सुना शब्बीर कुमार साहब की आवाज़ में, हम कितने खुश नसीब हैं ये हम जानते हैं, एहसान तेरा ए नसीब मानते हैं हम। हम भी कितने खुश नसीब हैं कि आप लोगों का साथ देने के लिए यहाँ पर पहुँच जाते हैं रेडियो मनोरंजन पर, और आप लोग हमारा साथ देते हैं, हम जानते हैं, बड़े प्यार से हमारा स्वागत करते हैं अपने घरों में, अपने रेडियो तक द्वारा आप जहाँ भी हो आपका प्यार भरा स्वागत करते हैं। तो देविना है आपके संग आज और 2 बजे तक हमारा और आपका सुंदर साथ रहेगा। तो बस आज मौसम कैसा है, मौसम तो सुहाना है और हल्की हल्की बारिश हो रही है कुछ इलाकों में, और बाकी तो बस धूप ही है और साथ में ठंडी ठंडी हवाएं। तो ऐसे में नीले नीले अंबर पर क्या होता है, सुनते हैं सादा सरगम की आवाज़ में।

जा हो चुका है 12:30 और दिविना है आपके संग आज। वैसे शनिवार को अनीता आती है, आज वो नहीं आ पाई, इससे मैं हूँ दिविना यहाँ पर आपका साथ देने के लिए 2 बजे तक। आपके इतने मैसेजेस आ रहे हैं, हम बारी बारी से मैसेजेस पढ़ेंगे और साथ ही अभी लाइन खुलने वाले हैं 4028070 पर आप सब लोग हमसे बातें कर सकेंगे और मैसेजेस के लिए 5250620050026200

बिल्कुल, आपका स्वागत करते हैं सुहाना सफर प्रोग्राम में। दोस्तों, संगीत जीवन की थकान दूर करने वाली सबसे सुंदर दवा है, आप मानेंगे ही। और यदि मन शांत हो तो हर सफर सुहाना लगता है, और यदि दिल में प्रेम हो तो हर रिश्ता खूबसूरत बन जाता है, है ना। वैसे इस समय अगर आप लोग परिवार के साथ, फ्रेंड्स के साथ हैं, भोजन का आनंद ले रहे हैं, सुबह नापेची शुभाहार साथ में कहीं सफर कर रहे हैं या घर पर आराम, तो हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी मुस्कान ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। वैसे कैसे भूलें कि कल के लिए जो विशेष दिन है मदर्स डे के लिए, आज तो जोरों शोरों से शॉपिंग हो रही है, सभी लोग, इतनी गाड़ियां हैं सड़क पर, इतने लोग हैं सड़क पर भी, और लोग बाजार जा रहे हैं, लाफा जा रहे हैं, सुपरमार्केट जा रहे हैं कल की तैयारियों के लिए, साथ में कहीं जो है वो शॉपिंग मॉल में, तो बच्चे लोग हैं, बड़े जो हैं इस दिन का इंतज़ार करते हैं कि कब फैमिली टाइम। तो वैसे कहेंगे ना हैप्पी मदर्स डे कल के लिए, मगर अगर देखा जाए तो यह है फैमिली डे। तो आप सभी को इन एडवांस हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी फैमिली डे, और साथ में कैसे भूले हैप्पी पापा डे, क्योंकि बहुत से ऐसे पापा भी हैं जो माँ का किरदार निभाते हैं, अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। सो आप सभी को हमारा बिग सैल्यूट है। आप जो भी बच्चे की देखरेख करते हैं, बड़ों की देखरेख करते हैं, तो आप कोई किसी माँ से कम तो नहीं। बस आप सबों को सलाम, और ऐसे ही गॉड ब्लेस यू ऑल। सो ऐसे में एक हम जानते हैं आज जो है बहुत से गानों की फरमाइश होगी माँ पर, परिवार पर, तो जब तक हो सके हम उन गानों को ज़रूर बजाएंगे, और इन बिटवीन हम कुछ रोमांटिक गाने भी चलाने वाले हैं। सो बस ललिता जी ऑफ कालबास, उन्होंने पहला मैसेज भेजा है। ललिता जी नमस्कार। सो रिक्वेस्टिंग ए सॉन्ग फॉर ऑल द मदर्स ऑफ कोर्स। सो जो गाना आपने मांगा है, माँ है मोहब्बत का नाम, हाँ, सच ए लवली सॉन्ग। सो आप सभी माओं के लिए, आप सभी परिवारों के लिए, आप सभी के लिए ये गाना रफ़ी साहब की आवाज़ में।

0: खाना सफर, खाना सफर।
1: जहाँ कितनी अच्छी, कितनी शीतल, कितनी प्यारी प्यारी हैं हमारी माताएं। हम भी माँ हैं, हम भी कभी बच्चे थे, आप भी कभी बच्चियाँ थी। और आपको वो हम कहते हैं ना, आप कितने भी उम्र का हो के हो जाए, मगर माँ, हमारी माँ हमेशा हमें बच्चों की तरह देखती है ना। और कितने ऐसे लोग हैं जिनके माँ बाप अब नहीं हैं, फिर भी अब आप भी माँ बाप हैं, तो आपके पास जितना हो सके अपने बच्चों के साथ, अपनों के साथ वो समय बिताइएगा, क्योंकि माँ जहाँ भी हैं हमेशा हमारी सलामती के लिए दुआ मांगती हैं। तो बस आप सभी माओं को इन एडवांस हैप्पी मदर्स डे। वैसे आज का सुहाना सफ़र इस प्रोग्राम में इन बिटवीन उस महान शक्ति को जिसके बिना जीवन की कल्पना अधूरी है, माँ, और उस अनमोल बंधन को जिसे हम परिवार कहते हैं, इसको, इसके पर कुछ गाने हम समर्पित करेंगे, साथ में आपकी डेडिकेशंस, आपके कुछ रिक्वेस्ट। वैसे कहते हैं ना, माँ केवल एक शब्द नहीं बल्कि प्रेम, त्याग, ममता और समर्पण का सागर है। संसार में शायद ही कोई ऐसा रिश्ता हो जो माँ के प्रेम जितना निस्वार्थ और पवित्र हो। जब हम छोटे होते थे ना, तो माँ हमारी उंगली पकड़ कर चलना सिखाती थी, और बड़े होने पर भी उनकी दुआएं हमेशा हर कदम की रक्षा करती हैं। वैसे कहते हैं, भगवान हर जगह नहीं हो सकते थे, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया। तो बस आप सभी माओं को हमारा सलाम है, बार बार सल्यूट है। और ऐसे में एक मैसेज पढ़ते हैं, है गुड आफ्टरनून देविना जी, गुड आफ्टरनून अनिता जी, फिकॉन फ्लैग, कैसे हैं आप? हम ठीक हैं, आप भी ठीक होंगे। तो लवली सॉन्ग, थैंक यू। तो सभी मामा के लिए, हमारे लिए भी थैंक यू, सभी रेडियो मनोरंजन की टीम के लिए थैंक यू, उनको सभी को हैप्पी मदर्स डे कह रही है। तो मामा को ये जो गाना है उन, हाँ पता नहीं सॉन्ग है, मगर सॉन्ग हमें पता है, मंदिर में भगवान रहते हैं। वैसे फिल्म है मेरे बाद, और इसमें माया, बेबी प्राची, बेबी प्रिया और लद की आवाज़ें हैं। सो बस ये गाना अनीता जी की ओर से आप सभी माओं के लिए।

0: सुहाना सफर।
1: जहाँ दोस्तों जीवन की इस भागदौड़ में, इस बिजी लाइफ में हम उलझ जाते हैं, लेकिन एक माँ कभी अपने बच्चों के लिए व्यस्त नहीं होती, बिजी नहीं होती। उसकी सुबह बच्चों की

मुस्कान से शुरू होती है और रात उनकी खुशियों की प्रार्थना के साथ समाप्त होती है। माँ के हाथों का भोजन, उसकी दांत में छिपा स्नेह, उसकी चिंता और उसकी दुआएं, ये सब जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, आप मानेंगे ना। आज यदि आपकी माँ आपके साथ हैं तो उन्हें गले लगाइए, उनका धन्यवाद दीजिए, उनके लिए कुछ कीजिए ना। और यदि वे इस दुनिया में नहीं हैं तो उनकी सीख, उनकी सोच, उनकी संस्कारों को अपने जीवन में जीवित रखिए। बस माँ के लिए आप ये कर सकती हैं ना। माँ को नहीं चाहिए बड़े बड़े तोहफे, अगर आप दे सके तो ठीक है, अगर आप ना दे सके तो बस एक बुके या एक गुलाब या फिर बस माँ के साथ कुछ वक्त बिताइएगा, इससे ज़्यादा माँ को चाहिए क्या। मगर आज के मॉडर्न ज़िंदगी में हम ये कहते हैं कि तोहफे के बिना हम ये सब नहीं मना सकते, मगर अच्छी बात है अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बस ज़रूर दीजिए, क्योंकि हमेशा माँ ने आपके लिए कुछ ख़रीदा है, तो अब मौका मिलेगा कि आप माँ के लिए कुछ ख़रीदें जो उनको अच्छा लगे ना। तो बस अब छोटी बहू फिल्म से लिया गया एक बहुत ही सुंदर गाना किशोरदा की आवाज़ में, और ये जाएगा ख़ास तौर पर श्यामा जी के लिए, श्यामा रघुनंदन जी घोंघुब, और ये जाएगा उनके भैया जयप्रकाश के लिए, भाभी नम्रता, केशव युधिष और साथ में उनकी सहेलियाँ जो हैं खास नंदिनी उखली को लिए, और जितने भतीजे हैं भतीजियाँ हैं, और श्यामा जी कभी अध्यापिका रह चुकी है, और हम जो टीचर्स हैं ना, हमारे लिए जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वे बच्चे ही की तरह होते हैं, हम उनकी मदद करते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनको जीने के सलीके हम उनको सिखाते हैं, और दिन भर उनके साथ रहकर ना कुछ ऐसे करते हैं जो माएँ करती हैं। तो बस हमारे सभी स्टूडेंट्स की ओर से, श्यामा जी आपके स्टूडेंट्स जो रह चुके हैं उनकी ओर से आप सभी आपको सलाम है, हमेशा आपने उनका साथ दिया है, उनकी सेवा की है, उनका हेल्प किया है। सो बस वे कहीं भी होंगे हमेशा आपको याद करते हैं श्यामा जी। बस ऐसे ही जो आपके भतीजे हैं भतीजियां हैं, आपके आसपास जितने बच्चे हैं, आप उनका साथ ऐसे ही दीजिएगा, उनको अच्छी अच्छी सलाह दीजिएगा, जैसे आप लोग हमें भी सिखाती हैं कुछ ना कुछ। तो बस आप सलामत रहे, आप खुश रहे, बस सभी माओं के लिए ये गाना हे रे कन्हैया, बस ये गाना आप के लिए साथ में सुहाना सफर प्रोग्राम में और एम फ्री रेडियो मनोरंजन पर।

जहाँ कौन सी चीज़ है यहाँ नहीं मिलती, सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती। वैसे गाना जो है स्पेशली फुलवंती जी के लिए, वाकवा हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मदर्स, और उनके परिवार के लिए ये गाना, हमारी पूरी टीम के लिए थैंक यू। और साथ में ये गाना जाएगा सुदेवी जी के लिए, अब मौका उनके बच्चों के लिए, पति के लिए। साथ में है माला जी और रिवेजोरांपा से, इन एडवांस सभी को कह रही हैं हैप्पी मदर्स डे। एमबीसी स्टाफ के लिए भी थैंक यू सो मच, और उनके जो बच्चे हैं कनील, कबीर, कनीश, केविन, किरण, सत्यम, शिव, नाती, नातिन और सभी माओं के लिए।

0: RM3 Radio.
1: You're listening to RM3 Radio. Man.

जहाँ एक बजे आप समाचार सुन पाएंगे, इसके बाद हमारी और आपको मुलाकात फिर से होगी। आपके इतने मैसेजेस के लिए, फ़ोन कॉल्स के लिए थैंक यू सो मच। और इतना बिजी होने के बावजूद शॉपिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे ही हमारी तरह नौकरी पर हैं, कुछ लोग आराम कर रहे हैं, कुछ लोग बस ऐसे ही वक्त बिता रहे हैं अपने रेडियो के साथ। तो बस फिर मिलते हैं सुहाना सफ़र प्रोग्राम में, आप सबों का फिर से स्वागत करेंगे एक बजे के बाद।

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार याचना के साथ आपको नमस्कार।
1: नमस्कार हंसिनी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। 16 मई से शुरू हुआ मतदाता पंजीकरण अभियान आज शनिवार दोपहर 1 बजे समाप्त हो रहा है। यह प्रक्रिया मॉरिशस और रोडवीज दोनों जगहों पर आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन करना रहा। बुधवार तक 153 नए मतदाताओं का पंजीकरण दर्ज किया गया था। वहीं निर्वाचन क्षेत्र नंबर 18 बेलहोज काठोबोर में शुक्रवार तक 14 नए पंजीकरण किए गए, जबकि लगभग 400 लोग मतदाता सूची में अपने विवरण की जांच के लिए पहुंचे। सप्ताह के दिनों में यह अभियान शाम 4 बजे से 5:30 तक चलाया गया, लेकिन शनिवार को केंद्र पर सबसे अधिक भीड़ देखी गई। जो लोग अभी तक मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं या अपने पते और अन्य जानकारी में संशोधन करवाना चाहते हैं, उनके पास आज तक की मोहलत रही। मंत्री परिषद ने नोट किया है कि पर्यावरण मंत्रालय मई 2026 की शुरुआत में तमाम सार्वजनिक समुद्र तट पर देखे गए तटीय कटाव यानी इरोशन के संबंध में फ्रांस की विशेषज्ञ संस्था बीआरजीएम ब्यूरो दे रिसर्च जियोलॉजिक एट मिनेर से तकनीकी सहायता प्राप्त करेगी। यह सहयोग फ्रांसीसी विकास एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा। बीआरजीएम को तटीय कटाव के कारणों की पहचान करने, स्थानीय हितधारकों से परामर्श करने तथा उपयुक्त सिफारिशें प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। विदेश की खबरों में, केन्या ने अमरीका को एबोला वायरस के संपर्क में आए अमरीकी नागरिकों के लिए क्वारंटीन सुविधा स्थापित करने की अनुमति दे दी है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रमुख टेड्रोस अदानोम कोंगो में फैल रहे प्रकोप के केंद्र का दौरा कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में फैले इस बीमारी यानी बुंडी बुग्यो स्ट्रेन के एबोला संक्रमण को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ती जा रही है। ये थे अब तक की खबर।

0: बड़ी थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। रॉ रोड पेटी ट्रिविया में एवेन्यू जॉन केनेडी वाकवा में एवेन्यू जॉन केनेडी वाकवा में 83 साल की 83 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती कवलमती गणपत, श्रीमती कवलमती गणपत पैदाश नाम पलटन और जो शांति के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थ ही आज दिन के 3:45 बजे लशा पेला दौ दो मोरा रुथ्रोयाल पेटी ट्रिविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताय सेंट पियर बॉम्बू की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट quarter to 3 PM। नंबर 15 रामकेलावन बुदन स्ट्रीट रोजिल में, नंबर 15 रामकेलावन स्ट्रीट बुदन स्ट्रीट रोजिल में 78 साल की 78 ईयर्स ओल्ड की मिसेस बीबी फाजिदा फाउदा, मिसेस बीबी फाजिदा फाउदा पैदाशी नाम भातू और जो फाजिदा के नाम से ज़्यादा जाने जाती थी इंतकाल कर गई हैं। उनका जनाजा आज सुपहर 3 बजे उनके मकान 15 रामकेलावन बुदन स्ट्रीट रोजिल से उठा के दफनाने के लिए सहमौते का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 3 PM। रारोड डेनिंगम थ्रियोले में 87 साल की 87 ईयर्स ओल्ड के श्रेश्वर प्रसाद बकोरी जो हरिदत्त के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और पूर्व स्कूल टीचर थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुपहर 3 बजे उनके मकान रारोड डेनिंगम थ्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए SSS लेन थ्रियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
2: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।
3: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
4: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
5: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
6: माँ,
7: माँ एक ऐसा शब्द जिसमें प्यार,
6: अपनापन और पूरा संसार बसता है।
8: माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा।
7: माँ की मुस्कान से घर में खुशियाँ खिल उठती हैं।
6: उनके आवाज से मन को सुकून मिलता है। इस मदर्स डे पर हमारी पूरी NBC रेडियो टीम की ओर से अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।
7: मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: सुहाना सफर
1: जा चुका है 1:12 वाजिवाज टाइम जो है जल्दी जल्दी भाग रहा है और उसे पता है कि आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं और जैसे सिर्फ माँ के साथ नहीं परिवार ही सब कुछ है तो परिवार वह छत है वह रूफ है जहाँ हमें सुरक्षा मिलती है वह बगीचा है जहाँ रिश्तों के फूल खिलते हैं और वह विद्यालय है जहाँ जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पाठ सिखाए जाते हैं। परिवार में दादा दादी की कहानियाँ माता पिता का मार्गदर्शन भाई बहनों की नोक झोंक और बच्चों की हंसी यही तो जीवन की असली खुशियाँ हैं असली जो जैसे कहें ना वो सबसे बड़ी पूंजी है हमारे लिए। तो आज तकनीक ने हमें दुनिया से जोड़ दिया है लेकिन परिवार ही वह डोर है जो हमें दोनों से दिलों से जोड़ कर रखती है। परिवार जीवन का कंपस है जो हमें सही दिशा दिखाता है और हर परिस्थिति में हमारा सहारा बनता है।

वैसे आपको याद होगा कि माँ की छोटी छोटी बातें कौन कौन सी बातें वो कहती रहती थी जो हम सुनते नहीं थे, मगर अब जब वो नहीं है तो हम ये बातें सुनकर सोचकर जैसे मन गदगद हो जाता है। कौन सा वह संस्कार है जो आज भी आपके जीवन का मार्गदर्शन करता है, और परिवार के साथ बिताया गया कौन सा पल है आपके दिल में जो सबसे करीब है। इन यादों को संजो कर रखिए, क्योंकि यही यादें जीवन को खूबसूरत बनाती हैं। तो बस सुहाना सफ़र प्रोग्राम में आज कुछ गाने जो हैं माओं पर और कुछ परिवार पर, और कुछ आपकी फरमाइश, कुछ हमारे जो प्लेलिस्ट में हैं गाने, और आपके परिवार के लिए बेस्ट विशेस। सो सुहाना सफ़र प्रोग्राम और एम फ्री रेडियो मनोरंजन पर दिविना है आपके संग। सुबह सगले गाने की ओर बढ़ते हैं। अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी माँ, ये है किसकी मांग पर।

माँ बाप बड़े अनमोल होते हैं, हमें जीवन में सही रास्ता दिखाते हैं। माँ बाप की सेवा सबसे बड़ी दौलत है, इसे संभाल कर रखना। मोदालबिया से अनिता जी पोएम के लिए थैंक यू सो मच अनिता जी। करुणा के लिए अमृता, सभी माताओं के लिए हैप्पी मदर्स डे। फिल्म है तिमूर्ति किशोरदा की आवाज़ में, साथ में एक दो और हैं, भूपिंदर साहब, मुकेश जी हैं, और अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी भोली भाली माँ।

जहाँ प्यार का मंदिर मूवी का गाना ब्यूटीफुल गाना था अभी हम सुन रहे हैं. सो ये जाएगा स्पेशली पॉम्फ्रेमस के सचिन जी के लिए. तो आज वी आर सेलिब्रेटिंग पेरेंट्स एंड फैमिली डे, फैमिली टाइम. तो ये गाना इंक्लूड कर रहे हैं आपके लिए सचिन जी. साथ में ये गाना जाएगा ब्रह्मस्थान से उषा जी हैं, प्यारी सी मौसी देविका हुसैनी के लिए, सभी माताओं के लिए. उषा जी आप सुन रही हैं, आपको ढेर सारा प्यार हम भेज रहे हैं. ऑल्सो फॉर सरिता कटबोन, करिश और करिश्मा के लिए. रविन भाई हैं, उनकी जो बहनें हैं मीता और मारा के लिए. चंदनी पुरुषोत्तम के लिए, ब्रिटानिया. साथ में है माया और मोंटेब्लांश और पूरे परिवार के लिए.

जहाँ 1:25 हुए हैं रेडियो मनोरंजन पर आपका साथ है, थैंक यू सो मच। वैसे कहते हैं ना, माँ की गोद दुनिया का सबसे सुरक्षित जगह है और परिवार दुनिया का सबसे मजबूत सहारा। जब जीवन से प्रॉब्लम्स आती है ना, तब परिवार ही वह शक्ति होती है, वह फोर्स बनता है जो हमें फिर से खड़ा होने का साहस देता है। इसलिए आज के दिन हम ये संकल्प कर ले, प्रॉमिस कर ले कि अपने परिवार के लिए समय निकालेंगे, अपने माता पिता का सम्मान करेंगे और रिश्तों की गर्माहट को बनाए रखेंगे। और अब चलते हैं एक और मैसेज की ओर। फिल्म है कालीचरण, अनुराधा कंचन की आवाज में। 1:22, 2:24 ये होगा आशा जानू की ओर से फ्रॉम कॉटेज। विशिंग ऑल मदर्स एंड फादर्स ए वेरी हैप्पी मदर्स डे। माय स्वीट लवली माताजी कुमारी, ओय होय माताजी नमस्ते। हैप्पी मदर्स डे टू माताजी फ्रॉम शुभम, ऋषभ, आशा, आरती, राज और सभी जानू परिवार। और ये गाना जो है ये जाएगा आप सभी के लिए। और ईश्वर का अनमोल उपहार है माता पिता का प्यार। ऑफ कोर्स आशा जानू जी आपने सिख फरमाया तो ये गाना आपके लिए। और साथ में ये गाना होगा घाव गुप की विमला जी, ये जो गाना आप मांग रही हैं हम ढूंढ रहे हैं, इन बिटवीन हम ये इसमें आपका नाम जोड़ देंगे। विमला जी आप अकेले हैं तो क्या हुआ, हमें यहाँ पर

जो प्यारा सा गाना है शीला जी के लिए है फाबुचिक, और ये गाना जाएगा माला के लिए, ललिता और सुनील के लिए, और सभी उदय फैमिली के लिए। साथ में साजिद जी आप हमें सुन रहे हैं रोजिल से, साजिद जी ये गाना आपके लिए।

हाँ जी ये गाना जाएगा बाबूजी बाबू अनतवा जी ऑफ कटोबोन सभी माताओं के लिए परिवार के लिए सभी जो मॉरिशस के लिसनर्स हैं अराउंड द वर्ल्ड जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं बच्चों के लिए सभी परिवार के लिए थैंक यू बाबूजी ऑल्सो बनमेया की शीला जी और हैप्पी मदर्स डे इन एडवांस टू एवरीवन माकुना फैमिली के लिए सभी माताओं के लिए

उषा जी ब्रह्मस्थान से आपका नाम लिया था, फिर से नाम ले रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं उषा जी। उषा की दाव ब्रह्मस्थान से ये गाना आपके लिए भी।

1:43 मिनट हुए हैं यहाँ पर आप सुन रहे हैं और एम फ्री रेडियो मनोरंजन पर आपकी ही मनपसंद गाने और तराने सुहाना सफर प्रोग्राम के अंतर्गत 2 बजे तक। वैसे आज है स्पेशल मदर्स डे पर कुछ गाने और कल है एक्चुअली हम सेलिब्रेट करने वाले हैं, मगर आज से ही स्पेशल विशेष लोग भेज रहे हैं अपनों को। वैसे कहते हैं माँ का प्रेम और परिवार का साथ जीवन के दो ऐसे अनमोल उपहार हैं, गिफ्ट हैं, जिनका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। और कुछ ऐसे पापा भी हैं जो माँ का किरदार निभाते हैं, पापा बच्चों की देखभाल करते हैं अच्छी तरह से। और कभी कभी कहते हैं ना जो माँ का वो की जगह कोई नहीं ले सकता, मगर कुछ ऐसे पापा भी हैं जो माँ के रूप में बच्चों के साथ रहते हैं। तो उन पापाओं के लिए बिग शाउट आउट हैं आपके लिए, आपको बिग थैंक यू अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए। तो ऐसे में ये गाना आपके लिए, सभी पापा के लिए।

जहाँ कुछ ऐसे बंधन होते हैं जैसे माँ बाप का ये बंधन बच्चों के साथ ग्रैंड पेरेंट्स का बंधन, दादा दादी का बंधन, नाना नानी का बंधन, बस जो भी बंधन है आप प्यार से निभाइए। और हमारा और आपका बंधन भी है जो म्यूज़िक से जुड़ा हुआ है, संगीत, गीत संगीत से, और हमेशा साथ देने के लिए दोस्तों दिल से शुक्रिया। वैसे कहते हैं घर ईंटों से नहीं रिश्तों से बनता है, और रिश्तों की सबसे मजबूत नींव माँ का प्यार होता है। माँ को सच्चत नमन और सभी परिवारों को प्रेम, सुख, शांति एवं समृद्धि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब भरेंगे आज की इस प्रोग्राम के दो अगले गाने जो अंतिम गाने होंगे, और इसके बाद आप दो बजे सुन पाएंगे इतिहास के झोंके से अलका जी के साथ। बस आपने प्यार से हमारा साथ दिया सुहाना सफ़र प्रोग्राम में। आज आप भी जो भी कर रहे हैं, घर पर होंगे या बहुत से लोग जो हैं मायके जा रहे हैं, ससुराल जाएंगे, या फिर परिवार के साथ उनके यहाँ रिश्तेदार आएंगे, बच्चे आएंगे, सो बड़ों का आशीर्वाद, छोटों को प्यार, और साथ में आपका परिवार जो है हमेशा फूलों की तरह खिलते रहे। प्यार ही प्यार आप बातें, प्यार के बदले प्यार ही मिलेगा। बस आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं, अगर आप लोग अपने पसंदीदा गाना फिर से सुनना चाहेंगे मगर अलग से आपके पसंद प्रोग्राम में, हम मिलेंगे अभी 2:15 to 4 AM2 रेडियो मॉरिशस पर। फिलहाल आपसे लेंगे इजाज़त यहाँ पर RM3 रेडियो मनोरंजन पर। फिर से मुलाकात होगी कल सुहाना सफ़र प्रोग्राम में 12 to 3 तक। सो आप सबों के प्यार के लिए धन्यवाद। सो जाते जाते ये गाना प्रकाशवती जी के लिए फ्रॉम बेल्जियम, गुड मॉर्निंग, वहाँ पर मॉर्निंग होगा ही। सो आपको भी प्रकाशवती जी, तो यशुदास की आवाज़ में उनको बहुत पसंद है, क्या आवाज़ है यशुदास की, ऑफकोर्स। तो फिल्म है सुनैना, ये गाना आपको पसंद है, और सभी मदर्स को कह रही हैं मदर्स हैप्पी मदर्स डे। आपको भी प्रकाशवती जी, बस ये गाना आपके लिए, और आप सभी को ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल, बाय बाय।

0: सुनते हैं देश विदेश की खबरें। पूजा से आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी को मेरा नमस्कार। समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले ये खबर जो कुछ समय पहले सुर्खियों में रही है, आटा और चावल ये दोनों सब्सिडी वाले उत्पाद हैं, इन्हें धोखाधड़ी के तरीके से निर्यात किया गया था। इस मामले को जांच के लिए फाइनेंशियल क्राइम कमीशन को सौंप दिया गया था। इस बीच व्यापार मंत्रालय कानूनी ढांचे को मजबूत कर रहा है और ऐसे नए नियम तैयार कर रहा है जिनका उद्देश्य इस प्रकार की अनियमितताओं को रोकना, उनका पता लगाना और उन्हें सजा देना है। प्रस्तावित दंडों में 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना और अधिकतम 3 वर्ष तक की जेल की सजा शामिल है। परिवार कल्याण मंत्रालय पालक परिवारों यानी फोस्टर फैमिली की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने जा रहा है और नए कानूनी मानदंडों की घोषणा कर रहा है। मंत्रालय एक ऐसा मंच भी स्थापित कर रहा है जहां ये परिवार आपस में संवाद कर सकेंगे और अपने अनुभव साझा कर सकेंगे। उप प्रधानमंत्री आर्यन नवामारी ने आज सुबह फिनिक्स में आयोजित एक समारोह के दौरान इस बात की घोषणा की। मॉरिशस में बैंकिंग कानून पर एक व्यापक पुस्तक सेव पुताया की पुस्तक लॉ ऑफ बैंकिंग इन मॉरिशस का विमोचन पोर्टलिस नगर पालिका में आयोजित एक समारोह के दौरान किया गया। लगभग 200 पृष्ठों की इस पुस्तक में लेखक ने विभिन्न केस स्टडीज के आधार पर मॉरिशस के बैंकिंग कानून की बुनियादी अवधारणों का विस्तृत विश्लेषण किया है। ये पुस्तक विशेष रूप से बैंक ऑफ मॉरिशस की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करती है तथा बैंकिंग क्षेत्र के संचालन में उसके महत्व को समझाती है। विदेश में थाई बचाव कर्मियों के अनुसार लाओस में बाढ़ग्रस्त गुफा में फंसे 4 व्यक्तियों को 10 दिन के बाद आजाद कर दिया गया, बचा लिया गया एक दिन बाद जब एक अन्य व्यक्ति को बचाया गया। ये 7 ग्रामीणों में से हैं जो सोने की तलाश में सुरंगों में गए हुए थे, लेकिन 20 मई को आई अचानक बाढ़ के कारण वहां के दूरदराज पर्वतीय इलाके में गुफा के अंदर ही फंस गए। तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार।

0: 87 साले की 87 years old श्री ईश्वर प्रसाद बकुरी श्री ईश्वर प्रसाद बकुरी जिन्हें लोग हरिदत्त नाम से जानते थे और जो पहले स्कूल में काम करते थे स्कूल में अध्यापक का काम करते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सपहर के तीन बजे इनके मकान रॉयल रोडियामी गाम त्रियुली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए एसएसएस लेन त्रियुली की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM नंबर 15 रामकिलावन बुधन स्ट्रीट रोजहिल में अठहत्तर साल की 78 years old श्रीमत ये शोक समाचार फिर से सुन लीजिए। नंबर 15 रामकिलावन बुधन स्ट्रीट रोजहिल में 78 साल की 78 years old बीबी फजीदा फाउदा पैदा शिनाम भट्टू और जिन्हें लोग फजीदा नाम से ज़्यादा जानते थे इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज सपहर के तीन बजे इनके मकान नंबर 15 रामकिलावन बुधन स्ट्रीट रोजहिल से उठाकर दफनाने के लिए सहमौत का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 3 PM और रॉयल रोड पिची त्रिविया में 83 साल की 83 years old श्रीमती कवलमती गणपत पैदाशी नाम पुल्टन और जिन्हें लोग शांति नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के पौने तीन बजे लाशापेल औदौंत दुमुरा रॉयल रोड पिची त्रिविया से उठाकर मोताई सैंपिया बाम्बू की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। आपको बता दें कि वे पहले अवेन्यू जन के निधि वाकुआ की रहने वाली थी। क्रिमेशन टुडे एट 2:45 PM शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: पंचानवे दशमलव छः 98.2 आप सुन रहे हैं RM3
2: Center 95.5 North South 95.6 East West 98.2
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio Manoranjan Radio
4: Your kind of music all day all night right here on your one and only station
5: You're listening to RM3 Radio.

नमस्कार श्रोताओं, इतिहास के झरोखे से कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज बहुत ही प्यारा दिन है। हम में से बहुत लोग आज अपनी अपनी माओं के घर गए हुए होंगे और वहाँ पर हंसना, खेलना, बातें करना, और अब तो आप बड़े भी हो गए होंगे और शायद उनके बच्चे भी, अर्थात उनकी नाती, नातिन, पोता, पोती सभी आज इकट्ठे हुए होंगे। बस ये जो इकट्ठापन है वो माँ को बहुत ही प्रसन्नता देता है, क्योंकि श्रोताओं पहले तो हमारे यहाँ संयुक्त परिवार होते थे। हम सभी को पता, हम सब मिल के रहा करते थे और माँओं का वक्त कब बीत जाता था उन्हें पता ही नहीं चलता था। और बुढ़ापा भी आ जाता था तो नाती पोते, कोई दादी कहता था, कोई नानी कहता था, तो बस हंसते हंसते कब बुढ़ापा भी कट जाता था उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं होता था। लेकिन श्रोताओं आज एकल परिवार बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके लिए मैं युवा पीढ़ी को दोष नहीं दूंगी, क्योंकि परिस्थितियां ही ऐसी हैं। दोनों पति पत्नी काम करते हैं तो घर को कौन देखेगा। यदि माँ घर में बैठी है तो कितने दिन वो घर को देख सकेगी। वह भी लगातार उसकी आयु बढ़ रही होती है, तो धीरे धीरे समाज में ये परिवर्तन आने ही लगा कि आप जब विवाह करें तो आपका रसोई या किचन अलग होना चाहिए, अब अपने बच्चों का ध्यान आप रख

रखें, क्योंकि यदि मान लो दादी या नानी घर में है, बेटी या बहू साथ में होती हैं, तो बच्चे को देखना पालना उतना कठिन नहीं होता है। लेकिन सारा दिन, क्योंकि आजकल आप जानते हैं जॉब्स भी बहुत डिमांडिंग हो गई हैं, लड़कियां भी ऊंचे ऊंचे पदों पर काम कर रही हैं, सुबह 7 बजे वे घर से निकलती हैं और लगभग रात को 6-7 बजे घर पहुंचती हैं। तो ऐसे में बच्चे को 12 घंटे एक बूढ़ी दादी या बूढ़ी नानी देखती है, आसान नहीं होता है। हाँ, जहाँ पर अभी स्वास्थ्य अच्छा है, उम्र ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर तो दादी नानी इस वक्त को बहुत ही खुशी से एंजॉय करती हैं, खुशियाँ बटोरती हैं बच्चों के साथ और मानो अपने बचपन में फिर लौट जाती हैं। हम में से ही कितने लोग यहाँ फ़ोन पर बातचीत करते हैं और वे अपनी नातिन के साथ, पोती के साथ कितनी मस्ती करते रहते हैं। और कभी कभी बच्चे की माँ बागातेल ले जा रही है, त्रिबेका ले जा रही है, तो नानी और दादी भी थोड़ा बहुत आनंद ले ही लेती हैं। तो देखिए, बच्चों के कारण उनके जीवन में खुशियाँ आती हैं। तो परिस्थितियाँ थोड़ी बदल गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आदमी का मन तो नहीं बदला ना। आज भी उसे प्यार चाहिए, आज भी उसे मनुहार चाहिए, आज भी वह चाहता है कि वह रूठे तो कोई उसे मनाए, आज भी वह चाहता है कि कोई उसके लिए एक मिठाई का टुकड़ा स्पेशल उसको दे, कोई उसके लिए कुछ स्पेशल उपहार लेकर आए, विशेष उसके लिए कुछ करे। तो ये जो मन की चीज़ें हैं वो बदलती नहीं है, वो हर युग में ज्यों की त्यों है, आज भी उसी तरह की है। आज भी देखिए माँ अकेली रहती है, उदास होती है, लेकिन जैसे बच्चे आ जाते हैं या छोटा बच्चा आ जाता है, उसके जीवन का चक्का फिर से चल पड़ता है। तो ये जो मदर्स डे है ना, वो वास्तव में उस एहसास का दिन है। गिफ्ट हम क्या माँ को देंगे, सोचने की बात है। हम और आप क्या दे सकते हैं, इतना बाज़ार भरा पड़ा है, कपड़े हैं, बर्तन हैं, तरह तरह के डिज़ाइन के कप हैं, जाने क्या क्या है। मतलब आपको सोचना पड़ता है कि मैं अपनी माँ को क्या दूँ, क्योंकि माँ कहती है मेरे पास सब कुछ है। अरे माँ ने ही तो इतने जीवन हम चीज़ हमको दी, जो हमने मांगा, बाज़ार गए तो ज़िद की, माँ ने जैसे तैसे बचत करके हमको दी, उस माँ को हम क्या दे सकेंगे, सालों उसने हमें बहुत कुछ दिया। तो श्रोताओं, आज जो मदर्स डे है वो इसी बात का एहसास दिलाने के लिए है कि यह केवल एक दिन का त्यौहार नहीं है, यह ज़िंदगी का त्यौहार है। माँ को ये एहसास कराना कि माँ तेरी हमें चिंता है, हम तुझे याद करते हैं, हम तेरे पास बैठना पसंद करते हैं। अफसोस इस बात का है कि आजकल हमारे जो जवान पीढ़ी है, एक ही वाक्य उनके मुंह पर है कि हमारे पास समय नहीं है, बहुत काम है हमारे पास। लेकिन यदि अभी उनके अपने मित्र एक पार्टी डाल दें तो देखिए कैसे समय निकल के आता है। सब काम इधर उधर पूरे हो जाएंगे, लेकिन पार्टी वे लोग ज़रूर जाएंगे। अर्थात जो चीज़ हमारे लिए प्राथमिकता वाली होती है, हम उसे करते ही करते हैं। तो माँ बाप हमारे लिए प्राथमिकता वाली बात में नहीं आते हैं, इसीलिए हम उनको फ़ोन पर कई बार कह देते हैं कि माँ, पिताजी, समय नहीं है, 2-4 दिन बाद। तो यह जो शब्द है ना, वो कभी कभी उनको तकलीफ़ देता है। आप ये मत कहिए कि समय नहीं है, आप कहिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखो मैं आता हूँ, और कोशिश करके जाइए भी, केवल उनको झूठ मूठ का लॉलीपॉप मत दीजिए। तो श्रोताओं, आज जब हम अपनी माँ के घर, पिता के घर जाते हैं, और यहाँ मैं बोलना चाहती हूँ कि मदर्स डे ठीक है, एक बिजनेस भी है, कार्ड्स बिकते हैं, बाज़ार चलते हैं, उपहार खरीदे जाते हैं, और इसीलिए तो मॉरिशस में आखिरी शनिवार मनाया जाता है, सबको पता है तनख्वाह मिल जाती है तो आराम से खर्चा हो सकेगा। तो देखिए, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मदर्स डे उसी दिन मॉरिशस में मनाया जाता है, लेकिन प्यार जो है वह व्यापार नहीं है। हम देना चाहते हैं माँ को, ज़रूर दें, ईश्वर का धन्यवाद कि उसने हमें इतना सशक्त बनाया है कि हम अपने माँ बाप को आज कुछ देने लायक हो सके हैं। और केवल माँ ही नहीं, पिता भी बराबर के सम्मान के हकदार हैं। कोई माँ बहुत ही मुसीबत में अपने बच्चे को अकेले परवरिश देती है, जहाँ पर संबंध टूट जाता है या कुछ नीति के आगे झुकना पड़ता है, कुछ समस्या हो जाती है, वहाँ बेचारी माँ अकेले पालना करती है। लेकिन आसान नहीं होता, मैं तो बेचारी नहीं कहूँगी,
मुझे तो कहना चाहिए वहाँ पर तो एक सशक्त माँ जन्म ले लेती है जो अपने बच्चे का निर्माण करती है, लेकिन घर को

चलाने में माता पिता दोनों का बराबर का योगदान होता है। पिता घर के लिए साधन जुटाते हैं और माँ उन साधनों का सदुपयोग करती है। किसी जमाने में देखिए, शिकार पुरुष करता था, लेकिन जो कुछ वह लेकर आता था उसे संभालना, संवारना, बचत से रखना, यह सब घर की महिलाएं किया करती थी। आज महिलाएं कमाती हैं, पुरुष भी कमा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो बचत की हम प्रवृत्ति देखते हैं वो महिला में होती है। देखिए, फ्रिज में क्या सब्जी पड़ी है, कुछ बासी तो नहीं है, क्या इस्तेमाल करना चाहिए, पहले क्या पकाना चाहिए, आज क्या चीज़ पकाऊं ताकि सबका स्वास्थ्य ठीक रहे, कल इन्होंने बाहर खाया तो आज कुछ ऐसा होना चाहिए जो उनको बैलेंस डाइट या संतुलित भोजन दे सके। ये जो चिंता है ना, छोटी छोटी, इसकी कोई कीमत नहीं होती, अनमोल चिंता है। जीवन में कौन करेगा ऐसी चिंता, कौन सोचेगा? क्या कभी बाजार का दुकानदार सोचेगा कि वो आपको क्या चीज़ ऐसी दे कि जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा हो? वहाँ तो पैसा फेंक तमाशा देख है। आपको सलाद लेनी है, पैसा डालिए, आपको ये चीज़ लेनी है और पैसे जोड़ दीजिए, मतलब वहाँ तो बिजनेस की बात होती है। लेकिन माँ के यहाँ बिजनेस शब्द नहीं होता है, वह अपने बच्चों के हित की बात सोचती है। तो श्रोताओं, ये जो मदर्स डे है ना, ये केवल एक डे के लिए नहीं है, ये रोज़ के लिए है। लेकिन कम से कम आज के दिन यदि हम माँ के यहाँ गए हैं, माँ से बात कर रहे हैं, तो हम उसे सम्मानित करें, उसकी पहचान को ढूंढें। बहुत ही सुंदर एक कहानी है भीष्म साहनी की, चीफ की दावत। उसमें माँ बूढ़ी है बहुत, लेकिन माँ ने अपने ज़माने में बहुत सुंदर कढ़ाई इत्यादि की हुई है। आज उनके घर में चीफ आ रहे हैं और जो शामनाथ है, जो लड़का है, उसको ये पता है कि अगर चीफ खुश हो गए उससे तो प्रमोशन में उसको बहुत मदद मिलेगी। अब दोनों पति पत्नी बड़े परेशान हो रहे हैं कि अपनी बूढ़ी माँ को कहाँ छिपाएं कि चीफ की नज़र ना पड़े। चीफ होगा, उसकी पत्नी होगी और सारे रिश्तेदार, मतलब सब दोस्त होंगे पार्टी में। तो माँ जो है वो जल्दी सोने लगती है, खर्राटे लेने लगती है और सोते सोते उसका सिर लुढ़कने लगता है, सिर से पल्लू उतर जाता है, तो बहुत बुरा लगेगा। दोनों पति पत्नी बहुत सोचते हैं और फिर पत्नी कहती है कि उसके पड़ोस में एक मित्र रहती है ना, उसके यहाँ आज की रात उसे भेज दो। लेकिन वहाँ भी देखिए, पति की, शामनाथ की ईगो कितनी हाई है। वो कहता है, नहीं, मुझे वह औरत बिल्कुल पसंद नहीं है, मैंने ही उसका जाना आना वहाँ बंद किया, बिल्कुल नहीं मैं वहाँ भेजूँगा। तो भाई फिर अब करें क्या? माँ को फिर बहुत सारे निर्देश दिए जाते हैं कि माँ, जिस समय लोग ड्राइंग रूम में होंगे तो तुम बरामदे में इस तरफ रहना, जब वे उस तरफ जाएंगे तब तुम इस तरफ से इधर को निकल जाना, मतलब किसी भी तरह से तुम उनके सामने मत आना, और माँ सोना मत जब तक मेहमान रहे। तो माँ कहती है, बेटा इस उम्र में नींद आ जाती है, मैं कुर्सी पर भी बैठूंगी तो भी नींद लग जाएगी। और उसने कहा, खर्राटे मत लेना। उसने कहा, बेटे खर्राटे क्या पूछ कर आते हैं, नींद क्या पूछ कर आती है, अगर आते हैं खर्राटे तो मैं कुछ नहीं कर सकती बच्चे, और मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि मुझे हरिद्वार छोड़ दो, तुम वो भी नहीं छोड़ते हो। तो उसने बोला, तो क्या मैं बदनामी कमाऊंगा समाज में कि मैंने तुम्हें वहाँ छोड़ दिया? तो देखिए, इसमें पिस कौन रहा है? माँ पिस रही है ना। और अंत में वही होता है, माँ बेचारी कुर्सी पर बैठी है, उसको नींद आ जाती है, यहाँ सब पीने पाने की पार्टी चल रही है, और चीफ जो है चलते चलते वहीं आ जाते हैं और अचानक कहते हैं कि अरे इनको तो नींद आ गई, और वे उनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि चीफ विदेशी है। जब वे माँ का रूप देखते हैं तो एकदम हाथ जोड़ते हैं, हिंदी में नमस्ते बोलते हैं। शामनाथ थोड़े से घबराते तो हैं, लेकिन तब वे कहते हैं कि अरे वाह, ये पंजाब के लोग मुझे बहुत पसंद है, पंजाब की माँओं के तो कहने ही क्या। तब शामनाथ थोड़े संतुलित से होते हैं और फिर माँ को जगाते हैं और तब बातचीत होती है। वह कहता है, हाउ डू यू डू? तो माँ बेचारी कैसे बात करेगी, वह हाथ जोड़ देती है, सिर नीचे कर लेती है, लेकिन शामनाथ कवर करने की कोशिश करते हैं। और अंत में चीफ कहता है कि मैंने सुना है कि पंजाब की महिलाओं को बहुत सुंदर कढ़ाई का काम आता है, एम्ब्रॉयडरी का। तो शामनाथ उसी समय, हाँ हाँ, मेरी माँ को तो बहुत अच्छा आता है, माँ वो अपना पुराना दुपट्टा लेकर आना। तो माँ कहती है, बेटे फट सा गया तो बहुत पुराना है। नहीं माँ, चीफ देखना चाहते हैं।
तब लेकर आती है बिचारी और दिखाती है। चीफ देख के हैरान हो जाते हैं, इतना सुंदर, इतनी सुंदर कढ़ाई,

इतनी सुंदर एम्ब्रॉयडरी। तो उसी समय श्यामनाथ कहते हैं, आप अगर कहेंगे तो माँ आपके लिए भी बना देगी। माँ उस समय कहती है कि मेरी तो आँखें कमज़ोर हैं, अब मैं कहाँ बना सकती हूँ। लेकिन श्रोताओं, श्यामनाथ इस पर भी भाव लेना चाहते हैं। चलिए दो गीत सुनते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे।

0: RM3 Radio.
1: इतिहास के झरोखों से
2: श्रोताओं, मेरे साथ मेरी मित्र मेरी मदद कर रही है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उनको तो हम अभी 4 बजे तक अलग स्टेशन पर भी सुनते ही रहेंगे, उनकी प्यारी आवाज़, उनके डाले गीत। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। अब श्यामनाथ माँ से कहते हैं कि अपनी शॉल लेकर आओ। बेचारी ले आती हैं, क्या करें। अब जब चीफ देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और श्यामनाथ कहते हैं, नहीं नहीं माँ, तुम्हें इनके लिए बना कर दोगी। अब सोचिए श्रोताओं, माँ की आंखें काम नहीं अब करती हैं, हाथ उनके कांपते हैं, लेकिन वे चीफ से वायदा करते हैं कि माँ

बना कर देगी। माँ कहती भी है हल्की दबी जबान से कि बेटे अब आंखें कहाँ, वो जवानी का वक्त था। लेकिन नहीं, शामनाथ को तो किसी भी तरह से अपने चीफ को खुश करना है। और ये सब पार्टी होते हाते सब लोग चले जाते हैं और शामनाथ उनसे बात करते हैं कि कुछ पैसों की भी ज़रूरत है। तो माँ कहती है बेटा जितने मेरे पास गहने थे जो कुछ भी था सब मैंने तुम्हारी पढ़ाई में लगा दिया। ये बात शामनाथ को बहुत चुभती है। वह कहता है कि आप मुझे सुना क्यों रही हैं, अगर आपने गहने मेरी पढ़ाई पर डाले तो कहिए मैं सारे पैसे क्या लौटा दूँ। श्रोताओं, जवान पीढ़ी ये बात कई बार कहती है तो क्या आपके पैसे लौटा दें? पहला तो ये कि आप लौटा ही नहीं सकते। ज़रा हिसाब तो लगाइए, कितना माता पिता से आपने लिया, क्या लौटा सकते हैं आप, कितने लाख लौटा पाएंगे? अरे देते देते मर जाएंगे, कर्जा नहीं चुका पाएंगे आप। तो किस बात की अकड़ दिखाते हैं लोग कि क्या हम आपके पैसे लौटा दें? अरे आपके माता पिता हैं, यदि उन्होंने कभी सुना भी दिया तो दिल हल्का किया है, क्योंकि आप जब माता पिता बनेंगे तो आप जानेंगे कि कैसे एक एक पैसे की बचत उन लोगों ने बच्चों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए की। जब उन्होंने ओवर टाइम किया, उस कष्ट को भी एक कोने में रख दिया, सुबह से निकलना, शाम को फिर डबल ड्यूटी करना, सिर्फ किस लिए कि मेरे बच्चे को जिम की फीस पे करनी है या मेरे बच्चे का मन साइकिल लेने को है। बच्चा नहीं जानता है, लेकिन बड़े होकर एक शामनाथ की तरह यह बोलना तो क्या मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूँ, इतना एहसान कर रही हो, इससे बड़ी चुभन अपने माता पिता को कोई क्या दे सकेगा। श्रोताओं, माता पिता इतनी मेहनत से सब कुछ बनाते हैं, ये उनका घर, उनकी ज़मीन, उनका सामान। सच है ये बात कि सब कुछ यहीं छूट जाएगा, और यह भी सच है कि एक दिन हम भी सब कुछ छोड़कर जाएंगे। पर जो अपना सब कुछ तुम्हें देकर जाएगा, क्या उसके प्रति कृतज्ञता नहीं होनी चाहिए? ऑफिस में यदि कोई हमें एक डिनर करवा दे, एक लंच करवा दे, 10 बार हम उसे मेस्सी कहते हैं और पलट कर कुछ उसके लिए भी करते हैं, लेकिन पलट कर कभी माता पिता के लिए क्या करते हैं, यह बहुत ज़रूरी है सोचना। हम आज और कल मातृदिवस, पितृदिवस बड़े प्यार से मनाएंगे, उनको उपहार देंगे, देना चाहिए, उनसे मिलने जाना ही चाहिए। उसमें भी अभी माता पिता ही कितना कुछ कर रहे होंगे कि बच्चों ने आना है, सब इकट्ठे होंगे, क्या खाने में डालना चाहिए, कौन क्या पसंद करता है, दामाद को क्या चाहिए, बेटी को क्या चाहिए, बच्चे क्या, सब कुछ वे लोग तैयार करते हैं जितनी उनमें क्षमता और योग्यता या जितनी शक्ति होती है। तो श्रोताओं, शामनाथ जब ये बात कहता है तो माँ यही कहती है कि बेटा मैंने तुमसे कुछ मांगा नहीं है, तुमने जब पूछा तो मैंने जवाब दिया कि मेरे पास अब एक चूड़ी भी नहीं है जो मैं पहनकर बैठूं या जो मैं दिखावे के लिए या तुम्हें कुछ दे सकूं। तो श्रोताओं, यह जो पीड़ा है बड़ों की, इसे समझना होगा। कभी कभी जवानों के मुंह से ऐसी बात निकल जाती है जो इस मदर्स डे या फादर्स डे को शोभा नहीं देती है। हमें उनके प्रति कृतज्ञ होना ही चाहिए। यदि थोड़ा झुकना भी पड़ता है तो इसमें बुराई क्या है? यदि अभी हम कोई हमें डिस्काउंट थोड़ा सा दे दे, 10 बार मेस्सी दुकानदार का करते हैं। अरे जीवन में जिसने इतना कुछ दिया उसे मेस्सी बोलने में हमारी ईगो हर्ट होती है। तो श्रोताओं, और बड़े बूढ़े यदि थोड़ी सी ईगो पाल भी लेते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, उनको सम्मानित कीजिए। ढूंढिए आपके माता पिता में गुण क्या है। पिता बहुत अच्छा गाते हैं कि पिता बहुत अच्छी बिरयानी पकाते हैं कि पिता बहुत प्यार करते हैं कि पिता ज़्यादा आपसे बहस नहीं करते कि पिता आपकी हर इच्छा का सम्मान करते हैं, ढूंढिए। और माँ, माँ का तो पूछिए ही मत, वो तो बेचारी एक प्यार के शब्द के आगे ही फ्लैट हो जाती है। आपको जो कुछ चाहिए उसे बटोरने के लिए, उसे समेटने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। तो श्रोताओं, ये जो मदर्स डे है ना, ये व्यक्ति को जीना सिखाता है। ये सिखाता है कि जिसने तुम्हें पलकों पर बिठाकर रखा, आज उसका सम्मान कीजिए, आज उसको भी इज्जत दीजिए, आज उसके भी किए काम को मान दीजिए। देखिए, सरकारें भी एक सम्मान देती हैं, जब कोई व्यक्ति समाज के लिए कुछ विशेष करता है तो उसको OSK मिलता है, या भारत जैसे देश में पद्मश्री मिलता है, इंग्लैंड में सर आदि की उपाधि मिलती है। कोई भी कुछ करता है तो उसे सरकारें भी पहचान देती हैं। तो हम अपने घर में अपने प्यारे से माता पिता जो एक एक ही हैं,
जो डबल ट्रिपल नहीं।

हो सकते, उनको सम्मान नहीं दे सकते? जीवन में माँ तो एक ही होती है, पिता भी एक ही होते हैं। ऐसे आप दुनिया में जिसको मर्जी माँ बना लें, मातृत्व हर नारी के भीतर होता है, पितृत्व पुरुष के भीतर भी होता है, लेकिन जो अपने माता पिता हैं वे तो एक ही होते हैं ना, जो बायोलॉजिकल होते हैं। तो आज के दिन उनको सम्मान कैसे देंगे, ये आपको ढूंढना होगा। अब आप कैसे सम्मान देंगे? आप उनसे गले मिलते हैं कि आज उनके मुंह में एक एक रसगुल्ला डालते हैं। आप कहेंगे उनको डायबिटीज़ है। अरे भाई, डायबिटीज़ है तो कोई बात नहीं, आप उनके लिए फल की टोकरी ले जाइए और एक फल काट कर छील कर प्यार से उनको खिला के तो देखिए। जैसे हम अपने बच्चों को पालते हैं, आज जब वे बूढ़े हो रहे हैं तो उनको भी इस प्यार से हमें देखना होगा। यदि उस प्यार को हमने मार दिया, जिंदा नहीं रखा, तो ये रिश्ता झूठा ही रह जाएगा। तो चलिए ये गीत सुनते हैं।

0: इतिहास के झरोखों से।
1: श्रोताओं, मातृत्व दिवस का रूप केवल घर तक नहीं है, माँ बहुत ही विस्तृत होती है। कभी कभी अपने बच्चों तक सीमित रह जाती है। कुछ परिस्थितियाँ होती हैं, कुछ स्वभाव होता है, कुछ दबाव होते हैं, कुछ परवरिश होती है। लेकिन कभी कभी माँ का रूप जो इतिहास में देखने को मिलता है वह अनोखा ही होता है। आप इतिहास के झरोखों में जब जाएं और वहाँ आप माँओं के रूप देखें तो लगता है कि माँ का इतना विशाल रूप। शिवाजी को देखिए, जीजाबाई बचपन में उन्हें हर बार वो किला दिखाती थी, कहती थी इस किले को तुम्हें जीतना है, ये तुम्हारा है। ये वाक्य कितना बड़ा काम कर रहा था, आप सोचिए। और जीजाबाई जब शिवाजी को ये कहती हैं तो शिवाजी बस उसी सपनों में रहते हैं। और बड़े होकर उन्होंने अपने दुर्ग को जीता, उसके साथ साथ दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए, जिसे कहते दांत खट्टे कर दिए। आसान नहीं था उनके लिए शिवाजी को पकड़ना। एक बार पकड़ लिया, अब जब जेल में डाल दिया, अब शिवाजी को निकलना था। क्या किया उन लोगों ने? उनके जो सैनिक थे उन्होंने कहा कि आज हमारा एक त्योहार है, हम चाहते हैं कि शिवाजी हमारी ये फल की वस्त्रों की टोकरियों को एक बार छू लें और फिर हम गरीबों में बांट सकें। समझ ही नहीं आई पहरेदारों को कि क्या खेल हो गया। उन टोकरियों में ही वे शिवाजी को बिठा के बाहर निकाल के आ गए। और शिवाजी जो युद्ध करते थे, आसान नहीं था मुगलों के लिए उसे रोक पाना, वहां तक वे पहुंच ही नहीं पाते थे। तो श्रोताओं, माँ जो बीज डालती है ना, वो जब अंकुरित होते हैं तो इतना मजबूत पेड़ बनता है कि आप इतिहास के पन्नों में जब देखते हैं तो उस समय इन माओं के चरण छूने को मन करता है। ऐसे ही माँ सीता देखिए, गर्भवती थी जब उन्हें निष्कासन या लक्ष्मण जी वन में छोड़कर आए। उस कथा में मैं ज्यादा नहीं जाना चाहूंगी, बस इतना ही कहना चाहूंगी कि राम और सीता दोनों चाहते थे कि उनके बच्चे ऋषि आश्रम में ही पले। ये कथा एक सहारा लिया गया और एक मर्यादा की बात कर दी गई, लेकिन वास्तव में दोनों की सहमति ही थी। इसीलिए लव कुश जैसे तेजस्वी बालक इस देश को मिले। लेकिन माँ सीता शस्त्र और शास्त्र दोनों की ज्ञाता थी। अपने बच्चों को उन्होंने देखिए कितना योग्य बनाया। तो इतिहास के झरोखों में जब हम झांकते हैं तो हैरानी होती है, राजा जनक की पुत्री, राजा दशरथ की पुत्रवधु, राजा राम की अर्धांगिनी वाल्मीकि आश्रम में रहती हैं। और आश्रम का जीवन आप जानते हैं, कितना संयमित, कितना व्यवहार कुशल और कितना साधनामय होता है। और सीता जी ने वह जीवन जिया, अपने बच्चों में उन गुणों को विकसित किया और उन गुणों ने ही देश को गणराज्य, पंचायत राज्य, इस सब की परिकल्पना दी। क्योंकि आप देखिए, कोई भी इतिहास का कागज उठा लीजिए, लव कुश ने किसी राज्य को स्वीकारा नहीं, वे केवल जनतंत्र या जनता की सेवा ही करते रहे। पूरा जीवन उन्होंने इसी में समर्पित कर दिया। तो श्रोताओं, ये जो माता का रूप होता है ना,

ये इतना विस्तृत कवि हो जाता है कि इतिहास उन पन्नों को स्वर्णिम अक्षरों में सहेज कर रखता है। मीराबाई का उदाहरण देख लीजिए, माँ ने गिरधर की मूर्ति दे दी कि यही तेरा दूल्हा है, मानो अध्यात्म की पहली सीढ़ी पर बच्ची को चढ़ा दिया। जीवन भर वह तो इसी में ही रम गई, हेरी मैं तो दर्द दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। जौहर की गति जौहर जाने, जो जिन जौहरी हुए, मतलब जो जौहरी होता है, जो सोने की वैल्यू को समझता है, वही जानता है कि सोना क्या चीज है। हर आदमी को तो पत्थर दिखाई देता है, तो यही मीराबाई जहर का प्याला पी लिया, सांप की टोकरी को हंसते हंसते खोल लिया, हर संकट को सहज भाव से ले लिया और सहजता से आगे निकलती गई। तो श्रोताओं, वो जो माँ का योगदान कहीं होता है ना, वो बड़ा भव्य होता है। ऐसे ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई देखिए, वह मातृत्व रूपा बन गई थी। आप सोचिए, जिस झांसी में केवल पुरुषों की सेना थी, रानी लक्ष्मीबाई ने महिलाओं की सेना खड़ी कर दी। आसान था क्या? जब तक वो मातृ रूप नहीं था उनका, अर्थात प्रत्येक का घर देखती होंगी, उनके बच्चों के लिए साधन जुटाती होंगी, उनके परिवारों के दुख सुख में भागीदार होती होंगी, तभी तो जो उनकी सेना थी इतनी विश्वसनीय थी कि उनकी सहेलियां मुद्रा नाम की दासी तो उनके साथ ही थी। जब अंग्रेज उनके पीछे आ गए थे, उनका घोड़ा घायल हो गया था, तो उन्होंने अपनी इस सहेली से ही कहा था कि उसने कहा झांसी की रानी से कि मुझे अपने पूरे कपड़े ये सब पगड़ वगैरह दे दो, ताकि उनको धोखा लगे और आप निकलो यहाँ से। और मुद्रा लड़ती रही, झांसी की रानी निकल गई, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जीते जी मुझे अंग्रेज हाथ न लगाने पाए। और यही हुआ, उनका घोड़ा घायल था, अंत में वे गिरी भी, लेकिन उनको अंग्रेज छू नहीं पाए। तो श्रोता, वो जो मातृत्व की शक्ति है ना, वो अपने आप में अनुपम है, हमारे माता पिता में भी है। हम इस धोखे में ना रहें कि उनमें कोई शक्ति नहीं। अरे, उनमें शक्ति है, तभी तो आप खड़े हैं जमाने में, तभी तो आप कहीं कार्य कर रहे हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं, एक समाज में आप जिंदा हैं। आपकी माँ ने उस जमीन को बोया है, उस जमीन को सींचा है, तब तो आप खड़े हुए हैं ना। तो श्रोताओं, और कोई भी माता पिता भगवान नहीं होते ना, भगवान की तरह होते हैं, भगवान होते नहीं हैं, उन वे भी मनुष्य हैं। हो सकता है कभी कोई छूट, कोई कमी, कोई गलती हुई हो आपको अपने ज़माने के मुताबिक। अब आप कहें कि मेरी माँ को तो मोबाइल नहीं आता, अब ये कोई गलती नहीं है ना, ये तो वक्त की बात है। पता नहीं आपका बेटा कल को रॉकेट चलाएगा तो आपसे कहेगा आपको तो कुछ भी नहीं आता, एक गाड़ी सिर्फ चलाते हो, तब आप क्या जवाब दोगे? जमाना तेजी से बदल रहा है, लेकिन अपने युग में जिसने जैसा जिया उसका सम्मान करना चाहिए, अपनी माँ को पहचान देनी चाहिए, पिता की ईगो को बचाए रखना चाहिए। श्रोताओं, बहुत अजीब आपको लग रहा होगा, लेकिन बूढ़े आदमी की, ढलती उम्र के आदमी की ईगो को जब हम बनाए रखते हैं ना, हम उसे सम्मान देते हैं, हम उसे इज्जत देते हैं। उन्हें ये मत सिखाइए कि वे आपके सामने झुकते क्यों नहीं हैं, वे आपकी बात क्यों नहीं सुनते हैं। सुन लीजिए उनकी बात भी, पता नहीं उनकी 10 बातों में 3 बातें काम की ही निकल आए। एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ, देखिए उसमें पिता का योगदान कितना ज़बरदस्त है। एक जगह पर शादी थी, लड़की बहुत योग्य थी और लड़के वालों को लड़की पसंद आई, लेकिन लड़की योग्य ज़्यादा थी और लड़के वाले चाहते थे कि हर हाल में वो इनके घर की बहू बने, आगे संतानों की माता भी बने। तो लड़की के पिता ने कहा कि देखो भाई, शादी मुझे मंजूर है, लेकिन विवाह में केवल जवान लोग आएंगे। आजकल ऐसे ही हो रहा है ना, पार्टी है तो केवल जवान लोग होंगे, कितनी ही पी लें, पड़े रहें, गाली गलौज करें, क्या करें, जब बड़े बूढ़े नहीं होते, आपको पता है आँख की शर्म भी पानी बन जाती है। तो यही उन्होंने कहा कि देखो केवल जवान लोग आएंगे। अब भाई, शादी तो करनी थी क्योंकि लड़की खूबसूरत योग्य, तो अब क्या किया जाए? तो लड़के ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, उन्होंने आग्रह किया है कि केवल जवान ही आएंगे। तो पिता ने कहा कि बेटा घबराओ मत, तुम एक बड़ा ढोल लो, क्योंकि बारात जानी है ना, उस ढोल में मुझे बिठा लो तुम और ले चलो बारात। तो खैर, उपाय काम आया, सब लोग वहाँ पहुँचे, उन्होंने बड़ी आवभगत की, सबको बहुत ही सम्मान दिया, खाने पीने को दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, आप लोग 20 लोग हैं ना, आप केवल 3 दिन यहाँ ठहरेंगे, हमने बहुत ही

अच्छे आपके लिए कटहल मतलब जक आपके लिए मंगाए हैं, लेकिन आपको 3 दिन में ये 20 जक खत्म करने हैं, तब हम अपनी कन्या को आपके साथ भेजेंगे, अन्यथा आप खाली हाथ जाएंगे। अरे रात को तो इतनी चिंता हो गई, ये 20 बड़े बड़े जाक ये लोग कैसे खाएंगे, तो बीमार हो जाएंगे। तब इस लड़के ने धीरे से अपने पिता से कहा कि ऐसी ऐसी बात हुई है, क्या करें पिताजी। तो पिताजी ने क्या कहा, जाके उनसे कहो कि हम 20 जाक जितने भी जाक हैं ये 20 हम खाने को तैयार हैं, लेकिन एक बार में एक ही जाक काटा जाएगा कटहल, और हर बार उसका टेस्ट अलग होना चाहिए, जब कोई पकाए तो जब एक ख़त्म होगा तब आप दूसरा काटेंगे। अब सोचिए आप 50 लोग अगर उसमें एक जाक की सब्जी बने तो कितनी आएगी सबके हिस्से, एक एक टुकड़ा भी मुश्किल से, तो पता ही नहीं चला एक जाक ख़त्म हो गया। अब दूसरा बना, उसने पहले ही कहा था कि उसका स्वाद भिन्न होना चाहिए, अब दूसरा दूसरी तरह से बनाया गया, तो 20 जाक कटे, कटहल काटे गए और एक के बाद एक बने, तो श्रोताओं पता ही नहीं चले कब खाए गए कब ख़त्म हो गए। अगर 20 इकट्ठे बना दिए जाते बहुत ज़्यादा खाना पड़ता, सब बीमार हो जाते, मामला सुलझता ही नहीं और बारात खाली हाथ जाती बीमार होकर। लेकिन पिता की राय ने जो जीवन के अनुभव से पैदा होती है, जिसे हम कहते हैं कि वे लोग बड़े प्रैक्टिकल हैं, उसने देखिए कैसे बचाया और वे बहू को ससम्मान लेकर अपने घर लौटे। तो श्रोताओं ये जो जीवन की प्रैक्टिकल बातें होती है ना, ये बड़ों को समझ आती हैं। प्रेमचंद की एक कहानी है बड़े घर की बेटी, उसमें अब जब शादी, वो लड़की बड़े घर की है, अब शादी होके यहाँ आई है, तो देवर एक चिड़िया मार कर लाया है और बोलता है कि पकाओ मेरे लिए, तो जितना घी है वह डाल देती है और घी ख़त्म हो जाता है, तो देवर कहता है कि तुमने सारा घी डाल दिया, तो वो कहती है कि इतना घी तो हमारे यहाँ नौकर ही खा जाते हैं, तो झगड़ा बढ़ जाता है और अंत में वह अपने पति से कहती है मैं तो यहाँ रहूँगी नहीं। और पति भी फिर निर्णय लेते हैं, क्योंकि वह शहर में भी नौकरी करते थे और ससुर सब देख रहे हैं कि घर में इतना झगड़ा बढ़ गया है कि दो ही बेटे हैं और दोनों अलग होना चाहते हैं, और बहुत समझाते हैं वे भी, लेकिन देखिए अनाड़ी आदमी आनंदी जो बहू है उसका पति जो है, क्योंकि जो ससुर है वे पूरे गाँव के साथ बैठे बातचीत कर रहे हैं, एक ज़मींदार की तरह से हैं, तो जैसे वो बातचीत कर रहे हैं तो बड़ा बेटा आता है कि अब हम आपके साथ नहीं रहेंगे, तो वे कहते हैं कि बेटा बाद में बात करते हैं। ये बड़े देखिए बहुत बात को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन छोटे कभी कभी समझ नहीं पाते हैं। और आनंदी चुपके से सब सुन रही है कि ससुर में और पुत्र में क्या बातें हो रही हैं पति में। तब वो कहती है कि वो देवर आता है कि भाभी मुझे माफ़ कर दो, वो कहती है कि क्या माफ़ करूँ मैं आपको, फिर भी उसके मन में आता है कि नहीं उसने माफ़ी मांगी है। और इधर पति जो है वो अपने पिता से उलझ रहा है। जब पति अंदर आते हैं तो आनंदी कहती है कि नहीं हम अलग नहीं होंगे, तो बहुत हैरान हो जाता है पति, अभी तो तुम कल तक कह रही थी अलग होना और अब तुम कहती हो अलग नहीं होना। वह कहती है नहीं मैं यहीं रहूँगी। और जब उसका पति अपने पिता से कहता है मतलब ससुर से कि हम नहीं अलग हो रहे, तो बहुत सुंदर वाक्य वहाँ पर प्रेमचंद ससुर से कहलवाते हैं, बड़े घर की बेटियाँ ऐसी ही होती हैं, वह टूटते घरों को फिर से जोड़ देती हैं। तो श्रोताओं ये जो बड़ों का अनुभव, छोटों की विनम्रता कैसे घर को जोड़ देती है, प्रेमचंद ने उसमें बड़ा सुंदर दिखाया है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, हमारी बेटियाँ एक चिड़ैया हैं, चिड़िया की तरह हैं, पालते हैं और एक दिन उड़ जाती हैं अपने ससुराल में, लेकिन उनका प्रेम अपने परिवार में बना ही रहता है। पर इस प्रेम को बनाए रखना और सकारात्मक रखना, हर बार जब माँ से मिले तो कुछ ऐसे मिले कि उन्हें अच्छा अनुभव हो, उन्हें ये ना लगे कि पता नहीं अभी आके क्या बोलेंगे, पता नहीं क्या बोल बैठेंगे कि मेरा मन दुखेगा, मैं तो अब कोई जवाब ही नहीं दूंगी, मैं तो बोलूंगी ही नहीं। ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए, उनको खुल के बोलने दीजिए, उनको भी हंसने दीजिए, उनकी कोई चीज़ है उसकी सराहना कीजिए, ताकि उनका दिल बड़ा हो कि अब मेरे बच्चे आएंगे तो मेरी बनाई हुई चीज़ को पसंद करेंगे। मैं देवीना जी का भी स्वागत करती हूँ, एक प्यारा सा गीत वे डालने वाली है।

0: RM3 Radio. Radio.
1: इतिहास के झरोखों से
2: श्रोताओं, इतिहास के झरोखों में अनेक माएं छिपी हुई हैं और वे माएं हम माओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, लेकिन हमारे बच्चों को भी वह विनम्रता सीखनी होगी, क्योंकि बिना विनम्रता के वो कृपा नहीं मिलती है। वो माँ के प्यार में जो एक जादू होता है ना, वो मिट जाता है। तो थोड़ा हम विनम्र हो जाएं, मदर्स डे को बड़े प्यार से मनाएं और अपने माता पिता को कम से कम ये 2-3 दिन खुशियाँ तो दें, और फिर जब समय मिले उनको एक फ़ोन करें उनसे। सारा दिन हम मोबाइल पर होते हैं, लेकिन माँ को तो एक बार कर दें, माँ क्या कर रही हो, तुमने खाया कि नहीं खाया। सारा दिन तुम्हारी ये आवाज़ उसके दिमाग में एक घुंघरू की

तरह बजती रहेगी। तो बस हम सबको उनका ध्यान रखना है, क्योंकि वे बढ़ती चढ़ती उम्र में हैं और हम जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं। तो श्रोताओं, आप सभी को मदर्स पर फादर्स डे भी अभिनंदन। दोनों के बिना घर की गृहस्थी अधूरी ही रहती है। मुझे और देवीना जी को अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभ दिन।

0: माँ।
1: माँ एक ऐसा शब्द जिसमें प्यार,
0: अपनापन और पूरा संसार बसता है।
2: माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा।
1: माँ की मुस्कान से घर में खुशियाँ खिल उठती हैं।
0: उनके आवाज से मन को सुकून मिलता है। इस मदर्स डे पर हमारी पूरी एमबीसी रेडियो टीम की ओर से अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।
1: मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: माँ एक ऐसा शब्द जिसमें प्यार
1: अपनापन और पूरा संसार बसता है।
2: रॉक सेंटर 95.5 95.6 95.6 East West 98.3 98.3
3: इस मदर्स डे पर हमारी पूरी एनबीसी रेडियो टीम की ओर से अ वेरी हैप्पी मदर्स डे
0: मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: नहीं आती है मेरे माँ को यारो, गिनती नहीं आती है मेरे माँ को यारो, मैं एक रोटी मांगू वो दो ही लाती है। जन्नत के लम्हों का दीदार किया था हमने, जन्नत के लम्हों का दीदार किया था हमने, जब माँ ने मुझे गोद में उठा लिया था। लोग कह रहे हैं कि आज माँ का दिन है, लोग कह रहे हैं आज माँ का दिन है, ऐसा कौन सा दिन है जो माँ के बिन है। मौत के कई रास्ते हैं, मौत के कई रास्ते हैं, लेकिन जन्म का एक ही रास्ता है और वह है माँ। आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, नमस्कार और आदाब। आज की चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत किया जाता है। जिस प्रकार से आप लोगों को पता चल ही गया है हम माँ के बारे में बात कर रही हैं, तो बेशक आज मातृ दिवस के संदर्भ में एक विशेष कार्यक्रम की प्रस्तुति की जा रही है। रेडियो मॉरिशस की लहरों पर इसका सीधा प्रसारण किया जा रहा है और आपको बता दिया जाता है कि माँ एक ऐसा प्राणी है जो न केवल हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे विश्व के लिए, अपितु हमारे धरती के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणी है। और माँ हमारे सुबह की शुरुआत से लेकर के हमारे रात्रि काल के अंत तक का, सुबह से लेकर के रात तक का सब कुछ संभाल लेती हैं। और इसी माँ को सम्मान देने के लिए, इसी माँ को ज्यादा से ज्यादा महत्व देने की दिशा में आज हम यहाँ पर मातृ दिवस के संदर्भ में एक विशेष कार्यक्रम लेकर आए हैं। और हमारे साथ ऐसी दो माताएं हैं जो एक कामकाजी हैं, काम करने वाली हैं, और दूसरी गृहिणी। आज उनसे बात करने का मौका मिल रहा है। सबसे पहले इन दो माताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं मातृ दिवस के संदर्भ में। नमस्ते डॉक्टर वर्षा।
1: नमस्ते अभी।
0: नमस्ते श्रीमती अंजनी।
2: नमस्ते अभी जी। सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम।
0: जी हम बिल्कुल, हम आपको बताना चाहेंगे इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी माँ हैं जो कामकाजी हैं। कहने का मतलब ये है कि वे न्यू एजुकेशनल कॉलेज की

0: दी अध्यापिका हैं, उनका नाम है डॉक्टर वर्षा भगीरथ कालीचरण। आपका स्वागत हम करते हैं। और डॉक्टर वर्षा, आप इस कार्यक्रम में आप आए हैं, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। मुझे पता है कि आप बहुत ही व्यस्त रहती हैं हमेशा, और मतलब हिंदी के प्रचार प्रसार में आप बहुत कार्य कर रही है और करते जा रही है। एकेडमिक्स जर्नल पेपर्स को लेकर के आप बहुत कुछ करते जा रही हैं, फिर भी इन सब को छोड़ छाड़ करके माँ की एक बहुत ही बृहद जिम्मेदारी को संभालने के लिए आप यहाँ पर मतलब है, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
1: धन्यवाद अभी।
0: और आप हैं श्रीमती अंजनी अदिन, आप एक गृहिणी होकर के भी अपने पति के कारोबार संभालती हैं। मुझे पता है कारोबार को संभालना इतना आसान कार्य नहीं है, फिर भी इन सब को छोड़ छाड़ करके आज यहाँ पर आए हैं, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।
2: धन्यवाद आपको भी।
0: जी हाँ श्रोतागण और दर्शकगण, हम आपको बताना चाहेंगे कि मातृ दिवस के संदर्भ में यहाँ पर एक विशेष कार्यक्रम की प्रस्तुति की जा रही है। जब हम मातृ दिवस के बारे में बात करते हैं तो अलग अलग पहलुओं को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। मॉरिशस में मई महीने के अंतिम जो रविवार है, इसका हम यहाँ पर मॉरिशस में हम मातृ दिवस मनाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी माताओं से मिलने जाते हैं। छोटे बच्चे अपने माँ के लिए जो पिकी बैंक होते हैं, छोटे छोटे पैसे वे लोग इसको मतलब कलेक्ट करते हैं, और बाद में उस पिकी बैंक को तोड़ करके उसको लेकर के अपने पिताजी की मदद के साथ वे लोग अपनी माँ के लिए फूल खरीदते हैं, या फिर कार्ड लिखते हैं, या कुछ एक छोटी सी भेंट देते हैं। ये बच्चे की जो मासूमियत है, माँ की जो ममता है, उनकी जो भावना है, उसमें और ज्यादा वृद्धि आती है। तो सबसे पहले डॉक्टर वर्षा, आप हमें ये बताइए कि आपके लिए माँ का अर्थ क्या है?
1: माँ ममता, प्रेम, ममत्व भाव से भरी हुई होती है, और मातृ दिवस जो है माँ के प्रति प्रेम, सम्मान और उनके त्याग के लिए समर्पित एक विशेष दिन है। वैसे तो माँ के सम्मान देने के लिए संपूर्ण जीवन भी कम होता है, फिर भी जैसे अभी आपने बताया कि विश्व में माँ के सम्मान के लिए एक दिन हम लोग मातृ दिवस मनाते हैं।
0: और श्रीमती अंजनी, आपके लिए, आपके अनुसार?
2: मेरे अनुसार माँ एक, उनके रूप अनेक होते हैं, तो माँ त्याग, ममता, सहनशीलता, ईश्वर प्रेम का प्रति, ईश्वर प्रेम का एक अनोखा रूप है। माँ वह दीपक हैं जो स्वयं जलकर अपने परिवार के जीवन को प्रकाश करती हैं। माँ अपनी आंसू छिपाकर अपने बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लाती हैं। जब सारा संसार साथ छोड़ देता है तो केवल माँ का आशीर्वाद ही बच्चे के पीछे खड़ा रहता है, और जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वह सीख बोलना, चलना एवं प्यार करना अपने माँ से ही सीखता है। माँ की गोद ही संसार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। कहा गया, हमारे वेदों में कहा गया है, स्त्री ब्रह्म भूवितः, अर्थात स्त्री या माँ को ब्रह्मा कहा गया है। तो बिना मजबूत नींव के कोई भवन खड़ी नहीं होती, उसी तरह माँ के संस्कार के बिना बच्चे का जीवन अधूरा रह जाता है। एक बच्चा सफल हो या असफल, निर्धन हो या धनी, बच्चे माँ की आंखों में उसका स्थान कभी कम नहीं होता।
0: और ये भी कहा जाता है दर्शकगण और श्रोतागण कि हम एक ऐसी दुनिया में बड़े होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो दुनिया है माँ के पेट के भीतर। और माँ के पेट के भीतर में जब एक बच्चा बड़ा होता है तो उसी समय माँ उस बच्चे के प्रति का जो प्यार है वो उसका जो बीजारोपण शुरू हो जाता है। और

0: ऐसी स्थिति में उसको सही तरीके से ब्लाइंड लव कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि उस समय जो सबसे महत्वपूर्ण दुनिया है वो है गर्भ की दुनिया, माँ का। अब डॉक्टर वर्षा, आप हमें ये बताइए कि जब हम लोग मातृ दिवस के बारे में बात करते हैं तो क्या मातृ दिवस केवल मॉरिशस के संदर्भ में बता रहा हूँ, केवल 30 मई के लिए ही सीमित है?
1: नहीं, वैसे तो शुरुआत में जैसे हम लोगों ने बताया, आपने भी बताया कि माँ को अगर हम जीवन भर धन्यवाद करें, उनके प्रति आभार करें तो भी कम है। आपने शुरुआत नींव से की है कि 9 महीने माँ बच्चे को अपने गर्भ में धारण करती है। जो माँ खाती है, पीती है, जो भी अनुभव माँ करती है बच्चे भी करती है, उसका पूरा प्रभाव। अभी आपने भी बताया कि संस्कार की बात की, तो ये सभी जो संस्कार है, जो नींव बनता है, वो इन 9 महीने में बनता है।
0: एक ढांचा
1: जो बनता है इन 9 महीनों में बनता है। तभी जाके बच्चे का जब जन्म होता है तो इन सभी संस्कार से वो जन्म लेती है। तब जाके इस संसार में वो बच्चा जब आता है, फिर हम अलग से संस्कार बच्चे में डालते हैं। तो माँ की जो महानता है जन्म, हमारे जन्म से पहले ही है। ऐसा नहीं है कि माँ का की महानता केवल जन्म के बाद या जब तक, आपने शुरुआत में भी कहा है कि माँ का जो स्थान है सर्वोपरि है, क्योंकि उनकी जो महानता है उनका गुणगान स्वयं ऋषि मुनि ने किया। और हमारे भारतीय संस्कृति में यह भी कहा गया है कि स्वयं भगवान जो होते हैं इसलिए अवतरित होते हैं कि वो इस माँ के प्रेम को समझ पाए, इस माँ के प्रेम का अभ्यास वो अनुभव कर पाए। तो जिनके पास माँ है, मैं सोचती हूँ वो सबसे भाग्यशाली होती है। और हमें केवल एक दिन के लिए मातृ दिवस सीमित नहीं रखना चाहिए, पूरा जीवन, संपूर्ण जीवन माँ की प्रति कृतज्ञता, सभी बच्चों को, सभी को माँ की प्रति कृतज्ञता रखनी चाहिए।
0: और श्रीमती अंजलि, आपको भी हम आपसे भी ये प्रश्न पूछना चाहेंगे, आपके लिए क्या मातृ दिवस केवल एक ही दिन सीमित है?
2: जी नहीं, मातृ दिवस केवल एक दिन नहीं मनाना चाहिए। जो मान सम्मान हम माता पिता को मातृ दिवस के दिन पर देते हैं, जो प्रेम हम माता पिताओं को मातृ दिवस के दिन पर देते हैं, मैं सोचती हूँ ये प्रतिदिन देना चाहिए। उनका मान सम्मान, उनका साथ हमको पूरी जिंदगी देना चाहिए। मातृ दिवस केवल एक दिन हम नहीं मना सकते, लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि यह परंपरा शुरू कहाँ से हुई। तो यह परंपरा शुरू हुई अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में, एक महिला हुई थी आना जर्विस नाम से जानी जाती थी वह महिला। वह महिला अपने माँ के निर्धन के बाद उनकी याद में एक अभियान चलाया सन 1908 को, 10 मई 1908 को यह अभियान चलाया उनकी माँ के निर्धन के बाद। तभी से वहाँ अमेरिका के राष्ट्रपिता ने इस लोकप्रियता को देखकर एक कानून पास किया कि हर वर्ष मातृ दिवस मनाया जाए सन 1914 को, 8 मई 1914, हर मई दूसरे रविवार को यह पर्व मनाया जाए। तभी बहुत सारे देशों ने, जैसे बोलते हैं, कॉपी किया कि मातृ दिवस इतना लोकप्रिय है तो सभी लोगों ने, सभी देशों ने मनाना शुरू किया। और यही परंपरा चली आई अब तक। तो मैं सोचती हूँ अगर आना जर्विस अपनी स्वर्गीय माता के लिए एक दिन घोषित कर सकती हैं, तो हम मॉरिशन जो सारे जनता मातृ दिवस मना रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपने जीवित माता पिता के लिए एक दिन विशेष रखें उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए। वाई नॉट, क्यों? क्योंकि रोज हम वही प्रतिदिन मान सम्मान उनका साथ दे, फिर एक दिन विशेष रखें माता को स्पेशल बनाने के लिए, जो उनको पसंद है वही खाना बनाना, उनको कुछ करने ना दें। वैसे माता पिता को कुछ ज़्यादा चाहिए भी नहीं, अगर बच्चे साथ दे तो बच्चों का प्रेम, बच्चों का साथ, परिवार का साथ, यही माताओं को चाहिए, माताओं, स्त्रियों को यही चाहिए।

0: हमें कुछ उपहार की आवश्यकता नहीं। अगर बच्चे ठीक से हमसे बात करे, हमसे प्रेम करे, क्यों बहन जी ये
1: जी,
0: तो बड़े बड़े उपहार की हमें कोई जरूरत नहीं।
2: ये तो व्यापार की दृष्टि से एक अलग लेवल साथ चला गया, क्योंकि उन लोगों को भी काम करना पड़ेगा ना। आप तो व्यापार के क्षेत्र में, आपको पता चलना चाहिए।
0: लेकिन उपहार देना कोई बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है उपहार देना,
2: एक खुशी।
0: हाँ, बहुत प्रेम से, आदर के साथ,
1: लेकिन मान सम्मान,
0: मान सम्मान के साथ अगर एक माता पिता को वही उपहार दी जाए तो कितनी खुशहाली और प्रेम वातावरण ही बदल जाता है। तो मेरे ख्याल से एक दिन नहीं, हमेशा। हमारी संस्कृति ही इतनी ऊंची है कि हम प्रतिदिन मातृ दिवस मनाएं।
2: बिल्कुल। और ये भी कहा जाता है कि जब हम लोग सुबह उठते हैं, जब हम लोग छोटे होते हैं तो हमारी माँ ही आती है हमें उठाने के लिए, तो वहाँ पर हमारे जो दिन की जो शुरुआत है वो माँ के साथ शुरू होती है।
1: माँ के पैर छूकर दिन की शुरुआत होती थी।
2: बिल्कुल जी। और माँ जब उस कर्टेन को निकालते हैं, वो जो सूर्य की जो किरण हम पर, हमारी आंखों पर आते हैं, तो माँ के कारण ही ये सब होती है। और रात को जब हम लोग सोने जाते हैं तो हमारा जो अंतिम वाक्य है हम अपने माँ से ही पूछते हैं कि माँ डोंट फॉरगेट, कल मुझे ये करना है, लेके जाना है, या फिर माँ ही हमसे बात करेंगी, पूछते हैं। तो हमारा जो अंतिम जो वार्तालाप है वो माँ के साथ होते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे दिन की शुरुआत और उसका अंत माँ के साथ ही है। ओके, सो आद्यान जिसे हम कहते हैं, आदि से लेकर के अंत तक माँ के साथ ही होते हैं। इसीलिए हमें लगता है, जितने सारे लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, कि माँ एक दिन में, मातृ दिवस हम एक दिन में ही उसको सीमित नहीं रख सकते हैं, ना कि व्यापारिक दृष्टि से हमें उसको देखना चाहिए, लेकिन जो हमारे जो दैनंदिन हैं, जो हमारे जो रोजाना कार्य हैं, उसको ध्यान में रख करके हमें सोचना चाहिए कि हाँ, हमारे माँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कभी कभी हम लोग ऑफिस में हैं, माँ ने एक मैसेज भेजा, उसका एक वाक्य है, आपने खाना खाया? बस यही। आप चाहे एक पुलिसमैन हो, एक मंत्री हो, या फिर एक बहुत ही ऊंच पद के हो, माँ आपके पद, आपके पैसे, आपकी शोहरत से कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई रुचि नहीं रखते हैं। माँ का जो मेन रुचि ये है, आपने खाना खाया
1: जी,
2: जो मैंने बनाया, या फिर आपने खा लिया, मतलब खाने से जुड़े जो प्रश्न हैं पूछे जाएंगे। अब डॉक्टर वर्षा, आप हमें ये बताइए कि आप एक अध्यापिका हैं, साथ ही साथ सामाजिक कार्यों में बहुत ही एक्टिव हैं, संलग्न हैं, सक्रिय हैं, और साथ ही साथ आप एक माँ हैं, दो बच्चों की माँ हैं, पति को

0: मेन रुचि ये है आपने खाना खाया
1: जी,
0: जो मैंने बनाया या फिर आपने खा लिया, मतलब खाने से जुड़े जो प्रश्न हैं पूछे जाएंगे। अब डॉक्टर वर्षा, आप हमें ये बताइए कि आप एक अध्यापिका हैं, साथ ही साथ सामाजिक कार्यों में बहुत ही एक्टिव हैं, संलग्न हैं, सक्रिय हैं, और साथ ही साथ आप एक माँ हैं, दो बच्चों की माँ हैं, पति को
1: समाज में इन सब को पार करना कभी कभी मुश्किल होता है, लेकिन फिर मैं क्या करती हूँ, एक योजना बनाती हूँ कि कौन सा कार्य पहले करना चाहिए, कौन सा, मतलब इसको जैसे हम लोग कहते हैं ताला जा सकते हैं, पोस्टपोन किया जा सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि व्यवसाय, बच्ची की परवरिश और घर व समाज के उत्तरदायित्वों के बीच लगातार संतुलन बनाए रखना पड़ता है। और जैसे कि मैं अध्यापिका हूँ, फिर हम लोगों को छुट्टियाँ मिलती हैं, फिर उसमें मैं बच्ची के साथ कंपेंसेट कर लेती हूँ, मतलब फिर ज़्यादा समय मिलता है बच्ची के साथ रहने के लिए।
0: तब एक ऐसा मौका होता है कि से केवल आप और आपके जो बच्चे हैं, एक जो क्वालिटी टाइम जिसे हम कहते हैं,
1: ये छुट्टियां में हम लोग बिता पाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: ये अच्छी बात है।
0: हाँ, तब उस समय एक अलग तरह के एक संवाद होता है ना, माँ और बेटी के बीच।
1: जी जी जी जी,
0: क्या बात। और श्रीमती अंजनी, आपके लिए स्थिति कैसी है, क्योंकि आप तो एक गृहिणी है, एक फुल टाइम जिसे हम कहते हैं माँ की जो जिम्मेदारी है आप संभालती हैं, तो क्या आप उतना समय दे पाते हैं अपने, क्योंकि अपने पति के भी कारोबार आप संभालते हैं?
2: मैं सोचती हूँ जो माताएं घर पे रहती हैं उनको ज़्यादा समय मिलता है, काम उनका कम नहीं होता, ये काम कम नहीं होता, लेकिन उनके पास समय ज़्यादा होता है, तो घर की साफ सफाई, सभी चीज़ों की को सांझ कर रखना, तैयारी ठीक से करना, और सभी लोगों, सभी सदस्यों का ख्याल रखना, टाइम ज़्यादा मिलता है जो लोग घर पे रहती हैं, लेकिन कामकाजी महिलाओं को थोड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल है ना, कभी कभी जाना है, कभी काम पे, कभी कभी रह सकते हैं घर पर और कभी जाना है, तो दोनों को संभालना, यानी कि घर और काम को संभालना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, डबल स्ट्रेस जिसे कहते हैं। जैसे कि बहन जी ने अभी कहा कि खाना बनाने का टाइम नहीं मिलता, तो फास्ट फूड पे ही जाते हैं हम, बहुत ये भी करना पड़ता है, और अपने लिए टाइम नहीं मिलता। अपने लिए हम महिलाओं को भी, माताओं को भी कुछ पैशन होता है जो टाइम नहीं मिलता, थोड़ा सा टाइम हमको भी मिलना चाहिए कुछ करने का, अपने जो हमको पसंद है वो करने का, वो टाइम थोड़ा कम मिलता है, ढूंढना पड़ता है, मिलेगा लेकिन उतना मिलता नहीं
1: जी,
2: तो काम में फंस के रह जाते हैं, बच्चों को देख, बच्चे कितने भी बड़े हो जाए लेकिन माँ का कर्तव्य, माँ को वही उतना ही काम करना पड़ता है, काम घर का काम और बाहर का काम दोनों ही करना पड़ता है,
0: क्योंकि जब एक बच्चा बहुत ही छोटा रहता है, लाइक एक साल दो साल, माँ ये कल्पना करती है अगर वो बड़ा होगा तो मुझे थोड़ा सा वक्त मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि ऑन द कंट्री जो जिम्मेदारी है वो और बढ़ जाती है। आजकल हम बात कर रहे हैं अल्फा जनरेशन के बारे में, अल्फा जनरेशन जो अल्फा पीढ़ी है, ये एक ऐसी पीढ़ी है जो डिजिटल टूल्स के साथ जुड़े हुए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ChatGPT, वे लोग पावर्ड बाय AI, मतलब वे लोग उनके जो दिन की शुरुआत AI के साथ होती है और अंत में भी, तो ऐसे जो अल्फा जनरेशन के जो बच्चे हैं उनको आप एक अध्यापिका होने के नाते, एक क्योंकि आप एक अध्यापिका, एक शिक्षिका होने के नाते आप एक माँ भी है कक्षा में, तो कैसे वहां पर आप इन बच्चों को संभाल लेती हैं, क्योंकि आपकी कक्षा में 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे का मतलब है 40 इलाके से आए हुए हैं, 40 मेंटालिटी से आए हैं, 40 मनस्थिति और फैमिली सोशल बैकग्राउंड से आए हुए हैं, कैसे आप संभाल लेते हैं?
1: देखिए, शिक्षिका समाज का मुख्य निर्माता है, जो भी शिक्षक होता है। तो बच्चे का, बच्चों का, छात्रों का हम

0: लोग मात्र पुस्तकीय ज्ञान नहीं देते हैं, बच्चों का हम लोग सर्वांगीण विकास करते, यानी कि नैतिक मूल या और आज के इस युग में तो और भी महत्वपूर्ण हो गए, और यही कार्य माँ भी करती है। तो आप देखेंगे मेरा सौभाग्य है कि माता होने के साथ साथ मैं अध्यापिका भी हूँ, और मुझे लगता है दोनों भूमिकाएं एक जैसी हैं। कभी कभी घर पर अध्यापिका बन जाती हूँ और कभी कभी विद्यालय में
1: हो जाती है,
0: बनना पड़ता है। फिर कभी बच्ची कहती है यहाँ पे मैं अध्यापिका नहीं हूँ, मतलब क्योंकि दोनों में समानताएं तो है, क्योंकि दोनों क्या करती हैं, दोनों यही कोशिश करती हैं कि हम लोग बच्चे के भविष्य का निर्माण करें। और जिस निस्वार्थ भाव से एक माँ अपनी बच्चे की अच्छाई भलाई सोचती है, कोई अन्य ऐसा व्यक्ति नहीं सोच सकता। उसी निस्वार्थ भाव से एक अध्यापक, एक अध्यापिका अपने बच्चों की भलाई के लिए सोचते। मैं हमेशा अपने छात्रों से, बच्ची से यही कहती हूँ कि जिस निस्वार्थ भाव से हम लोग चाहते हैं वो आगे बढ़े, ऐसा कोई नहीं चाहेगा। अब आप आते हैं, आपने बताया अल्फा जनरेशन, जो बच्चे अल्फा जनरेशन जिसको हम लोग कहते हैं, पूरा दिन नेटवर्क। मैं अपनी बेटी से सीखती हूँ, कभी कभी मैं अपने छात्रों से भी सीखती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा हम लोग पीछे रह गए हैं, लेकिन हम लोगों को भी इस आधुनिक दौर में आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये जो आपने बताया कि नेटवर्क, मोबाइल फोन, इसमें अच्छाई तो है ही लेकिन बुराई भी है। तो बच्चों को, चाहे छात्र हो चाहे मेरी बेटी ही क्यों ना हो, उनको समझाना पड़ता है कि देखिए मोबाइल का फोन सुरक्षा के लिए ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, चाहे कक्षा हो चाहे घर पर हो, मैं एक सीमित समय रखती हूँ,
1: एक दायरा
0: कि आपको मोबाइल फोन चाहिए, ठीक है मैं आपको दिन में आधे घंटे के लिए दूंगी, उससे अतिरिक्त नहीं। उसका नियंत्रण करती हूँ, बच्ची क्या देख रही है उसमें उसका भी नियंत्रण कर रही हूँ। तो मैं सोचती हूँ हर एक माँ को ये बहुत ही आवश्यक है कि बच्चे मोबाइल फोन में क्या कर रहा है, क्योंकि कभी कभी आपको पता है एआई की जमाना है, हम लोग बच्चों को काम देते हैं, बच्चा काम अच्छी तरह से करके देता है,
1: परफेक्शन,
0: लेकिन जब वही काम आप टेस्ट करते हैं बच्चों के साथ, तब आपको पता चलता है कि ये काम एआई ने किया या बच्चों ने किया। फिर इस स्थिति में मैं बच्चों से यही कहती हूँ, चाहे मेरी बेटी ही क्यों ना हो, कि देखिए आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप अध्यापक को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि अगर एआई आपका काम कर रहा है, परीक्षा में एआई आपका काम नहीं करेगा,
1: क्योंकि हमारी जो परीक्षाएं हैं ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल असेसमेंट में है।
0: नेटवर्क का प्रयोग कीजिए लेकिन दुरुपयोग मत करें, दुरुपयोग, सही उपयोग सही मार्गदर्शन के लिए ठीक है। लेकिन देखिए अभी हम लोग कहते हैं ना कि जो भी चीज अत्यधिक हम लोग करते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ही हानिकारक है,
1: जो अति है,
0: अति। तो आप प्रयोग कीजिए लेकिन अति का आप उसका आप निषेध करें।
1: बिल्कुल जी। और श्रीमती अंजनी, आप आपके भी बच्चे हैं, वे भी अल्फा जनरेशन से बिलोंग करते हैं, तो आप किस तरह से आप एक माँ होकर के उन अपने बच्चों को आप कंट्रोल में रखते हैं, वो भी प्यार के साथ?
2: जी, मेरे बच्चे थोड़े बड़े हैं, जब छोटे थे तो कंट्रोल कर सकते थे, अभी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि दे आर अबव 20।
1: अच्छा,
2: okay. तो अडल्ट हैं तो ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो सकती, सभी अपने अपने मोबाइल पर, थोड़ा सा सिर्फ ये जताने के लिए कि मैं माँ हूँ। ये कभी कभी डांट पड़ती है उन लोगों को, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं डांटती, ज़्यादा मोबाइल चला रहे हैं, घर का काम काज जब पड़ा है ऐसा, तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होती हूँ लेकिन ज़्यादा भी नहीं स्ट्रिक्ट,
0: एक संतुलन
1: बनाते
0: जी, संतुलन।
1: बिल्कुल जी, हाँ बिल्कुल, अल्फा जनरेशन से जुड़ी चुनौतियां और आज की माता, यही है हमारा विषय आज की चर्चा कार्यक्रम। हम लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम फिर से यहां पर आएंगे और चिंतन मनन करेंगे अल्फा जनरेशन से जुड़ी चुनौतियों के बारे में।

जी हम बिल्कुल आज की चर्चा कार्यक्रम इस वक्त आप सुन और देख रहे हैं और इस वक्त मातृ दिवस के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो आज की जो माताएं हैं वे जो जो नई पीढ़ी है उनको संभाल रही है और मातृ दिवस के संदर्भ में जितने सारे जो माताएं हैं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं MBC टीम की ओर से आप सब लोगों को हम कहना चाहेंगे मातृ दिवस की मंगल कामना। मातृ देवो भव पितृ देवो भव।

0: जो हमारे हिंदू शास्त्र में इसका उल्लेख किया गया है, इसके बारे में डॉक्टर वर्षा आप क्या कहना चाहेंगी? मातृ देवो भव पितृ देवो भव।
1: माता हमें जन्म देती है, माता हमें जीवन देती है, माता हमारा पालन पोषण करती है और माता हमारी पहली गुरु होती है, इसीलिए उसका स्थान ईश्वर के समान पूजनीय है। दूसरी ओर आपने बताया भी पितृ देवो भव, तो पिता भी हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं और समाज में जीने योग्य बनाते हैं। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति में माता पिता को प्रत्यक्ष देवता माना गया है। कहते हैं कि भगवान नहीं आते हैं, लेकिन भगवान किसके रूप में आते हैं? माता पिता के रूप में। इसीलिए हमें अपने माता पिता को वह मान सम्मान देना चाहिए, क्योंकि माता पिता हमें जन्म देती हैं, निस्वार्थ भाव से हमारा पालन पोषण करती हैं। मैं कार्य करती हूँ, मैं अध्यापिका हूँ, इसके लिए मुझे वेतन मिलती है, लेकिन मैं माँ हूँ इसके लिए मुझे वेतन नहीं मिलते हैं। और इसके लिए कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसको वेतन मिले। माँ नहीं पूछेगी, अभी शुरुआत में आपने भी बताया कि माँ कुछ नहीं चाहती है, क्योंकि माँ में आत्मीयता ममता भरी होती है। माँ शब्द में ही, आप चाहे दुखी हैं, चाहे कुछ भी, आप सुख में भी, किसी भी पल, आपने शुरुआत में कहा था दिन हो या रात हो, जीवन में सुख हो या दुख हो, सबसे पहला जो शब्द आता है अनायास आता है माँ, वो निकलता है किसी भी
0: चोट लगती है। हाँ, आयो माँ,
1: जी जी,
0: माँ शब्द
1: अपने आप अनायास, ये शब्द हम लोगों को सीखना भी नहीं पड़ता है,
0: बिल्कुल
1: अपने आप आता है। तो बच्चों में, इसीलिए तो हमारे भारतीय संस्कृति में मातृ देवो भव और पितृ दोनों ही,
0: बिल्कुल
1: दोनों का स्थान पूजनीय है। इसीलिए तो मातृ दिवस मनाया जाता है, अभी पितृ दिवस भी हम लोग मनाते हैं। कुछ लोग इसी रविवार को मनाएंगे और कुछ लोग अगले रविवार को मनाते हैं, क्योंकि दोनों का स्थान पूजनीय है।
0: और आपके लिए मातृ देवो भव पितृ देवो भव क्या इस आधुनिक परिप्रेक्ष्य में लागू है, सार्थक है?
2: मातृ देवो भव पितृ देवो भव इस युग में क्या हर युग में लागू होता है? मैं एक उदाहरण आपको देना चाहती हूँ। परमात्मा जब एक बच्चे की तकदीर लिखता है तो कर्म अनुसार उसके तकदीर में दुख और सुख दोनों लिखते हैं। लेकिन अगर एक माता पिता को यह अनुमति मिल जाए कि वो अपने बच्चे की तकदीर लिखे, तो वो अपने बच्चे के तकदीर में केवल सुख लिखेगा। और जो माता पिता अपने बच्चे के तकदीर में केवल सुख लिखता है, वो ईश्वर से भी महान होते हैं। तो इस युग में नहीं, बल्कि हर युग में मातृ देवो भव और पितृ देवो भव ही होना चाहिए, ये मेरे विचार से।
0: और हम कहते हैं कि जिस तरह से आप दोनों ने कहा कि मातृ दिवस के साथ साथ पितृ दिवस यानी कि फादर्स डे भी मनाया जाता है, और पिताजी भी इस पारिवारिक ढांचे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। अगर पिता है तो दुकान के सब खिलौने हमारे हैं, ये भी कहा जाता है। तो पिता का भी एक महत्व होना चाहिए, और कभी कभी हम भूल जाते हैं। मातृ दिवस जब आते हैं केवल मदर्स डे कहते हैं कि पिता शब्द पीछे हट जाते हैं, लेकिन पिता का भी एक महत्व है, पिता का भी एक महत्वपूर्ण अंग है। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्योंकि मुझे लगता है कि जब आपको ये उपहार मिलते हैं तो आपके पति वो पीछे रह जाते हैं, या फिर आपको कुछ ऐसा फील होता है?
1: नहीं, पति को भी उपहार मिलता है।
2: पिताजी का मतलब है सपोर्ट
1: जी,
2: वो जो सपोर्ट नारी के पीछे उनके पति से मिलता है, ये बहुत बड़ी बात है।
0: बिल्कुल,
2: तो आपने बोला पिताजी पीछे रह जाते हैं, बहुत एकदम सही बात है, और होना भी चाहिए, उनको पीछे ही रहना चाहिए, क्योंकि हमको सपोर्ट चाहिए। हम माताओं को जो सपोर्ट चाहिए वो पिताजी दे रहे हैं पीठ में,
0: बिल्कुल
2: सपोर्ट कहते हैं इसे,
0: पीठ है सपोर्ट।
2: एग्जैक्टली,
1: अगर पिताजी सपोर्ट नहीं करेंगे तो माताजी जितने भी कार्य करती नहीं कर पाएंगे
0: उनको आगे बढ़ने
1: के लिए वो

0: सपोर्ट, वो सहारा चाहिए चाहिए हुए।
1: और पिताजी को बहुत खुशी होती है जब बच्चे उपहार लेकर आते हैं, वो खुद नहीं लेंगे, माताओं को लेने देते हैं, तो ये खुशी पिता को मिलता है। जैसे ठीक वैसे ही जैसे कि हम जो अपने जिंदगी अपनी जीवन में नहीं कर पाते, हमें अच्छा लगता है जब बच्चे को हम वही चीज़ दे सकते हैं जो हमें नहीं मिला, वो हम अपने बच्चों को जब देते हैं तो जो खुशी माताओं को मिलती है वही खुशी, वही सेम खुशी जो हमारे पीठ पर जो सपोर्ट रहता है उनको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है।
0: माँ पहचान देती है, पिताजी नाम देती है,
1: दोनों साथ मिलके हाँ।
2: और ये भी कहा जाता है कि पिताजी में भी पिता में भी ममता की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। सूरदास की कविताओं में ये इस बात की पुष्टि की गई है। महात्मा गांधी ने स्वयं राष्ट्र भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि मुझ में वो ममता है। तो आप लोगों को लगता है कि नहीं है, होना चाहिए इस तरह से?
0: देखिए माँ दिखाती है,
2: बिल्कुल।
0: पिताजी कभी, मेरे पिताजी स्वयं नहीं दिखाते थे, मतलब सख्त पिताजी जो होते नहीं दिखाते हैं, वो भी अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं, लेकिन करते हैं। बस ये है कि जिम्मेदारियां अधिक होती हैं, इसलिए वो नहीं दिखा पाते। लेकिन है, ऐसा नहीं है कि पिता में वो नहीं है, वो प्रेम नहीं है, वो भी आपसे बहुत ही प्रेम करते हैं, शायद नहीं जताते या नहीं दिखाते, क्योंकि आमतौर पर स्त्रियां ज्यादा भावुक होती हैं, हम लोग अपना प्रेम दिखाते हैं, इमोशन जिसको हम लोग कहते हैं, लेकिन पिता उतना नहीं दिखा पाते। लेकिन नहीं है, इसको कहना गलत होगा,
2: बिल्कुल। और पिताजी के आंखों में इतने आंसू बहते हैं तब जब एक उनकी बेटी शादी करके वो वहाँ से, उस समय जिस समय वो निकल करके दहली से निकल करके जा रहे हैं, उस समय उनकी आंखें नम पड़ जाती हैं, उनकी जो मतलब कांपने लगते हैं कि मेरी लक्ष्मी मुझे छोड़ करके जा रही है। तो मुझे लगता है कि वो पिताजी में भी वो ममतामयी भावना कूट कूट कर भरी हुई है। इसीलिए हमारे वेदों में कहा गया है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, मातृ देवो भव पितृ देवो भव। जितने सारे लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं या फिर देख रहे हैं, एक विनम्र आग्रह की जाती है कि आप लोग अपने माता अपने पिता का सम्मान कीजिए, उनको उतना महत्व दीजिए जितना महत्व आप अपने काम को देते हैं। हमारा काम जो है आजकल के समय में एक प्रायोरिटी बन गई है। उस प्रायोरिटी की आड़ में हम अपने परिवार को, अपने माता अपने पिता को भूल जाते हैं। हमारे जो MBC टीम है, हम बहुत सारी जगहों पर जाते हैं, खासकर आश्रमों में जाते हैं। वहां पर ऐसे बहुत सारी माताएं हैं, ऐसे बहुत सारे पिता हैं। उन माताओं को जब हम देखते हैं, वे चाहते हैं, उसके अंदर में एक ललक है कि हम उनको मतलब गले मिलाएं, उनको थोड़ा सा प्यार दें, उनकी आंखों में आंखें देख करके कहें कि मैं आपके साथ हूं। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। हम लोग करते हैं, हमारी अपनी कोशिश है, हमारे अपना एक साहसिक प्रयास होता है कि हम उनके लिए खाना बना करके लेकर के जाते हैं आश्रम के उन माता या फिर पिता से मिलने के लिए। लेकिन एक दिन तो हम कर रही हैं, हम रोजाना नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके यहाँ आपके माता पिता आपके साथ हैं, उनके साथ जितना हो ज्यादा से ज्यादा आप उनको सम्मान दें और प्यार दें। अब जितने सारे लोग इस कार्यक्रम को देख रही हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: जैसे अभी आपने कहा भी, जब तक आपके माता पिता आपके साथ है, आप उनको प्यार और उनको सम्मान दे, क्योंकि एक ऐसा वक्त आता है, एक ऐसा समय आता है जब दुर्भाग्यवश वो साथ नहीं दे पाते, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई मृत्यु होती है। तो मैं यहाँ पे सभी दर्शकों से, सभी से यही आग्रह करूँगी, अगर आपका सौभाग्य है कि आपके माताजी है, आपके पिताजी है, उनको वो प्यार वो सम्मान चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए। हाँ, आधुनिक जीवन है, हम सभी व्यस्त हैं, उनको क्या चाहिए? अभी आपने शुरुआत में ही कहा कि उनको एक फ़ोन करें, उनसे बात करें। ऐसा नहीं कि केवल कल मातृ दिवस है, माँ मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, तो बाकी 365 दिन आप क्या करते हैं, माँ से बात करते हैं या नहीं कर पाते? तो अपने परिवार के साथ समय बिताए, क्योंकि जैसे अभी मैंने बताया, एक ऐसा वक्त आएगा

0: वो नहीं होंगे, तब आपको वो दुख होगा कि काश काश मैं अपने माता के साथ, मैं अपने पिता के साथ उनको वो समय दे पाती, क्योंकि समय और प्यार यही चीज उनको चाहिए होता है, इससे ज्यादा वो लोग चाहिए नहीं। अगर आप खाली हाथ भी माँ के यहाँ जाओगी, वो भी आपको खाना ये सब
1: कुछ
0: देती रहती है। माँ के हाथ हम लोग खाली जाते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो हमेशा थैली भर कर।
1: मॉरिशस में ये परंपरा है, जब हम अपनी माँ के यहाँ जाते हैं तो उनके यहाँ के जो भाजी हैं, हालांकि भाजी आपके पास भी है लेकिन माँ की भाजी है,
0: क्योंकि माँ के हाथों का खाना
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: वो तो अलग है।
1: अलग
0: मैं भी खाना बनाती हूँ, लेकिन जैसे माँ बनाती है, जैसे सास बनाती है, बेटी भी कहती है कि मैं माँ जो है दादी के जैसी या नानी के जैसे खाना नहीं बना पाती है। हाँ, नहीं बना पाती, क्योंकि उनके पास वो अनुभव है, वो शायद तरीके हैं जो हमारे पास नहीं है। इसलिए घर में जो सास है, ससुर है, जो भी सास ससुर जितने भी वृद्ध लोग हैं, जितने उन सभी का आपको मान सम्मान करना चाहिए, और केवल एक दिन ही नहीं, नहीं अभी पूरा आजीवन।
1: हाँ, आजीवन। और आपके लिए श्रीमती अंजनी जी क्या संदेश?
2: आज मातृ दिवस के अवसर पर हम सभी माताओं को नमन करते हैं, जिन्होंने त्याग प्रेम और संस्कारों से अपने घर और परिवार को संवारा है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सब सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे। मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी माताओं को।
1: बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहेंगे श्रीमती अंजनी जी को, और साथ ही साथ डॉक्टर वर्षा भगीरथ कालीचंद को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपने कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए हुए हैं इसके लिए, और आपने ऐसे सुगम और सुंदर विचार लेकर आए हैं जहाँ पर हमारे जो कार्यक्रम है उसका जो स्तर है उसमें एक वृद्धि आई है। इसके लिए हम आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, और MBC की पूरी टीम की ओर से आप दोनों को हम कहना चाहेंगे मातृ दिवस की मंगल कामना। मुझे पता है कि आज और कल आपका जो दिन है वो बहुत ही रुचिकर है, क्योंकि आज आपको भी भेंट मिलेंगे, प्यार सम्मान सब कुछ, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे जो शब्द है माँ को लेकर के अलग अलग प्रकार के आते हैं। जब हमनी के तप लगेला तो हमनी माँ के शब्द के पुकारी ला सा, जब हमनी के गोर में एगो घाव लगेला तो माँ शब्द ही सामने आवेला, तब माँ शुरुआत से लेकर के अंत तक ही आवेला। इसी के साथ आप जितने सारे लोग इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं MBC की पूरी टीम की ओर से आप सब लोगों को मातृ दिवस की मंगल कामना। अगर माँ के बारे में कुछ लिखना है तो हम नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि माँ ने खुद हमें लिखा है। अगर हम माँ के बारे में कुछ रचना कुछ चीज की रचना करना चाहेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माँ ने खुद हमें रचा है। माँ ही है, अगर माँ है तो दुनिया है, और उनकी दुनिया में बहुत बहुत मासूमियत है, प्यार है और अपार शक्ति है। उसी शक्ति के बल पर आज हम सब लोग जीवित हैं। इसी के साथ आप सब लोगों को मातृ दिवस की मंगल कामना। आप लोगों ने आज की चर्चा कार्यक्रम में भाग लिया और ध्यान पूर्वक सुना और देखा, इसके लिए कोटिशः धन्यवाद। अभी उदय को दीजिए अनुमति, नमस्कार और आदाब।
3: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
4: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
5: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: मेरा नमस्कार। लगभग 200 युवा रेजी में एकत्र हुए आज। अवसर रहा अनेक विषयों पर बात करने का जो उनके जीवन से जुड़ा हुआ है, जैसे कि अवैध पदार्थ और नशीली दवाएं, सोशल मीडिया, ब्रेन ड्रेन और कला एवं संस्कृति। युवा और खेल मंत्रालय की पहल पर उन्होंने कई प्रस्ताव भी रखे जिन्हें नई नेशनल यूथ पॉलिसी के निर्माण में विचार किया जाएगा। आटा और चावल, ये दोनों सब्सिडी वाले उत्पाद हैं। इन्हें गलत तरीके से निर्यात किया गया था। इस मामले की जांच के लिए फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन, मतलब इस मामले को जांच के लिए फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन को सौंप दिया गया था। इस बीच व्यापार मंत्रालय कानूनी ढांचे को मजबूत कर रहा है और ऐसे नए नियम तैयार कर रहा है जिनका उद्देश्य इस प्रकार की अनियमितताओं को रोकना है, उसका पता लगाना है और उन्हें सजा भी देना है। परिवार कल्याण मंत्रालय या फोस्टर फैमिली की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने जा रहा है, नए कानूनी मापदंडों की घोषणा कर रहा है। मंत्रालय एक ऐसा मंच भी स्थापित कर रहा है जहां ये परिवार आपस में बात कर सकेंगे और अपने अनुभव भी बांट सकेंगे। उप प्रधानमंत्री आर्यन नवामारी ने आज फिनिक्स में आयोजित एक समारोह के दौरान इस बात की घोषणा की। विदेश में लाओस में बाढ़ग्रस्त गुफा में फंसे 4 पुरुषों को 10 दिन बाद बचा लिया गया है। ये लोग 7 अलग अलग गांव से थे जो सोने की तलाश में सुरंगों में गए हुए थे, लेकिन 20 मई को आई अचानक बाढ़ के कारण वहां दूर दराज पर्वतीय इलाके में गुफा के अंदर ही ये लोग फंस गए। बचाव कर्मियों ने बुधवार को केवल 5 लोगों को जीवित निकाला था। तो इन्हीं खबरों के साथ है समाचार समाप्त हुए। हम मिलेंगे शाम 6 बजे पूरा समाचार बुलेटिन के साथ।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2. You are listening, you are part M3 Money.

एक प्यारा सा गांव, उसमें पीपल की छांव, छोड़ कर गांव को, छोड़ कर छांव को, हम शहर में चले गए, भीड़ में खो गए। हम आते हैं कि इस गाने के शब्दों से कितने लोग अपने आप को इस स्थिति में इस समय पा रहे होंगे। सबों को संजय की ओर से प्यार भरा नमस्कार आदाब और स्वागत है हमारे प्रोग्राम गीत गाथा देश की में। आज माता दिवस की पूर्व संध्या के मौके पर गीत गाथा देश की नहीं होगी अपितु होगी गाथा मेरी माँ की, हम सबों की अपनी अपनी माताओं की। और हम चाहते हैं कि आप हमें फोन करें 1-402-4-70-70 और अपनी माँ की गाथा सुनाएं। हम शुरुआत करते हैं खुद अपनी माँ के साथ। 10 बच्चों की माँ, 6 बेटे और 4 बेटियां, आज वो 86 साल की हो गई हैं। सभी बच्चों को लिखा पढ़ा कर सबों की शादी करके आज वो है यहाँ पर। स्वास्थ्य उतना ठीक नहीं है, फिर भी उनका आशीर्वाद हम सब पर है। और मुझे पता नहीं अगर इस समय वो मुझे सुन रही हैं या नहीं, आशा करते हैं कि वे सुन रही होगी। उन्होंने काम किया चाय के खेतों में, उन्होंने काम किया ईख के खेतों में, उन्होंने काम किया बाजारों में सब्जी बेचते हुए, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। और इस तहत हम ऐसे ही हम चाहते हैं कि आप भी अपनी माँ के बारे में बात करें। पिछले शनिवार को हमने न्यूवेल फ्रांस की कमला जी से बात की थी और उन्होंने अपनी गाथा सुनाई थी किस तरह से वे चाय के खेतों में काम करने जाती हैं बहुत ही सवेरे से, और किस तरह से पानी, बारिश, धूप या कुछ भी मौसम ऐसा भी हो अपने काम में लगी रहती हैं। ये है मॉरिशस की माताओं की गाथा। तो आज ऐसी ही कुछ गाथा हम सुनना चाहेंगे, मेरी माँ की गाथा। या अगर खुद एक माँ है तो आपके खुद की गाथा। हमारा फोन नंबर 402-4-70-70 402-8-0-7-0।

0: त्याग की गाथा, प्रेम की गाथा, बलिदान की गाथा हमारी माँ का। चले हम इनकी जुबानी सुनते हैं, इनकी गाथा। नमस्कार।
1: जय सियाराम।
0: जय सियाराम। आपका शुभ नाम?
1: मैं देविका रानी हूँ, वाकवा से।
0: देविका रानी जी, बताएं आप खुद एक माँ हैं?
1: मैं एक माँ हूँ, दो बेटियाँ की।
0: दो बेटियों की माँ। ओके।
1: हाँ।
0: आप अपनी माँ के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगी?
1: मेरी माँ के बारे में बहुत कुछ कहना है। वो अब इस दुनिया में नहीं है
0: जी,
1: लेकिन वो शादी करके आई थी हमारे दादी के परिवार में, पिताजी के परिवार में, 14 साल के
0: उम्र में
1: थी।
0: हाँ
1: 14 साल से जब आई थी तो पिताजी के 3 भाई थे और एक बहन
0: जी।
1: 2 बहनों थे लेकिन एक की शादी हो गई थी, एक घर में थी। और 14 साल में वो उनको जैसे सब बहुएं करते हैं हाथ बताती है घर में, लेकिन उस वक्त पानी नहीं थे जैसे आज है। हमारे घर घर में पानी है, नल है। उन्हें जाना पड़ता था पानी को लेने, और लकड़ी लाती थी, और गाय भी था दादी के।
0: आप बताएं कि यहाँ आप बताएं कि हाँ। आपकी माँ के कितने बच्चे हुए?
1: हाँ, माँ को तो 11 बच्चे हुए।
0: 11 बच्चे?
1: हाँ 11 बच्चे, लेकिन 8 बच्चे गुजर गए। हाँ, हम सिर्फ 3 हैं।
0: अच्छा।
1: 3 थे, एक भाई और हम 2 बहनें, लेकिन भाई 35 इयर्स में गुजर गया। हाँ, और अभी तो सिर्फ मैं और मेरी बहन है।
0: So, आज कल यानी कि आज कल रोज आप अपनी माँ के बारे में सोचती होंगी?
1: हाँ।
0: तो हम यकीन है कि आज जहाँ पर भी होंगी, आपको देखते हुए, आपकी प्रगति को देखते हुए, आपकी स्थिति को देखते हुए, किस तरह से आप अपने परिवार को की देखभाल करती हैं, वो बहुत ही संतुष्ट होगी।
1: आशा करती
0: हूँ
1: मैं भी, क्योंकि जितने त्योहार है आते हैं, माँ के याद के बिना गुजरता नहीं।
0: अवश्य। देविका रानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाग लेने के लिए।
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम को पेश करने के लिए, और आपको ढेर सारा आशीर्वाद। और प्रार्थना करती हूँ कि आपका प्रोग्राम हमेशा सफलता पाए।
0: जय सियाराम देविका रानी जी।
1: जय

0: ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, लिखने वाले ने क्या खूब लिखा। चले हम मिलते हैं एक होया की एक और माता जी से, उमा जी। उमा जी नमस्कार।
1: नमस्ते संजय जी।
0: बताए आप कैसी हैं?
1: मैं अच्छी हूँ और आप भी अच्छे हैं ना, आशा करती हूँ।
0: प्रभु की दुआ से, की कृपा से सब कुछ चल रहा है। आप बताएं, आप अपनी माँ के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: जी, मेरी माता पढ़ी लिखी नहीं थी।
0: हाँ?
1: लेकिन उनका एक सपना था,
0: कौन सा?
1: अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना।
0: ओके।
1: ताकि वे अपने जीवन, अपने भविष्य को ब्राइट बनाए, अच्छा जीवन शिक्षा
0: उमा जी जहाँ पर हैं आप, वहाँ का रिसेप्शन ठीक नहीं है, आपको थोड़ा सा अपनी जगह बदलनी होगी।
1: जी
0: हाँ बोले।
1: अब अच्छी है? हेलो।
0: हाँ हाँ उमा जी बोलिए।
1: बोल तो मेरी माँ की एक सपना था कि वे अपने बच्चे को पढ़ाए लिखाए, और उन दिनों बच्चों की पढ़ाई आसान नहीं।
0: बिल्कुल।
1: पांच बच्चे थे, पिताजी परिवार का एक मात्र कमाने वाले, तो पिता के हाथ बढ़ाने के लिए माँ गाय और बकरियों पालने लगी। खेतों में काम करने लगी, कभी कभी वहाँ घरों में काम करना पड़ती थी। और
0: अफसोस हम उमा जी को ठीक तरह से सुन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ से जो जो कनेक्शन है वो ठीक नहीं है। हम फिर से उमा जी से बात करेंगे थोड़ी देर में।

0: हर एक माँ अपने बच्चे के लिए बहुत ही सुनहरे सपने देखती हैं कि वो पर लेकर बड़ा बने, परिवार का नाम रोशन करें। चले हम मिलते हैं न्यूगोव की प्रिया जी से। प्रिया जी नमस्ते।
1: नमस्ते।
0: आप बताएं, आप न्यूगोव की रहने वाली हैं और आपकी माँ?
1: हाँ, मेरी माँ गीता के मेमोरी में कुछ कहना चाहती हूँ।
0: जी अवश्य बताएं।
1: मेरी माँ वो 11 साल पहले हमें छोड़कर भगवान के यहाँ चली।

0: गई
1: जी।
0: हम उसे बहुत मिस करते हैं, वो हमारे दिल में है और बहुत अच्छे मेमोरी छोड़कर चली गई, पर हम उसे प्यार करते हैं अभी अभी भी।
1: बहुत ही अच्छा प्रिया जी।
0: हाँ, उसने हम बच्चों के बहुत अच्छे संस्कार दिया है और वो बहन जी थे मिनिल आर्य समाज में।
1: अच्छा, मिनिल आर्य समाज में बहन जी थी।
0: हाँ, गीता रामदीन है उसका नाम,
1: गीता रामदीन जी। और वहाँ पर हर रविवार को वो हिंदी पढ़ाती थी।
0: हाँ, हर गुरुवार और शनिवार को हम यज्ञ पर जाते थे, हर शनिवार को रविवार को।
1: ये एक विरासत है जो
0: हाँ हाँ
1: जो उन्होंने छोड़ा है हिंदी भाषा को लेकर और संस्कृति को लेकर, जो आप जैसे उनके बच्चे अभी तक की विरासत को थामे आगे बढ़ रहे हैं।
0: हाँ, हम उसे रोज मिस करते हैं।
1: बहुत अच्छा प्रिया जी, आपने भाग लिया।
0: अच्छा, बहुत धन्यवाद।
1: आपको भी बहुत ही धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।

रेडियो मनोरंजन के लिए रूपा चल रहा है प्रोग्राम गीत गाथा देश की। आज गीत गाथा देश की को हमने कुछ स्पेशल बना दिया है। ये है गाथा मेरी माँ की, प्रेम की गाथा, बलिदान की गाथा, परित्याग की गाथा, स्नेह की गाथा, आत्मसमर्पण की गाथा। किस तरह से माँ ने अपना बलिदान देकर अपने बच्चों को पाला, अपने परिवार को सक्षम बनाया। बहुत सारे हमारे लिसनर्स ने भाग लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। बॉम्बू की शारदा जी ने व्हाट्सएप मैसेज किया और उन्होंने भी अपनी माँ के बारे में बहुत अच्छी बातें कही। अन्य लोग जो भाग लेना चाहते हैं वे हमें फोन कर सकते हैं 1-402-4-70।

तेरी गोद में जो सुकून मिला वो ना किसी मौसम ने दिया न किसी सफर ने। तेरी दुआओं की छांव में जिंदगी के कांटे भी फूल बन गए। तेरी आंखों का उजाला, तेरी आंखों का उजाला मेरे हर अंधेरे को चीर देता है। तेरी मुस्कान में वो जादू है माँ, तेरी मुस्कान में वो जादू है जो टूटे हुए सपनों को भी जोर देता है। तेरे बिना ये घर, तेरे बिना ये घर बस दीवारों का एक साया है। माँ माँ तू है तो हर दर्द भी, एक मीठी दास्तां सा लगता है। देवी और सजनों, आज का ये प्रोग्राम बलिदान की गाथा माँ की, दर्द की गाथा माँ की, प्रेम की गाथा माँ की यहाँ पर समाप्त होती है।

अगले शनिवार को हम फिर से हाजिर होंगे आपकी सेवा में गीत गाथा देश की प्रोग्राम लेकर। अन्यथा उससे पहले गुरुवार को हम मिलेंगे 5:30 से लेकर शाम के 6 बजे तक प्रोग्राम राम रसधारा में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी माँ का ख्याल रखें। नमस्कार, आदाब, जय सियाराम, जय मॉरिशस।

0: पुराने नगमे।
1: नमस्ते, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूँ आपके साथ पूनम, और आज का एक प्यारा सा वन आवर जो है फुल ऑन मस्ती। एक ऐसा नाम जिसका गाना बजते ही पैर थिरकने लगते हैं, यस, और चेहरे पर अपने आप प्यारी सी एक मुस्कान सी आ जाती है। डांस हो या कॉमेडी, एंटरटेनमेंट हो या कोई भी मुकाबला, इस इंसान से ऊपर कोई नहीं। तो चलिए इनके सुपरहिट गानों और दिलचस्प किस्सों को सुनते हैं और शाम को थोड़ा सा मज़ेदार बनाते हैं, और आपको जज करना है आज का ये हमने जो एक्टर चूज़ किया है कौन। तो ये है आपका पसंद।

0: दीदा, मैं कहती हूँ सभी का फेवरेट, सुनिए इसको।
1: RM3 Radio.
2: समझ गया, ये तू है
3: जी,
2: ये उर्मिला है
3: जी हाँ,
2: ये शर्मिला है
3: जी हाँ।
2: तू उर्मिला से प्यार करता है
3: जी हाँ,
2: और शर्मिला का पति बन के घर में आ गया है
3: जी,
2: तो उर्मिला का दिल टूट गया
3: जी।
2: ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं कुछ नहीं कर सकता।
4: अरे आपके लिए कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है दादाजी, आप घर के बड़े हैं, अगर आप अपने बेटे को समझाएंगे तो क्या आपकी बात नहीं मानेंगे?
2: मैं समझाऊं पिटवाएगा क्या मुझको? अरे नहीं बाबा।
4: दादाजी आप अपने बेटे से डरते हैं?
2: अरे मैं उससे नहीं डरता बाबा, उसके बाद जो बड़ी बंदूक उससे डर लगता है मेरे को।
4: बड़ी शर्म की बात है, वो आपके बेटे हैं, अगर आप जाकर उनको सच बोलेंगे तो वो क्या आपको गोली मार देंगे?
2: अरे भाई वो मेरा बेटा है मुझको मालूम है, मैं उसका बाप हूँ उसको मालूम है, मगर कौन किसका बेटा है कौन किसका बाप है ये बंदूक को थोड़ी मालूम है। कभी चल गई तो खामखा ऊपर चला जाऊंगा मैं, नहीं मुझसे नहीं होगा ये।
4: सर आपका नाम क्या?
2: विश्वनाथ प्रताप सिंह।
4: सिंह, सिंह का मतलब मालूम है आपको?
2: हाँ।
4: शेर,
2: बबर शेर।
4: सर्कस के शेर हैं आप, चाबुक पड़ने पर सलाम मारने वाले। अगर आप असली शेर हैं ना तो जाकर बोल दीजिए उस गिधर से कि इस घर के बॉस आप हैं। यू आर द होल एंड सोल ऑफ दिस हाउस।
2: देख तो मेरा चढ़ा रहे हैं।
4: मैं चढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ आपको।
2: एक चिंगार मारूंगा पूरा तंबू खाट डालूंगा।
4: तो गिरा दीजिए ना तंबू।
2: गिराऊं?
4: हाँ।
2: नमूना दिखाऊं?
4: दिखाइए।
2: बलराज, बलराज, बलराज, अरे बलराज, बलराज,
5: क्यों चिल्ला रहे हैं इतनी रात को?
2: वो मुझे खाना खाना है।
5: खाना खाना
2: है? इस नहीं वो हाँ मुझे बात करनी है। बात
5: क्या बात करनी है?
2: वो
6: शादी सेहरा।
2: हाँ वो मेरे बाल बहुत लंबे हो गए हैं।
4: बाल कहाँ से लंबे हो गए?
2: ऐसा माथा पीट लिया देखो उसने।
5: किसने?
2: नहीं नहीं वो चला गया।
5: क्या?
2: नहीं आप वापिस आ गया, ऐसे करता है देखो।
5: क्या हो गया आपको?
2: नहीं वो मैं हाँ मुझे तुड़ी बजानी
5: है। क्या कर रहे हैं आप?
6: अरे शादी
2: नहीं वो माला पहनानी है। नहीं शादी की बात करनी है।
5: किसकी शादी की?
2: मेरी शादी की और किसकी?
5: क्या
2: अब मेरा दिमाग काम नहीं करता, मुझे ले चलो।
1: RM3 Radio.

0: पुराने नगमे।
1: 5:18 हो रहे हैं दोस्तों और हम बात कर रहे हैं यस हमारी कॉमेडी एक्टर गोविंदा की। गोविंदा के पिता एक अभिनेता थे और माँ एक शानदार गायिका थी, यानी कि टैलेंट तो उनके घर में बचपन से था, लेकिन सिर्फ टैलेंट से कौन हीरो नंबर वन बनता है? कोई नहीं बनता। इसके लिए चाहिए आपको बहुत सारी मेहनत, लगन, अपना अलग सा अंदाज, और गोविंदा ने वही चूज़ किया। उन्होंने अपना अंदाज अलग किया। अगर वो इतने सुपरस्टार कॉमेडी एक्टर रहे तो उन्होंने जब हंसाया जग को तो उन्होंने रुलाया भी बहुत सारा और जम के रुलाया। कहते हैं ना कि जब अगर किसी ने ये चीज़ें टैलेंट सीख लिया, हंसाना और रुलाना, तो उसके बाद और कोई चीज़ बाकी नहीं रह जाती। तो कल है मदर्स डे और इस मौके पर जिस तरीके से गोविंदा ने अपनी मेहनत से अपने माता पिता को प्राउड फील कराया, मैं कहती हूँ कि हर बेटा या बेटी अपने माता पिता को ऐसे ही गर्व महसूस कराए। और हाँ, हम चाहते हैं कि ये जो गाना है अगला, इसमें शायद हो सकता है कईयों की आँखें नम हो सकती हैं, पर सच में ये दिल के बहुत ही करीब है। आप सब इंजॉय कीजिए ये प्यारा सा गाना।
2: माँ,
1: माँ एक ऐसा शब्द जिसमें प्यार,
2: अपनापन और पूरा संसार बसता है।
3: माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा।
1: माँ की मुस्कान से घर में खुशियाँ खिल उठती हैं,
2: उनके आवाज से मन को सुकून मिलता है। इस मदर्स डे पर हमारी पूरी एमबीसी रेडियो टीम की ओर से अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।
1: मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: RM3 Radio. Radio.
1: Don't worry. Nobody has seen us.
2: Oh my God.
1: Nobody has seen us. Don't kill him, I'll give you the money, okay?
3: Show me the money or I'll kill him.
1: No, I'll give you the money, okay?
3: I'll kill him, give me the money.
4: पागल हो गए हो क्या? वो लाश को मार डालेगा, इल्जाम उसके सर पे चला जाएगा, हम दोनों बच जाएंगे।
1: अरे क्या बात कर रही हो, दोस्त है मेरा वो।
4: क्या?
1: अरे नहीं तुम समझी नहीं।
4: क्या?
1: अगर उसने लाश की मुंडी काट दी ना, तो हम लोगों को मुंडी एक जगह पर ले जानी पड़ेगी और धड़ एक जगह पर ले जाना पड़ेगा, फंस जाएंगे हम लोग। क्या बात कर रहे
4: हो? अरे इसको क्या हो गया? अभी तो उसे मार रहा था, अभी खुद कैसे लड़क गया?
1: आत्मा, आत्मा ने झटका दे दिया और तुम भी तमीज से रहना। चलो इससे पहले कोई आ जाए, इस लाश को ठिकाना लगाना पड़ेगा हमको। चलिए इसे जल्दी जल्दी जल्दी।
4: इसके पहले कोई और आ जाए, लाश को ठिकाने लगा देते। ओके।
1: इसकी उंगली तो मैं इसके तरफ से कर लेता हूँ यार, तुम टेंशन मत लो।
4: चलो
1: बच जाओ जल्दी से। चुप चुप चुप, तुमको नहीं बोल रहा हूँ।

0: पुराने नगमे।
1: 5:31 हो चुके हैं और आप जुड़े हुए हैं पूनम के साथ आपके ही फेवरेट प्रोग्राम पुराने नगमों में, और आप जुड़े हुए हैं RM3 के साथ गोविंदा ने। हम बात करने जा रहे हैं गोविंदा जी की दो कॉमेडी, रोमांस और एक्शन हर तरह के जो किरदार होते हैं उन्होंने निभाए, लेकिन सच कहें तो कॉमेडी टाइमिंग उनका बहुत ही लाजवाब था। उनके एक्सप्रेशन, उनका डांस, उनका अंदाज, यही वजह थी कि गोविंदा जो थे ना कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सबसे टॉप पे चले गए। जैसे कि उन्होंने मूवीज़ बनाई कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, राजा बाबू, दूल्हे राजा, अगर आप देखें तो उनकी मूवीज के जो नाम है ना बहुत ही कॉमेडी होते थे। जैसे उनकी किरदार था, जिस तरीके से वो एक्शन करते थे, उसी तरह के उनके उनको मूवीज मिलती थी और नाम भी उसी तरीके से चूज किए जाते थे। साजन चले ससुराल, हसीना मान जाएंगे, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, आंखें जोरू का गुलाम, पार्टनर, शोला, शबनम, दीवाना मस्ताना, और क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता जैसी फिल्मों में उन्होंने अपने जो किरदार निभाया उसमें वो फेवरेट बन गए, सभी के घरों का सबसे चहेता बन गए, और आज भी उनके गाने जो हैं टॉप लिस्ट में जाते हैं। यही गाना है कि जिस पे उनको मस्ती सूझी और उन्होंने बोला मैं सिर्फ डांस करूँगा। RM3 रेडियो।

0: पुराने नगमे।
1: हम बात कर रहे हैं गोविंदा की, गोविंदा ने अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, सलमान खान, अक्षय कुमार, अनिल कपूर, चंकी पांडे, जैकी श्रॉफ और मिथुन चक्रवर्ती जैसे बड़े कलाकारों के साथ काम किया बाद में। और उन्होंने अभिनेत्रियों की बात करें तो करिश्मा कपूर, रवीना टंडन, जूही चावला, नीलम रानी मुखर्जी, ममता कुलकर्णी, शिल्पा शेट्टी, तब्बू जैसी, सोनाली बेंद्रे जैसी, ऐसी जो कलाकार हैं जिनके सामने कोई और बाप आराम से खड़ा भी नहीं हो सकता था, वहाँ पर आराम से वो एक को स्टार बने, एक एक्टर बने और एक कहते हैं सुपर जोड़ी बने। और सबसे बड़ी बात करें तो डायरेक्टर्स में तो उनके फेवरेट थे डेविड धवन, जिसने बनाई हर एक मूवी उनके साथ और उनकी बन गई जोड़ी नंबर 1।
2: RM3 रेडियो।

0: पुराने नगमे।
1: 5:43 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हुए हैं पूनम के साथ आपके पुराने नगमे और हम बात कर रहे हैं गोविंदा की। तो गोविंदा की शादी हुई सुनीता आहूजा से और उनके दो बच्चे हुए बहुत ही प्यारे प्यारे यशवर्धन और टीना और दोनों ही इंडस्ट्री में जुड़ गए। कहा जाता है कि सुनीता जी का थोड़ा सा स्वभाव सख्त था, थोड़ा सा स्पष्ट था क्योंकि वो शुरू से ही थोड़ी सी स्पष्टवादी थी और जहाँ पर गोविंदा की बात करें तो वो बहुत ही शांत स्वभाव के और विनम्र इंसान थे। लेकिन रिश्तों की खूबसूरती भी तो यही होती है ना, दो अलग अलग स्वभाव के लेकिन शांत। और एकदम से गोविंदा ने कहा कि नहीं, शादी को तो करूँगा तो तुमसे ही करूँगा और किसी से नहीं। तो उनको एहसास था कि वो आगे चल के जो ज़िंदगी होगी थोड़ी सी अप एंड डाउन होगी और इस तरीके से सुनीता जी बनी उनकी, कहते हैं ना, कमांडो फोर्स, और वो हमेशा उनके साथ खड़ी रही और आज भी दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। और ये गाना कहते हैं हमेशा गोविंदा जी की, ये गाना हमेशा उन पर सूट करता है और ये है गाना उनके लिए।
2: RM3 Radio.

0: पुराने नगमे।
1: गोविंदा को 4 फिल्म्स फेयर फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले। कई बार उनको अलग अलग श्रेणियों में नामांकन भी किया जाता था, पर हमेशा वो यही सोचते थे कि मैं आज बेहतर करूं, कल बेहतर करूं। और इसी तरीके से जी सिने आईफा और कई अन्य लोकप्रिय अवार्ड्स उनको मिले। उनकी सराहना सारी दुनिया करती है, उनकी कॉमेडी डांस एंटरटेनमेंट वर्ल्ड उनको मानता है, और उनकी यही पहचान बनी कि बॉलीवुड में आज उनको एंटरटेनमेंट किंग कहा जाता है।
2: RM3 Radio.

0: 5:55 हो चुके हैं और जब गोविंदा जी से पूछा गया कि आप कौन सा ऐसा गाना मिस करते हैं जिसमें चाहते थे कि कोई और एक्टर ना करते हुए आप उस पर डांस करते तो वो कौन सा गाना था, तो उन्होंने बोला कि मुझे ये सिर्फ चुनरी चुनरी पे अगर आप डांस करवा देते तो मैं हमेशा खुश होता क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा ये गाना पसंद है। तो उनके कहते हैं कि उनके दिल के बहुत ही करीब है ये गाना, जबकि उनकी मूवी का नहीं था, बट उनकी मूवी का था पर इन्होंने परफॉर्म नहीं किया था, बट वो कहते हैं कि ये गाना मुझसे कोई करवा लेता तो मैं बहुत ही मस्त होता और खुश होता। तो चलिए भाई, गोविंदा के गानों के साथ और उनकी मस्ती के साथ, उनकी ज़िंदगी की बातों के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, और इसके बाद आप सुन पाएंगे विस्तार से समाचार, और उसके बाद नई सोच का कार्यक्रम होगा। मैं आप ही के साथ हूँ, तब तक इन्जॉय कीजिए ये उनकी मूवी का प्यारा सा गाना।
1: RM3 Radio.

0: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: माँ
4: माँ एक ऐसा शब्द जिसमें प्यार,
3: अपनापन और पूरा संसार बसता है।
5: माँ मेरी माँ प्यारी माँ, मम्मा।
4: माँ की मुस्कान से घर में खुशियाँ खिल उठती हैं,
3: उनके आवाज से मन को सुकून मिलता है। इस मदर्स डे पर हमारी पूरी एमबीसी रेडियो टीम की ओर से अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।
4: मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

सभी को मेरा नमस्कार समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं आज की सुर्खियां। जरूरतमंद बच्चों को सिर्फ एक छत ही नहीं बल्कि प्यार, सुरक्षा और अपनापन देने वाले परिवारों के लिए अब और बेहतर सहयोग की तैयारी की जा रही है। सरकार इस व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए नए कानूनी प्रावधान लाने जा रही है। मदर्स

0: कृति जैसी कई मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई। मॉरिशस में अब क्रिप्टो करेंसी के लेन देन पर भी सख्त नजर। डिजिटल पैसों से जुड़ी धोखाधड़ी और मनी लॉन्डरिंग को रोकने के लिए नए रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की जरूरत पर जोर दिया गया। इबादत, सब्र और रूहानी एहसासों से भरे हज सफर का अब अंतिम पड़ाव। करीब 1500 मॉरिशन हाजी हज के आखिरी रस्मों को अदा करने में जुटे हैं। दुआओं और इबादत के इन खास लम्हों के बाद उनकी वतन वापसी कल के लिए निर्धारित है। विदेश में भारत इस समय मौसम के दो अलग अलग रूपों का सामना कर रहा है। एक तरफ कई राज्यों में भारी बारिश तो दूसरी ओर भीषण गर्मी और लू ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जिन परिवारों ने जरूरतमंद बच्चों को अपने घर में जगह देने के साथ उन्हें अपनापन और सुरक्षा का एहसास भी दिया है, उनके लिए अब और बेहतर सहयोग की तैयारी की जा रही है। परिवार कल्याण मंत्रालय बच्चों की देखभाल करने वाले इन परिवारों की व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए नए कानूनी प्रावधान लाने जा रहा है। साथ ही एक नया मंच भी शुरू किया जाएगा जहां ये परिवार अपने अनुभव साझा कर सकेंगे और एक दूसरे से जुड़ सकेंगे। इस बात का ऐलान डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आरियान नावामारी ने फिनिक्स में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान किया। क्लोडा जेओफा गादेवादू न याचना मिश्रा का विवरण।
1: 23 वर्षों के वैवाहिक जीवन के बाद गायतों और कोहिन ने 7 साल पहले अपने दिल और अपने घर के दरवाजे दो बच्चों के लिए खोले।
2: Les enfants pas choisi, c'est coup de moi, mon content vraiment. Mon premier fils venait comme mon trouble, moi j'ai ça même.
1: बच्चे चुने नहीं जाते, जो मिले वही। मेरी बेटी को जैसे मैंने देखा, मैं जान गई कि वही है। उसने हाथ थामा और नहीं छोड़ा। 19 महीने की थी, मैंने उसे गेंद दिया जो 1.5 साल तक उसने अपने साथ ही रखा शेल्टर में। 23 साल के वैवाहिक जीवन के बाद बच्चे से माँ शब्द सुनना एक अलग ही एहसास है। ये सोच समझ कर लिया गया फैसला था जिसका उद्देश्य इन बच्चों को एक स्थिर, सुरक्षित और प्यार भरा पारिवारिक वातावरण देना था। सुबह काम पर जाने से पहले उनको मोटरसाइकिल की सैर कराता हूँ, शाम को वापस आता हूँ तो वे राह तकते हैं, देर हो जाती है तो इंतजार करती है।
3: Et quand vous venez le soir aussi, 4h30, mais il y a un laquais qui tout ça là, voilà. Mais si on a un retard, vous commencez à inquiéter que le papa était. Et c'est là, il y a même nous qui, les enfants là, des acquis pour vous.
1: इस शनिवार उन्होंने एक दिवसीय गतिविधि के दौरान अन्य फॉस्टर माता पिता के साथ अपने अनुभव बांटे। खेलों और मनोरंजन के पलों से परे ये उदारता, प्रेम और नई शुरुआत की एक प्रेरणादायक कहानी है। ये पहल पालक परिवारों की भूमिका को भी महत्व देने का अवसर प्रदान करती है। अब तक 129 बच्चों को 99 फॉस्टर परिवारों में रखा जा चुका है। उप प्रधानमंत्री ने अन्य परिवारों को भी इस पहल से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। हमें विश्वास है कि बच्चे की जगह परिवार में है, आखिरी विकल्प शेल्टर है। खेद की बात है कि जहाँ बच्चों को कम समय तक रहना था, वही शेल्टर 18 साल तक उनका बसेरा बन जाता है। हम अभिभावकों के लिए प्रशिक्षण को बढ़ावा दे रहे हैं। हम माता पिता और अधिकारियों के साथ मिलकर देखेंगे कि कैसे स्थिति को बदला जाए, अन्य लोगों को फॉस्टर परिवार बनने के लिए प्रोत्साहित कर सकें।
4: यो ला सिचुएशन ए इनविट प्लीज बन पेरेंट कमेंट डियर अस्यूम जेट रिस्पांसिबिलिटी बन फैमिली अक्यूय।
1: दिन का समापन खुशी और उत्साह के माहौल में हुआ, लेकिन एक बात स्पष्ट रही, कभी कभी एक साधारण सा निर्णय कई जिंदगियों को एक साथ बदल सकता है।
0: माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि प्यार, सहारा और अपनापन का एहसास होती है, चाहे जन्म देने वाली हो या नहीं। मदर्स डे के अवसर पर SOS चिल्ड्रंस विलेज में उन केयरर्स को सम्मानित किया गया जो हर दिन परिवार से दूर बच्चों को ममता, सुरक्षा और एक नई उम्मीद देती हैं। इन महिलाओं को उनके समर्पण और निःस्वार्थ सेवा के लिए विशेष सम्मान दिया गया। अंजू रामगुलाम ने इन बच्चों से आज मुलाकात की। देश भर से आए करीब 200 युवा रेजी में एक मंच पर जुटे नशे की बढ़ती समस्या सोशल मीडिया का

0: अनुभव युवाओं का विदेश जाना और कला संस्कृति जैसे कई अहम मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई। कला एवं स्पोर्ट्स मंत्रालय की पहल पर आयोजित इस कार्यक्रम में युवाओं ने अपने सुझाव भी रखे, जिन्हें नई नेशनल यूथ पॉलिसी में शामिल किए जाने पर विचार किया जाएगा। कविता पेशा करुणा लालू।
1: सब कुछ सुनियोजित करने के लिए एक ब्रीफिंग लगाई गई। इसके बाद लगभग 200 युवा 5 अलग अलग कक्षाओं के ओर बढ़े, जहां मॉडरेटर उनकी प्रतीक्षा में थे। पहले से ही विषयों का चयन किया गया था। नशीली दवाओं और अवैध पदार्थों को समर्पित कक्षा में जीवंत और उत्साहपूर्ण चर्चा देखी गई।
2: Qui fait les jolis garçons, les jolies jeunes filles comme ça, qui faisait une tombe là-dedans? Oui, il commence par une fois, cinq claques une fois, une vine agitée, mais après ça, pas n'y a personne. Comme une vine intoxicée, mais qui s'en a qui l'a derrière moi, qui s'en a qui peut s'y porter moi.
1: Kala, Sanskriti et Manoranjan bhi, yuvaon ki ruchi mein ahem vishay raha. Unke vicharon aur pratibhaon ko abhivyakt karne ke liye apariyapt manch, margadarshan ki kami.
3: Il y a beaucoup de gens qui sont vrais, même ça, t'as dans mes yeux, puis na, ça... l'appui là pour qu'allons-y, du coup j'ai hésité.
4: Beaucoup de monde peut crier ma arrêt ma guerre, beaucoup de monde peut crier ma tes affaires, beaucoup de monde mais pas tu peux crier ma, mais avec la pratique, avec la motivation, la discipline, nous progresser. Moi encourage les jeunes, comment dire, quand ils ont un talent, exprimer.
1: Anik Sujhav prestut ki gaye.
5: Moi chanteuse, un peu comme si média misadia. Mais ça l'appui pour gagner, pour un sponsor, si pas un producteur, pour prendre les difficiles.
1: Et quand il y a des sujets, social media bhi, charcha ke kendra mein raha.
6: Aujourd'hui, je suis demandé à un jeune combien il y a temps, il dépense dans ce portable, il peut déjà 8 temps, il est capable même à 12 temps, qui n'est vraiment pas bon. Et ça, il a impacté dans la vie familiale aussi, que aujourd'hui, nos parents, nous pouvons aller tôt pour causer avec nos parents, c'est parce que qui fait, nous pouvons servir nos portables.
1: कार्यशाला के कोऑर्डिनेटर के अनुसार इस पहल का मुख्य उद्देश्य युवाओं को अपनी आवाज बुलंद करने का अवसर देना।
7: Nous transpose ban recommandation ban solution qui ban jeune proposer parce que c'est extrêmement important, c'est ban jeune qui fait face à ban problème là. Donc il est important qu'ils nous gagnent les solutions des ban jeunes.
1: युवाओं द्वारा प्रस्तुत सुझावों और सिफारिशों को नई नेशनल यूथ पॉलिसी में शामिल किया जाएगा, जो वर्तमान में तैयार की जा रही है।
0: मॉरिशस में अब क्रिप्टो करेंसी के लेन देन पर भी सख्त नजर रखी जा रही है। मॉरिशस रेवेन्यू ने डिजिटल पैसों से जुड़ी धोखाधड़ी और मनी लॉन्डरिंग को रोकने के लिए एक खास रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की जरूरत पर जोर दिया है। ये बात उस प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद सामने आई है, जिसमें मॉरिशस और सेशल की एजेंसियों को अमरीका की FBI ने वित्तीय अपराधों से निपटने की ट्रेनिंग दी है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिविजन कमीशन बिल पर राष्ट्रीय सभा में बहस का दौर जारी है। जूनियर मिनिस्टर धनेश्वर दामरी ने सिंगापुर के संवैधानिक सुधारों का हवाला देते हुए मजबूत और आधुनिक संस्थाओं की आवश्यकता पर जोर दिया। वहीं सांसद अनाबेल साबाबादी ने कहा है कि ये आयोग योग्यता आधारित व्यवस्था और समान अवसर को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मंच साबित हो सकता है। इस बीच बहस के बाद राष्ट्रसभा की कार्रवाई को अगले मंगलवार तक स्थगित कर दिया गया है। काविंता पेसा, यचना मिश्रा।
8: सांसद अनाबेल साबाबाजी का मानना है कि यदि संविधान संशोधन में योग्यता यानी मेरिटोक्रेसी की अवधारणा को शामिल नहीं किया गया तो ये अधूरा रहेगा।
9: Je demande au Premier ministre de venir avec un amendement pour inclure explicitement le mot méritocratie et ses principes dans la Constitution.
8: सांसद मनोज सिब्बल ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन को कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने होंगे।
10: How do we further strengthen our democratic institutions in the Republic of Mauritius? How do we ensure even greater protection of fundamental rights?
8: रोड्रिग्स की सांसद दानित ओरियत मानो के अनुसार रोड्रिग्स के निवासियों से परामर्श किए बिना संवैधानिक सुधार की प्रक्रिया अधूरी है।
11: Une réforme constitutionnelle ne peut être significative

0: si elle est menée uniquement du point de vue du territoire principal.
1: जूनियर मंत्री राजेंद्र नाथ सिंघन ने गणराज्य के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी अपने विचार दिए।
2: This is why I think the Prime Minister is right to bring this proposal to the Commission to study whether we should have an electoral college to elect the President, not only a majority.
1: जूनियर मंत्री धनेश्वर दामहे का मानना है कि केंद्रीय बैंक के भंडारों की बेहतर सुरक्षा के लिए सिंगापुर की प्रणाली एक उदाहरण है।
3: The Singapore Constitution strictly protects the nation's reserves by establishing an elected president as its second key before the government can draw on, transfer or use the reserves.
1: अपने संबोधन के दौरान धनेश्वर दामही ने भारत और दक्षिण अफ्रीका में हुए संवैधानिक संशोधन का भी उदाहरण लिया।
4: तेल और गैस पर निर्भरता कम करने की दिशा में हिंद महासागर इलाके के देश अब नए विकल्प तलाश रहे हैं। इसी विषय पर कुल आउट्स सेंटर में हिंद महासागर आयोग और जापान दूतावास की पहल पर एक विशेष सेमिनार आयोजित किया गया। इसमें हिंद महासागर के कई द्वीप देशों टापू देशों के प्रतिनिधियों ने और ऊर्जा सेक्टर में सहयोग और आत्मनिर्भरता के अवसरों पर बात की। ऊर्जा परिवर्तन के सेक्टर में जापान के अनुभव को भी प्रमुख उदाहरण के रूप में सामने रखा गया। सिंचामुतु करुणा लालू।
1: हिंद महासागर आयोग के सदस्य देश न केवल टापू क्षेत्रों से जुड़े समान चुनौतियों का सामना करते हैं, बल्कि वे फॉसिल फ्यूल पर भी निर्भर हैं। युद्ध और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से हमारे देशों की स्थिति नाजुक हो चुकी है। सैतालीस दिनों के ईंधन भंडारण की क्षमता के साथ दीर्घकालिक समस्याओं का सामना करना मुश्किल है। इसलिए अब ऊर्जा ट्रांजिशन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। ईंधन का आयात और मूल ढांचों की चुनौतियों के बावजूद भी मडागास्कर समुद्री संसाधनों के कारण टिकाऊ विकास और ऊर्जा ट्रांजिशन की क्षमता रखता है। हिंद महासागर आयोग के महासचिव इब्राहिम नोबियाहिशा और जापान के दूतावास की कार्यवाहक प्रमुख मायू यामाओ ने ऊर्जा आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में जापान की विशेषज्ञता पर प्रकाश डाला। गहरे सागर और जलवायु प्रकोपों को लेकर जापान खुद को ढालने में सक्षम है। रियूनियन और उसके साझेदारों के लिए समुद्र में टर्बाइन्स एक महत्वपूर्ण दीर्घकालिक परियोजना है। इस ऊर्जा परिवर्तन को केवल सहयोग और साझेदारी के माध्यम से ही सफल बनाया जा सकता है।
5: Au niveau de la Commission des Indiens, nous déjà on a une décision pour un achat groupé.
1: हिंद महासागर में हम समावेशी खरीद पर ध्यान दे रहे हैं, मात्र आपात सामानों के लिए, जैसे लिक्विफाइड गैस के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक देश आयात करके आसपास इसे वितरित कर सकता है। इस संगोष्ठी के दौरान कई प्रस्तुतियां दी गई, खासकर फ्लोटिंग सोलर फार्म्स और अन्य समुद्री ऊर्जा प्रणालियां जो कि जापान की पहल हैं।
4: पीएमएसडी के नेता जावियर लुक जुवाल ने आज पोर्ट लुइस में प्रेस को संबोधित किया। उन्होंने देश की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा है कि कानून व्यवस्था, बढ़ती महंगाई और सरकारी खर्च पर नियंत्रण अगले बजट के अहम मुद्दे होने चाहिए। उन्होंने सरकार को वाट बढ़ाने से बचने की सलाह दी।
6: राजनीतिक मंच पर लंबे समय की अनुपस्थिति के बाद ज़ावियर लुक जुवाल आज प्रेस के सामने आए। पीएमएसडी के लीडर ने मौजूदा संदर्भ में सरकार की तरफ से आपात कदम उठाए जाने की इच्छा जताई। उन्होंने लघु उद्योगों के लिए वीएटी की सीमा बढ़ाने की मांग की। उनके अनुसार वर्तमान 3 मिलियन रुपये की सीमा अनुचित है। पीएमएसडी के लीडर ने उन प्राथमिकताओं का उल्लेख किया जिन्हें भावी बजट में ध्यान में रखना चाहिए।
7: De la dernière chance. Parce que la population sur patience est une limite, pas de problème urgent. Pas besoin de dire aux autres low and order, pouvoir d'achat, gaspillage. Ça, ça ne fait pas qu'à attendre plus longtemps. Depuis longtemps, nous avons causé des importations parallèles. Qui fait à Maurice un pan seul pays

0: contenant monopole, l'eau, importation van mark. Tout ce que vous trouvez là, presque tout, du moment où Bouglade représente sa marque là, Maurice, il prend un peu ce voisin pour te dire. Et monopole, il a cassé tout sauf pour médicaments.
1: कानून और व्यवस्था के संबंध में उन्होंने अपराधों के खिलाफ लड़ने के लिए पुलिस को ज्यादा साधन प्रदान करने की मांग की। उन्होंने मॉरिशस में पेंशन प्रणाली में गहरा बदलाव लाने की इच्छा जताई। ज़ावियर डुजुवाल ने जूनियर मंत्री और गणराज्य के उपराष्ट्रपति के पदों को हटाने की भी मांग की। उन्होंने वीएटी बढ़ाने की सभी पहल के खिलाफ सरकार को आगाह किया। प्रेस के सवाल के जवाब में उन्होंने की रेट बढ़ाई जाने पर खेद जताया और कहा कि वो एमएसएम के संपर्क में नहीं रहा, न ही लेबर पार्टी और पीएमएसडी के बीच कोई नज़दीकी रही है।
2: इबादत, सब्र और रूहानी एहसासों से भरे हज सफर का अब अंतिम पड़ाव करीब आ गया है। करीब 1500 मौशन हाजी हज की आखिरी रस्मों को अदा करने में जुटे हैं। मक्का और मदीना की सरजमीन पर दुआओं और इबादत के इन खास लम्हों के बाद अब उनकी वतन वापसी की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। इस दौरान कई हाजियों ने इस सफर को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रूहानी अनुभव बताया है। भारत इस समय मौसम के दो बिल्कुल अलग रूपों का सामना कर रहा है। एक ओर पूर्व उत्तर और दक्षिण भारत में मानसून पूर्व बारिश ने रफ्तार पकड़ ली है। कई राज्यों में भारी बारिश, तेज हवाएं और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं दूसरी ओर उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और लू, जहां तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। बारिश और गर्मी के इस दोहरे असर ने करोड़ों लोगों के जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है।

0: 6:18 हुए हैं। देश विदेश के इन खबरों के बाद अब चलिए जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल करुणा लालू के साथ।
1: हमारे इलाके पर हल्की हवा चल रही है। पूर्व की ओर से आने वाले बादल हमारे मौसम को प्रभावित करेंगे। अनुमान है कि आज रात के दौरान आसमान में बादल घिरे रहेंगे और बारिश होगी। कभी कभार मूसलाधार बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में कोहरे छाए रहेंगे। कल सुबह तड़के ऊंचाइयों पर थोड़ी बहुत बारिश के बाद दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। इस बीच दोपहर में पश्चिम में कुछ घरी के लिए बादल घिराएंगे और जहां तहां बारिश हो सकती है। तापमान सेंट्रल प्लेटों पर न्यूनतम 18 से 20, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। साहली इलाकों में न्यूनतम तापमान 22 से 24, अधिकतम 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। हल्की और अस्थिर हवा चलेगी। पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रवाल रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण में लहरें 2.50 मीटर तक हो सकती हैं। दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। सूर्यास्त 5:37 पर, कल सूर्योदय 6:37 पर।

6:20 हुए हैं। मौसम के इस हाल के साथ ही ये बुलेटिन यहाँ पर समाप्त हो चला। हम तकनीकी सहायक शिव को धन्यवाद देते हैं, साथ में पूरा समाचार विभाग को भी। कुछ ही समय में हम बढ़ेंगे शोक समाचारों की ओर।

शोक समाचार सुनिए। बासन रोड हाईलैंड्स में 75 साल के 75 years old जनाब अब्दुल रहीम उसैन अली जिन्हें लुच्चीबाई नाम से जानते थे की मृत्यु का इंतकाल हो गया है। जी हाँ, अब्दुल रहीम उसैन अली का इंतकाल हो गया है। इनका जनाजा आज रात 8 बजे

0: आज रात 8 बजे इनके मकान बासेन रोड हाईलैंड से उठाकर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुनाइट एट 8 PM। ओम शांति हाईलैंड्स में, ओम शांति हाईलैंड्स में 49 साल के 49 ईयर्स ओल्ड श्री सतीश गोपी जिन्हें लोग विनंद नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। वे शॉबेल लेन वाक्वा के रहने वाले थे। इनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे ओम शांति हाईलैंड्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आली ब्रियां किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10 AM। पिचिकॉन्ग घोंगुब में 53 साल के 53 ईयर्स ओल्ड श्री दीपक चतुरी जिन्हें लोग मंगोल नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के दो बजे इनकी माँ लक्ष्मी चतुरी के मकान पिचिकॉन्ग घोंगुब से उठाकर घोंगुब किश्मशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2 PM। नंबर 84 मोसेलिन एवेन्यू कैटरबोन में 63 साल के 63 ईयर्स ओल्ड श्री हरिदत्त गोकुल जो उमेश मशोगातो नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके मकान नंबर 84 मोसेलिन एवेन्यू कैटरबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। कैटरबो रोड बोनाकोई में 56 साल के 56 ईयर्स ओल्ड श्री अजय बिकारी जिन्हें लोग सुदेश नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके मकान कैटरबो रोड बोनाकोई से उठाकर मेजिन कौदमास की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमेशन टुमारो 11 AM। और जगदम्बी रोड गुडलैंड्स में 55 साल के 55 ईयर्स ओल्ड श्री ऋषि पीरू जिन्हें लोग अजय माशों के बाब नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे इनकी पत्नी शर्मिला पीरू के मकान जगदम्बी रोड गुडलैंड्स से उठाकर बेलमो गुडलैंड्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10 AM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.
2: RM3 Radio.
3: Hello, 9821026212 BPL. Check. 9820026235 max touch check.

0: Nisu.
1: Continuous music. RM3.
2: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
3: माँ
4: माँ एक ऐसा शब्द जिसमें प्यार
3: अपनापन और पूरा संसार बसता है।
5: माँ मेरी माँ प्यारी माँ मम्मा।
4: माँ की मुस्कान से घर में खुशियाँ खिल उठती हैं।
3: उनकी आवाज से मन को सुकून मिलता है। इस मदर्स डे पर हमारी पूरी MBC रेडियो टीम की ओर से अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।
4: मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: नमस्ते आदाब, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। 6:37 हो चुके हैं और आज हो रही है बात, क्योंकि कल है मदर्स डे। जी, माँ एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही दिल में अपना पन आ जाता है। वो हमारी पहली दोस्त भी होती है, पहली टीचर भी होती है और सबसे बड़ी ताकत भी होती है। माँ इधर उधर चली जाए तो बच्चों की हालत ख़राब हो जाती है। वो कहते हैं मेरी माँ कहाँ है, जो वो चीज़ें देती है, जो वो खिलाती है, जो बनाती है, वो प्यार देती है। इसीलिए हम सबको कहते हैं मदर्स डे पर, आज की नई सोच में बस सिर्फ इतना सा है कि माँ को सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हर दिन प्यार और सम्मान मिलना चाहिए। मदर्स डे सिर्फ पूरे साल में एक दिन आता है तो क्या हुआ, पर माँ 24 घंटे हमारे लिए 365 दिन हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के चलती है। तो मैं तो सबको ही कहूँगी हैप्पी मदर्स डे। जो भी माएँ हैं, जो भी पिता हैं, सब एक दूसरे को विश करें, क्योंकि ये टाइम है मदर्स का जो कि सारे साल में सबसे अनोखा और सबसे प्यारा होता है। मैं हूँ आपके साथ पूनम और शुरू करते हैं नई सोच।
1: RM3 Radio.

0: नई सोच।
1: स्टूडियो की घड़ी में 6:45 हो चुके हैं दोस्तों, और हम बात कर रहे थे माँ की। हम कई बार, हमें लगता है कि माँ हमारी कितनी चिंता करती है, हर छोटी छोटी बात में परेशान करती है, पूछती है कहाँ हो, कैसे हो, किधर हो, कब आओगे, कहाँ, ये क्यों नहीं खाया, वो क्यों नहीं खाया। पर लेकिन सच ये होता है कि बच्चे ही माँ की सबसे बड़ी खुशी होती है। बच्चा खुश हो तो माँ खुश, बच्चा दुखी हो तो माँ भी परेशान। माँ की दुनिया में बच्चों की जगह हमेशा सबसे खास रहती है, इसलिए सिर्फ माँ को प्यार चाहिए और माँ को सिर्फ प्यार दीजिए।
2: RM3 Radio.

0: नहीं सो। 6:52 हो चुके हैं दोस्तों। माँ पूरी ज़िंदगी हमारे लिए बहुत कुछ करती है। कल मदर्स डे है और हम सब चाहते हैं आप अपनी माँ को बहुत प्यार दीजिए, इसलिए कभी कभी हम उनके लिए समय निकालना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, फ़ोन करना चाहिए। उनके लिए कोई उनका फेवरेट कुछ कपड़ा है तो वो लेकर आइए, उनका कुछ पकवान है तो आप बना सकते हैं घर में। उनके सहारे आप ही जी लेंगे, उनके चेहरे पे जो मुस्कान होगी वो सारी ज़िंदगी आपको याद रहेगी। आप कोई भी हैं, लड़का है या लड़की है, पर किसी ना किसी दिन आपको उम्मीद होगी कि आप भी माँ बने या आप पिता बने, और आपके आगे जो पूर्वज होंगे वो भी आपको दुआएं और ब्लेसिंग्स देंगे। इसलिए हम सभी को कहते हैं हैप्पी मदर्स डे। अपने लिए तो सोचना ही सोचना, पर अपनी मामा अगर आपके यहाँ पर इस संसार में है तो उनको बहुत प्यार देना, उनको बहुत ख्याल रखना। तो हम सब तरफ से, हमारी पूरी एमबीसी की टीम की तरफ से, हम आप सभी को कहते हैं हैप्पी मदर्स डे।
1: RM3 रेडियो।

0: दिलों की आवाज की आवाज दिलों की आवाज Center 95.5 North South 95.6 East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: Continuous music. RM3.
0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज
4: टाइम चेक शाम के 7 बज रहे हैं।

0: दिलों की आवाज,
1: नमस्ते आदाब, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबका वेलकम है आप ही के फेवरेट प्रोग्राम दिलों की आवाज़ में, और मैं हूँ आपके साथ पूनम। दिन भर की भागदौड़ के बाद अब वक्त आता है थोड़ा सा सुकून चुराने का। कुछ प्यारे से गीत, कुछ छोटी मोटी बातें, कुछ खूबसूरत एहसास और ढेर सारी यादें जो हम लेकर चुन चुन के लेकर आते हैं, इकट्ठा करके लेते हैं और आपको सुनाते हैं आप ही के पसंद के गाने। तो ये आपका ही प्रोग्राम है जिसमें आप दिलों की आवाज़ का हो तो सुनते ही हैं, साथ में आपके मैसेजेस सुनते हैं जहां आपके ही गीत होते हैं, आपकी यादें होती हैं और हम उसको इकट्ठा करके फिर आप तक ही ले आते हैं। तो चलिए भाई, मैं हूँ आपके साथ पूनम और ये खूबसूरत शाम आप सब के लिए, ये सफ़र आपके लिए, और इसके बाद थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे क्या कहते हैं जो बहुत सारे गाने हैं। पर उसके साथ साथ देखिए अभी कॉल स्टार्ट हो गई है, पर हम लाइंस अभी थोड़ी देर बाद शुरू करेंगे। अगर आपको कोई मैसेज करना है तो आप कर सकते हैं 5250-6200 पर, और कॉल कर सकते हैं 4028070 पर। थोड़ी देर में हम शुरू कर देंगे, ओपन करेंगे लाइंस, बट हम इतना आपको ज़रूर कहेंगे कि जो भी आपके पसंद के गाने हैं वो बस खूबसूरती से पसंद कीजिएगा जो कि सबका मूड अच्छा कर दे। एंजॉय कीजिए आपके ये गाने।
0: RM3 रेडियो।

रंगत रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

0: दिलों की आवाज,
1: सात बजकर 22 मिनट हो चुके हैं दोस्तों और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम दिलों की आवाज़ और मैं हूं आपके साथ पूनम। तो चलिए भाई, बहुत सारे मैसेजेस तो आ चुके हैं, कॉल्स पे कॉल्स आ रहे हैं, बट हम इतना आपको ज़रूर कहना चाहते हैं कि कभी कभी इंतज़ार जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है, तो इंतज़ार करते रहिए क्योंकि हम एक एक करके आप सबके प्यारे से मैसेजेस ज़रूर लेना चाहते हैं और ये खूबसूरत जो शाम है आपकी उसको बहुत ही अच्छा और प्यारा बनाना चाहते हैं। तो चलिए भाई, दो तीन प्यारे से मैसेजेस ले लेते हैं। गुलशन जी जुड़े हुए हैं साथ में और को कह रहे हैं हैप्पी मदर्स डे, स्पेशली माँ अपनी मामा को, प्रभा को, अपनी सिस्टर दीक्षिता को और आयशा को। आयशा को इतना कहना चाहते हैं, तुम मेरी हमसफर हो और सबसे पहले सच में यही कहता हूँ कि तुम्हारी जो आंखें हैं ना वो ऐसे मेरे दिल को झांक लेती है कि तुम्हारे को हर चीज़ पता चल जाती है क्या है तुम में। यही बात होती है प्यार की, मोहब्बत की। जब आप किसी से बहुत ही प्यार करते हैं तो उसको एहसास हो जाता है और वो इतना कहना चाहते हैं कि हमेशा मेरे साथ रहना और एक दिन जब मेरी ज़िंदगी में मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत पड़ेगी तो मुझसे कभी दूर मत जाना। क्या ब्यूटीफुल मैसेज है, थैंक यू सो मच। साथ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं रफीक मोहित जी और वो भी एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रहे हैं। इसके बाद ये जो अभी हम माइक लेंगे उसके बाद आप ही का गाना सर चलेगा और आप बहुत ही प्यार और मोहब्बत से हमें मैसेज करते हैं, उसके लिए सभी का थैंक यू सो मच। प्रकाशवंती जी जुड़ी हुई हैं साथ में बेल्जियम से और कह रही हैं कि यहाँ पर बारिश बहुत है और यहाँ पर पहले बहुत गर्मी थी और अब बारिश है। मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगी कि आपने कहा कि बहुत सारा काम करते करते आप थक चुके हैं, तो थकिए मत, हमारे साथ जुड़े रहिए आपके ही प्रोग्राम में। बस थैंक यू सो मच आप सभी का जो भी मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं।
0: RM3 Radio.

0: RM3 Radio.
1: माँ,
2: माँ एक ऐसा शब्द जिसमें प्यार,
1: अपनापन और पूरा संसार बसता है।
3: माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा।
2: माँ की मुस्कान से घर में खुशियाँ खिल उठती हैं।
1: उनके आवाज से मन को सुकून मिलता है। इस मदर्स डे पर हमारी पूरी एमबीसी रेडियो टीम की ओर से अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।
2: मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: दिलों की आवाज की आवाज दिलों की आवाज।
1: घर बड़ा हो या छोटा, अगर उसमें अपनापन हो तो वही दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह होती है। आप जहाँ भी हैं, बस हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। और आपके अपने कॉल्स और मैसेजेस के साथ आप जुड़े हुए हैं और मैं हूँ आपके साथ पूनम, तो मुझे भी अच्छा लगता है। आपके मैसेजेस पढ़ के खुशी मिलती है और आप सबको भी अपने मैसेजेस पढ़ के और आपके पसंद के गाने जब सुनते हैं तो आपको खुशी मिलती है। तो चलिए बस दो तीन प्यारे से मैसेजेस लेते हैं। कमलेश रानी जी इस समय हमें सुन रही हैं इंडिया से, और उनकी बेटी पूनम, दीप्ति, नीतू और कमल, राहुल, हिना और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन उनको विश कर रहे हैं और कह रहे हैं हैप्पी मदर्स डे, एंड मैं भी उनको कहूँगी आई लव यू मामा। तो वो मेरे मामा हैं, मुझे भी खुशी हो रही है कि मेरी माँ भी मेरा प्रोग्राम सुन रही है। थैंक यू सो मच। और उसके साथ में सूरज शर्मा साजा जी जुड़े हुए हैं और अपनी बेटी निशाल को कह रहे हैं ए काश तू मैं तेरी माँ होता और काश मैं तेरा पापा ना होता। क्या बात है, क्योंकि वो कहते हैं कि जितना तू अपनी माँ को प्यार करता है, काश वो प्यार मुझे मिला होता तो मैं क्या कहूँ, क्योंकि पापा का कोई डे नहीं होता, पापा तो बस सिर्फ काम करता। और ये सच बात है, पापा के सबके साथ में यही है कि पापा सिर्फ काम करते हैं और मम्मा को सारा प्यार मिल जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में, और थोड़ा सा प्यार थोड़ा सा आप और डाल दो तो बस हो जाएगा, वही प्यार है। शीला जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और अपनी पूरी मकूना फैमिली को विश कर रही हैं हैप्पी मदर्स डे, और सभी लेडीज़ को सारी पूरे वर्ल्ड की सबको कह रही हैं हैप्पी मदर्स डे, क्योंकि आप लोग हो तो सब कुछ है। ये गाना आपके लिए।
2: RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
1: 7:56 हो चुके हैं और अगर आज आपका दिन आपके मुताबिक से नहीं गया तो कोई बात नहीं, चिंता करने की क्या जरूरत है। सूरज ढलता है, फिर से उगता है, उसी तरीके से हमेशा ज़िंदगी चलती रहती है। कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, यही वाले डायलॉग हमेशा याद रखना, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ भी मिले, सुख मिले या ना मिले, दुख मिले, कोई बात नहीं, पर चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा रहनी चाहिए, क्योंकि जितना भी दुख आता है वो अपने आप से निकल के भाग जाता है जब हम वो देखता है कि हमारे चेहरे पर मुस्कान है। तो ये बस नहीं जानी चाहिए, बाकी सब देखा जाएगा। चलिए जी, बहुत सारे प्यारे से मैसेजेस आए, ले लेते हैं। बाबू अनंतवा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सभी को कह रहे हैं हैप्पी मदर्स डे। कह रहे हैं मेरी उम्र तो हो गई है पर मैंने जब तजुर्बा किया

तो मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा औरत बहुत इम्पॉर्टेंट है, उस औरत का सम्मान बहुत होना चाहिए क्योंकि वो माँ है और माँ के साथ वो बहन है। तो हर औरत को मैं हमेशा कहता हूँ हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू सो मच सर। और ललिता जी, ललिता कौशल जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, सभी परिवार और दोस्तों और फैमिली के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती हैं। रिहाना जी भी जुड़ी हुई हैं पोटली से और कह रही हैं तू मुझे कबूल और मुझे भी आप कबूल हैं, सो स्वीट ब्यूटीफुल मैसेज। उसके साथ में ही बहुत सारे ललित जी जुड़े हुए हैं यूएसए से, वो भी कह रहे हैं मुझे अपनी माएँ बहुत पसंद हैं, कहती हैं एक मेरी सास है और एक मेरी माँ है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मुझे मेरे साथ हमेशा वो माओं का प्यार है। तो मैं सभी को कहना चाहती हूँ हैप्पी मदर्स डे, इन्जॉय कीजिए आपका ये गाना। RM3 Radio.

0: continuous music. RM3.
1: RM3 Radio.
2: माँ एक ऐसा शब्द जिसमें प्यार,
3: अपनापन और पूरा संसार बसता है।
2: माँ

0: माँ की मुस्कान से घर में खुशियाँ खिल उठती हैं।
1: उनकी आवाज से मन को सुकून मिलता है। इस मदर्स डे पर हमारी पूरी MBC रेडियो टीम की ओर से अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।
0: मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामना।

0: दिलों की आवाज,
1: आठ बजकर आठ मिनट हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हुए हैं अपने प्रोग्राम के साथ दिलों की आवाज़ के साथ, और मैं हूँ आपके साथ पूनम। तो बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और मैसेजेस आ रहे हैं और सब यही चाहते हैं कि ये जो प्रोग्राम है माँ के नाम पे होना चाहिए, क्योंकि माँ, कल है मदर्स डे और मदर्स डे में हम चाहते हैं कि सब अपनी माओं को प्यार करें, उनके लिए कोई गिफ्ट लीजिए। अगर कुछ नहीं ले सकते तो एक ज़ोरदार जप्फी डाल लीजिए, उनको एक गले लगा लीजिए और उनको कहिए कि आप कितने इम्पॉर्टेंट हैं उनकी ज़िंदगी में। और वही यही चीज़ होती है कि हम सारी चीज़ों को यादें बना लेते हैं और ये यादें हमारे साथ चलती चलती रहती हैं। तो इतने सारे लोगों के मैसेजेस सिर्फ यही है कि हम अपनी मम्मा को बहुत मिस कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि हमारी मम्मा हेवन में है, कई लोग कह रहे हैं हमारे पास है, यहाँ पर ही हैं बट बहुत दूर है, रहती हैं तो रोज़ नहीं मिल पाते, बहुत महीनों साल बीत जाते हैं नहीं मिल पाते। तो मैं उन सभी के लिए इतना ही कहूँगी, माँ तो आपके दिल में होनी चाहिए, माँ घर में होनी चाहिए, माँ प्यार में होनी चाहिए, माँ मोहब्बत में होनी चाहिए, माँ सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको टाइम मिले तो ज़रूर अपने माँ के पास जाया कि जी, चाहे वो लड़का हो या चाहे लड़की, किसी ना किसी दिन आप सबको माँ बनना है। कहते हैं ना कि जो आपकी ज़िंदगी में माँ होती है और वो आपको हर तरह से सपोर्ट करती है, हर तरह से आपको ये कहती है कि हाँ एक दिन ज़िंदगी में आएगा ऐसा मौका जब मैं तुम्हारे पास नहीं होंगी पर हाँ मेरी यादें तुम्हारे साथ होंगी। तो जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें और आपकी मम्मी को हमेशा प्यार मिलता रहे। तो इन्जॉय कीजिए आपका ये नेक्स्ट सॉन्ग।

0: खेलों की आवाज।
1: दोस्तों 8:16 हो चुके हैं और आप जुड़े हैं अपने प्रोग्राम दिलों की आवाज़ के साथ, जहां पे दिल की बातें होती हैं। इस समय हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं व्हाट्सअप के थ्रू और साथ में कॉल्स के थ्रू, बट हम इतना कहेंगे कि आप सबके फ़ोन के लिए और मैसेजेस के लिए थैंक यू, आप इतना प्यार और इतनी मोहब्बत देते हैं। तो अभी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं स्वेनल, और वो कहती हैं कि इस समय मेरी मामा जो है मालिनी इस धरती पर तो नहीं है, हेवन में कहीं पर छुपी होंगी, बट मैं उनको इतना कहना चाहती हूँ कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। पर मेरे भाई श्रवण ने मुझे इतनी प्यारी भाभी दी है कीर्ति, जो कि माँ के ही बराबर है, और मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। अभिनव कियान और नव्या के लिए भी एक प्यारा सा गाना सुनना चाहती हैं, सुनाना भी चाहती हैं और सुनना भी चाहती हैं। उसके साथ में बीना जी हैं कतरोबोन से, और वो भी एक बोल रही हैं कि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, वादियाँ बदल गई हैं, तो क्यों ना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में एक प्यारा सा गाना सुन लिया जाए। अनीता जी फ्लिक ऑफ फ्लाक से जुड़ी हुई हैं, उनकी दोनों बेटियाँ उनके साथ डिनर पर जा रही हैं कहीं पर, और कह रही हैं प्लीज़ एक प्यारा सा गाना ज़रूर चलाना माँ के नाम पर। तो बिल्कुल हम माँ के नाम पर चलाएँगे। साथ में शारदा जी जुड़ी हुई हैं, और सभी

सुंदर सुंदर फैमिली को विश कर रही हैं हैप्पी मदर्स डे, और सबको इतना कह रही हैं कि सारी माओं को हैप्पी मदर्स डे, बट साथ में अपना ख्याल भी रखें, क्योंकि जब आप ख्याल नहीं रखते तो माँ उदास हो जाती है, और अगर कोई अपनी माँ का ख्याल रख सकता है तो थैंक यू उन सभी का जो अपनी अपनी मामा का ध्यान रखते हैं। तो भाई इंजॉय कीजिए आपके गाने, ये ममता भरे गाने। RM3 Radio.

0: माँ।
1: माँ एक ऐसा शब्द जिसमें प्यार,
0: अपनापन और पूरा संसार बसता है।
2: माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा।
1: माँ की मुस्कान से घर में खुशियाँ खिल उठती हैं।
0: उनके आवाज से मन को सुकून मिलता है। इस मदर्स डे पर हमारी पूरी एमबीसी रेडियो टीम की ओर से अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।
1: मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज
1: 8:34 हो चुके हैं और आप जुड़े हुए हैं आपके अपने प्रोग्राम दिलों की आवाज़ के साथ और बहुत सारी यादें और वो बहुत सारी बातें हमें लोगों के जरिए सुनने को मिल रही है और हमें पता चलता है कि किसके किसके दिल में कितने सारे छाले हैं। किसी के माँ बाप चले जाते हैं इस दुनिया से या किसी के परिवार का कोई सदस्य, तो हमें भी एहसास होता है कि वो सेपरेशन की फीलिंग कितनी खतरनाक होती है। बट हम इतना ही आपको कहेंगे कि ये समय है, ये ज़िंदगी है, ऐसे ही चलती रहेगी। हमने भी एक दिन जाना है, पर हमेशा मुस्कुरा और इंजॉय करते हुए ज़िंदगी में रहना चाहिए। जो चला गया उसको याद करते रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, पर हाँ उसके लिए अपनी ज़िंदगी को ख़त्म और ख़राब नहीं करना चाहिए। इस तरह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं उमा जी और कहती हैं कि मेरी मम्मी जो जिनका नाम बहुत ही प्यारा है यादिती, मैंने कभी नहीं सुना था, मुझे बहुत प्यारा लगा, और कहती है आज अगर वो होती तो 90 ईयर्स की होती और मैं उनको यही कहती हूँ कि वो मैं उनकी लाडली थी, मैं अपने पापा की भी लाडली थी और चले जाते हैं कहाँ लोग पता नहीं चलता। ये वो गाने की फरमाइश कर रहे थे, पर वो गाना अभी मेरे पास शायद नहीं है, बट फिर भी मैं चाहूंगी कि उनके लिए दूसरा गाना ज़रूर चलाऊंगी। ज्योति जी मधुप फैमिली के लिए एक प्यारा सा गाना सुनना चाहती हैं। राधा जी जो कि एक प्यारा सा गाना सुनना चाहती है अपने पूरी फैमिली के लिए। संध्या जी जो कि अनीता जी को बर्थडे विश कर रही हैं और कह रही हैं श्वेता, लोकेश, संदीप, कृष्णा एंड विजय जो कि उनके हस्बैंड हैं जो इस दुनिया में नहीं है, पर वो उनको बहुत मिस करती हैं और कह रही हैं कि उनको उनके लिए एक प्यारा सा गाना ज़रूर चलाएगा। चलिए भैया, आप उनके लिए एक प्यारा सा गाना मांग रहे हैं और मैं यही कह रही हूँ कि हमेशा वो खुश रहें, इंजॉय करें अपनी ज़िंदगी को और प्यार भरे इस गाने के साथ में। ये जो प्यारा सा गाना है महेंद्र कपूर का है, तो क्योंकि महेंद्र कपूर का आवाज़ जो है ना बहुत ही मस्त होती है, तो मैं हैप्पी बर्थडे के लिए विश करते हुए ये वाला गाना उनके नाम करती हूँ।
0: RM3 रेडियो रेडियो रेडियो

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
2: इसी के साथ आज की महफिल यहीं तक, मुस्कुराते रहिए, बस यहीं पर ख़त्म करते हैं क्योंकि 8:48 हो चुके हैं और बहुत सारे मैसेजेस और कॉल्स मैं नहीं ले पाई हूं क्योंकि बहुत सारे आते हैं, कहां से मैं सारों को मैनेज कर पाऊं। पर फिर भी एक लास्ट मैसेज है बिडवाग विदेशी जी का, जो कि अनुषा के लिए एक प्यारा सा मैसेज, और सभी लवर्स जो एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं, इतना मोहब्बत करते हैं, और उन सब से यही कहना चाहते हैं कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये कोई ऐसी चीज़ है कि जो कि बस ऊपर से, आकाश से कहते हैं, यूनिवर्स से आती है, और इसी मोहब्बत के नाम पे हमारी ज़िंदगी चल रही है। तो अनुषा को भी यही कहना चाहते हैं कि तुम हो तो मेरा सारा जहान है, नहीं तो मुझे ये जहान नहीं चाहिए। क्या प्यारा सा मैसेज है, यही होती है मोहब्बत और प्यार। और मैं थी आपके साथ पूनम, इंजॉय कीजिएगा अपना ये लास्ट सॉन्ग और आखिरी गाना मेरी तरफ से आप सबके नाम।
3: RM3 रेडियो।

0: मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: भोजपुरी,
3: भोजपुरी

0: तड़का
1: आज की रात रत्ना के संगी एमबी

रेडियो मनोरंजन पर रोज रात के चले ला 9 बजे से लेके 11 बजे ले भोजपुरी तड़का कार्यक्रम। और आज तस्तामदी के रात है रत्ना आप सबको के साथ देवे खातिर आप सबको के संगे जुड़ गल हुआ जहाँ कहूँ से भी साथ देवत हुआ बस आशा है ये करब जा आप सब कोई मजे में हुआ। और आज तब बहुत एक खास दिन है कहे कि काल मनावब जा मातृ दिवस। और मातृ दिवस के अवसर पर आज ढेर कोई अपन ममा हिया घूमे गल हवन। तो चला आज के कार्यक्रम की बहुत लाजवाब गीत से सजावब जा। और ये तोहरा मन बा कोनो गीत खास गीत तोहर माता जी खातिन तोहर पिताजी खातिन तोहर परिवार खातिन डेडिकेट करे के तो जरूर हमने के टेलीफोन करिए 4028085 पर। और आज तक ढेर जगह पर पनिया बरसता और ठंडा तो जैसे नीमन से शुरू हो गल बा। तो चला आज के ठंडा ठंडा मौसम में बढ़िया बढ़िया गर्मा गर्म गीत के संगे संगे गर्मा गर्म चुटकुला तोहर खातिन लेके आल हई। आशा करब जा के आप सब कोई हमनी के प्यार से साथ दे बजा रात के 11 बजे ले। तो चला आज के हई बढ़िया कार्यक्रम के शुरुआत एगो बढ़िया गीत के संगे करब जा। चंद्रदेव जी बोधन के आवाज में रखल आज के हई पहला गीत और सब माता पिता खातिन हई गीत डेडिकेट करब जा।

फिर कोई हमनी के संगे जुड़ गल हवन बस प्यार से ऐसे साथ देते रहिए जा और मजेदार कार्यक्रम सजा बब जा तो हर पसंदीदा गीत के संगे। और आज के जो पहला गीत के पसंद आल हवन आई आलवन शांति शांता सुकागी की ओर से चाची शांता सुकागी हमनी के बोले गीता गजादर के माँ बाप के मोल है गीत वा तनी चला द हमर खातिन हमर सब परिवार सुकागी परिवार खातिन सेजमिल फॉरेस्ट साइड से तू साथ देवत हवा तोहर पतो हवन किरण संगे हवन तोहर चार गो बेटा सुदेश गाविन सुजीत और ई अशोक और संगे हवन तोहर नाती प्रावेश नातीन संजना और संगे हवन बेटा यशवीन और शर्मिला सुकारी। तो चला सब कोई सुकारी परिवार खातिन माँ बाप के मोल और हाइये गीत करब जा रूजबेल से नवीन लक्ष्मण जी खातिन भी वो भी हाइये गीत के मांग करत हवन और उनकर पत्नी हवन चित्रा जी संगे हवन उनकर परिवार निवेदिता और सच्चिदानंद जी संगे हवन ललिता और धनराज चरण जी मोदालबिया बगल से बेटी स्वीटी संगे राज और अमृता ओबिलक हवन न्यू ग्रोव बगल से और रमेश और प्रीति जी साथ देवत हवन गाँव बुआ बगल से। तो चला गीता गजाधर के आवाज में रखल है गीत सुनब जा आउरी चाचा चाची के किस्सा तो सुनते चला चाचा गजोधर कौन दिन का जनी कौन भूत सवार होगल ओकर कपार में चाची के बोले हाँ हम सोचा था तनी हरिद्वार जाके हम अपन सब पाप धो देव। तो चाची बोले हाँ अपन पहला पाप तो बताव धोए तो हम हइए हइजे हइजे बैठे बैठे धो देव तोरा नहीं जरूरत पड़ी हरिद्वार जाए के।

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम रात के 9:13 और मजेदार कार्यक्रम के तो शुरुआत हो ये गल बातें और बहुत ही मजेदार ठंडा ठंडा मौसम में ऐसा बढ़िया बढ़िया गीत जब सुने के मिलेला बहुत मजा लगेला बहुत आनंद आवेला। तो चला आज के अगला गीत जो है अनीता जी खातिन चला बब जा अनीता लाल जी जे हमनी के संगे जुड़ गल हवन मॉडल ब्या बगल से संगे हवन सब उनकर ईतू परिवार लाल जी परिवार गोगा और नागेश्वर परिवार और सब कोई माता लोगन के वो आज के दिन के बहुत बहुत शुभकामना देवत हवन। और लीलो माथुर सुकन के आवाज़ में रखल सुंदर लाठी है गीत के उ मांग कर ले हवन। तो चला है ये गीत चलाओ अब जा उनकर खातिन उनकर सब परिवार खातिन और खुशहाली के साथ जुड़ल रहिए बढ़िया मजेदार कार्यक्रम। आउरी चाचा के का बोलब चाचा हमनी के चाची के बहुत प्यार से एक दिन बोले एगो बात तो बतावा कौन अच्छा काम कर ले रहला कि तोरा हम मिल गल। तो चाची बोले कौनो अच्छा काम नहीं कर ले रही हो हम तो जानत हव हमर गांव के जो कुआं है वहाँ आप ऐसे पाछे से ऐसे 2 रुपया फेंकले रही और भगवान से मंगले रही कि भगवान एगो अच्छा पति हमनी के दे दिया तो तू मिल गल। पर बाद में हम भगवान से पूछले रही हे भगवान है का दे देलक तो जानत हव भगवान का बोले बोले 2 रुपया में तो ऐसने मिली का बोलत हवा हो

0: खरीद हॉल आज की रात रत्ना के संगे एमबीसी रेडियो पर।
1: भोजपुरी तड़का
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम 9:21 और ही चला है जा पर उमा जी बहुत प्यार से हमनी के संगे जुड़ गल हवन फोन जूसाक से। और आज अपन माता पिता के बहुत याद करत हवन। अपन स्वर्गीय माता पिता खातिर एगो बढ़िया गीत पानी के बुलबुला। और उमा जी है जोन गीत है पानी के बुलबुला है अभयदानंद बिजन नहीं पर महेश विश्वजीत गईले हवन। और हई ये गीत करब जा तोहर मौसी खातिन और बहिन भानु खातिन। चला है जा पर नोवेल फॉन्स से हमनी के संगे जुड़ गल हवन गीता बाई और उनकर बेटा हवन शिवाजी पतो हवन श्वेता बाई बेटी सुधा बाई संगे हवन बिजवी बाई दिया बाई और प्यार मल्हार। चला ठंडा करता जितना छोटा बाबू घर में हवन उन सब कोई के ध्यान रखे जा काहे के ऐसन ठंडा के मौसम में वो हाली से उनकर बीमार हो के बहुत जस्ती संभावना रहेला। और ही जितना बड़ा बुजुर्ग भी हवन उन सब कोई के भी बोला था अपन ध्यान रखिए स्वास्थ्य के। और मजेदार गीत के संगे संगे हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ब जा। चलो मानती जी हमने के बोले आहा सुंदर लाठी के है गीत तो हमनियों के बहुत खुशी रहल। चला है ये गीत तोहर खातिन हो नोवेल फॉन्स से तू भी साथ देवत हवन तोहर परिवार संगे तोहर दूगो बहिन आरती और अनंती दूगो पतो हवन अनुषा और उर्वशी और दूगो नाती नवन मितिशा और गिरीशा। बहुत बहुत प्यार सब कोई के। चला हंसते मुस्कुराते बस इसने साथ देते रहिए जा और हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ब स काहे के हंस के कैसे जीवन बहुत निमन लगेला। निमन बहुत अच्छा तनाव से दूर हो जाला। तो जैसे हमर चाचा और चाची हमेशा झगड़ा करते रहेला का बोलब चाची कौन दिन खीस में आके चाचा के बोले हम तो जात हई घर छोड़ के तू हमर संगे बहुत झगड़ा करेला। तो चाचा बोले हाँ तू जइयो अपन माँ हियाँ हम जात हई मंदिर। तो चाची बोले काहे हमर वापस आए खातिन मन्नत मंगवा शिवजी से।

भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और मजेदार कार्यक्रम संगे चला है जा पर हमनी के प्यारी सुनीता जी भी जुड़ गल हवन गाँव गुब से और उनको चार गुट बहिन अमृता वीना जी विमला जी सब कोई हमनी के साथ है देवत हवन बहुत प्यार से और चला है जा त्रियोले से चाची ललिता कुशल भी जुड़ गल हवन और आज उनकर सब नाती पोती के नाम लेवत हवन समीक्षा आर्यन विधि विशेष आयान सोन श्रेया आयुषी आलिया आलीना और संगे हवन उनकर बहिन सुदेवी देवीना ज्ञानी संगे हवन छोटी दीदी जे हवन पोला जैसे सुखलाल मौसी दादी प्रभावती भाई आत्माराम और भाई हरीश खातिन और जितना कोई सुनत हवन सब कोई खातिन चला उनकर सब कोई के बोलब जाब मातृदिवस बहुत बहुत अभिनंदन और काल सब मातृदिवस मनाइन जा हई जा पर मीराबाई भी हमनी के संगे जुड़ गए हवन मीराबाई द मियाँ मोडाल भी ऐसे उनकर बेटी और दामाद खातिन वो भी अपन माता पिता के बहुत याद करत हवन बेटी और दामाद संगे पादिया परिवार साथ है देवत हवन तो चल राजीव मंगर के आवाज़ में रखल अगला गीत करब जा उनकर खातिन उनकर सब परिवार लोगन खातिन और चचा चाची के किस्सा तो सुनते चला हो चाची जितना चचा उनकरा परेशान करेला का बोलब चाची जितना खीस में चला चाची बोले जे हम मर जाब एक दिन तब कौन ची करब तो चचा बोले हम भी मर जाब चाची बोले काहे हमर हमर प्यार में हमर गम में बोले नहीं हो हम तो है खुशी के बर्दाश्त नहीं कर सक भाइये से मर जाब

0: खरीद हॉल आज की रात रत्ना के संगे एमबीसी रेडियो पर।
1: भोजपुरी तड़का

चला भोजपुरी तड़का कार्यक्रम संगे संगे साथ देते रहिए जा और ये है जा पर ढेर जगह पर अभी पनिया बरसता ता पनिया बरसता है ये मौसम के संगे संगे बरसेला मूसर के धार है गीत के मांग करत हवन साजिद जी रोजिल से वो हमनी के संगे जुड़ गल हवन और दीना सरोवर उनकर खास दोस्त खातिन और जितना संगतिया हवन उन सब कोई खाती इन बरसेला मूसर के धार चंद्रदेव जी बुदन की आवाज में रखल है अगला गीत करब जा और हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ब सर और चाचा के तो जब देखा तब कौनो ना कौनो परेशानी हमेशा रहेला वो हमने के बोले हाँ जाना था वह है जिंदगी में कोई कोई के तो जिंदगी में होते रही कभी खुशी कभी गम पर हमार जिंदगी ऐसा नहीं हो हम बोले कहा है चाचा तो हर जिंदगी में खुशहाली ही खुशहाली है बोले नहीं नहीं हमार जिंदगी में तो कभी गम कभी उससे भी बड़का गम और कबो कबो तो सबसे बड़का गम आउरी कबो कबो तो है गम के मारे हम खत्म का हो चाचा जब देखा तब ऐसा बुरा बात तू बोलते रहेला कपार फाचीगे हो जाला हमर का बोला

भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का कार्यक्रम रात के 11 बजे ले चली मजेदार कार्यक्रम और ठंडा ठंडा मौसम के संगे संगे चला हाईजा पर दागो जैसे हमने के प्यार से साथ देवा धवन कुमारी जी हंसते मुस्कुराते और साथ गो बहिन संगे और सब रामफल परिवार खातिन गीत के मांग करत हवन और जितना संसार में जितना माता जी हवन जितना प्यार से हमेशा अपन बच्चा लोग के आतान करेलन और खास कर उ माता पिता जे वृद्ध आश्रम में लहे रहेलन और ये सच में बहुत है दुख के साथ अपन बच्चा लोग के अपन लइकवन लोग के आतान करेलन सर सब कोई खातिन प्रार्थना करिए जा और ही चला आशा करब जा कि है गीत जितना माँ लोग सुनत हवन उन सब कोई खातिन और बहुत ही प्यार से है गीत चलावब जा तोहर खातिन और साथ देवत हवन हमनी के ढेर कोई है जा पर श्रोता लोगन जुड़ गल हवन तो चला कुणाल बाबूलाल के आवाज़ में रखल है बहुत ही मज़ेदार गीत सब ममा लोग खातिन

0: भोजपुरी धमाल आज की रात रत्ना के संगे NBC रेडियो पर।
1: नौ बजकर 51 मिनट आवरी चला है जहाँ पर बादवाग विदेशी जी हमने के संगे जुड़ गल हवन और उनकर खास दोस्त अनुषा खेदन खाती ने गो बढ़िया रोमांटिक गीत के मांग कर ले हवन तो चला मुकेश छेदी के आवाज में रखल है बहुत ही मजेदार गीत तो हर खातिन करब जाओ और बढ़िया बढ़िया गीत संगे हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ब स और चचा गजोधर का जानी कौन अपन दिमाग कौन दिशा में दौड़ावे लवनसा हमनी के बोले का जानी है काहे पढ़ाई और शादी ब्याह के आइडिया का जानी केकर दिमाग में आल रहल अच्छा नहीं रहल आराम से सब कोई जंगल में रहत रहलन पत्थर से आग जलावत रहलन और उसने जिंगा लाला करते हम तो चल जाती सा का बोलत हव बोले का चचा कौन जमाना के बात करत हो जमाना कितना आगे बढ़ गल बा सब कोई चांद पे जाए के बात करत और तू अभी जंगल में बैठ के जिंगा लाला करे के बात खोजत हुआ

भोजपुरी तड़का तड़का भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में चला है जहाँ पर हमनी के साथ देवत हवन श्रीमान दनपत जी सोलफेगिनो से और उनकरा तीन कोड़ी दो बरीस हो गलबा और बहुत खास दिन जब हम अपन माँ की याद करीला और ऊ है हमर जन्मदिन के दिन कहे के उही दिन जब एगो लइकवा के जन्म होला उही दिन एगो माँ के भी जन्म होला माँ अपन जान पर खेल के उस बच्चा के उस लइकवा के जीवन देवेला और यह आसान नहीं है कहे के उतना दर्द से 9 महीना उपोस के ओकरा बड़ा करेला जन्म देवेला तो चला आज के दिन जितना कोई अपन जन्मदिन मना हुआ था वन आज के पूरा हमारे टीम देने से आप सब कोई के जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई और है गीत है बसंत सुपुल के आवाज़ में रखल दनपत जी खातिन चलाओ अब जा हैप्पी बर्थडे

0: माँ की मुस्कान से घर में खुशियाँ खिल उठती हैं।
1: उनके आवाज से मन को सुकून मिलता है। इस मदर्स डे पर हमारी पूरी एमबीसी रेडियो टीम की ओर से अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।
0: मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: भोजपुरी तड़का
1: तड़का
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम औरी चला 10 बज गल बा औरी मजेदार कार्यक्रम 10 बजकर 10 मिनट हुआ था और कार्यक्रम के जारी रखब स रात के 11 बजे ले 4028085 पर तो हमनी के टेलीफोने करे सकबा हईजा पर प्रेमिला जी हमनी के साथ देवत हवन कात को बोन से और उनकर माँ के बहुत याद करत हवन तीन गो बहिन हवन तारा शोभा और माया और संगी हवन उनकर भाऊजी और का बोला उनकर बेटी जे ओकुले रहलन उनकर हियाँ दूगो नन्ना बुन्ना बालक है जरा एक साल हो गल बा चला उनका जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई और एक बरिस के अवसर पर बिल्कुल माँ बने के एगो ऐसा एहसास है वो बहुत एक खास रहेला और जैसे सुनीता नन को की आवाज़ में रखल है गीत बहुत ही बढ़िया गीत माँ बाप के घर में तू रानी नियर रखब ऐसा नहीं बोला था कि सास लोग नहीं रखेलन अपन पतो लोग के बहुत ध्यान रखेलन आजकल के सास भी बहुत अच्छा हवन अपन पतो लोग के बहुत ख्याल रखेलन स और खाई के पका के सब निमन से माँ नियर उकरा प्यार देवेलन स तो चला आज के कार्यक्रम में आगे बढ़ब स और मजेदार गीत अगला गीत जो है उनकर खातिन प्रेमिला जी और उनकर सब परिवार लोग खातिन चलाओ अब जा बहुत ही मजेदार कार्यक्रम चलाता है हईजा पर और कार्यक्रम के संगे ढेर कोई हमनी के साथ है देवत हवन हईजा पर चलाल हवन अनीता जी फ्री कॉन्फ्लाक से हमेशा हमनी के बहुत प्यार से साथ है देवत हवन और बोला था वन फ्री कॉन्फ्लाक बगल तक ढेर पनिया बरसता और सब कोई के बहुत बहुत मातृ दिवस के शुभकामना देवत हवन एमबीसी के टीम के पूरा बहुत शुभकामना देवत हवन चला आपके भी बहुत बहुत प्यार और ही चला अगला गीत चलाओ अब जा तोहर खातिन राजकमल चिंतामणि की आवाज़ में रखल है बहुत खास हम खास गीत है सब कोई ममा लोग खातिन और हंसते मुस्कुराते हम भी आगे बढ़ब जा और का बोलब जा चाचा के किस्सा तो सुनते चला चाचा हमने के कौन दिन बोले हाँ जौन चीज भूले के रहेला वो बतवा हमेशा याद रहला रह जाला और जौन चीज जौन बतवा याद रखे के रहेला वो बतवा भूल जाइला बुझाता हमर दिमाग के कोनो हैक कर दे ले बा ये से हमने के याद नहीं पड़ा था कौन चीज कहाँ रख ले हमन

0: संस्कृत हॉल आज की रात रत्ना के संगे एमबीसी रेडियो पर।
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम मजेदार कार्यक्रम रेडियो रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस की हमार जितना श्रोता लोगन हवन सब कोई साथ देवत हवन बहुत ही प्यार से 10:17 हो गल बाते और जितना कोई रात के काम करत हवन उन सब कोई के भी बहुत बहुत हिम्मत और इस सच्चे के हाई जोन गीत रहल बहुत मजेदार राज कमल चिंतामणि के आवाज में रखल बोलल जाला ना कि जब माँ रहेला तब कोई नो कदर नहीं रहेला पर जब माँ चल जाला तब बहुत याद आवेला माँ के काहे के माँ एगो ऐसन व्यक्ति है जे दुनिया के सब प्यार तोहरा पर तोहर पर निछावर करेला तोहर पर लुटा देवेला और बहुत कम थी लाइक वन ऐसा रहेलन जे गंती लेवे ला अपन माता पिता के तो चल माता पिता के गंती ल और ही बहुत ही प्यार से काहे के तोहर जीवन में भगवान नियर हवन। चल आगे बढ़ब से एगो बढ़िया गीत संगे और माँ बाप के सेवा करे के है ये सबसे सच्चा सुख है।

भोजपुरी तड़का कार्यक्रम 10:23 और हाईजा पर पूर्णिमा जी हमने के संगे जुड़ गल हवन। पूर्णिमा फुकीरा बहुत बढ़िया कलाकार हवन और अगिवे जो गाँव पौ से साथ देवत हवन अपन मामा के बहुत याद करा था। और आज पूर्णिमा फुकीरा जी हमने के बोले लागी नहीं छूटे राम के हई गीतवा चला द काहे कि हमर माँ जब भी रहल वो हई गीत बहुत खुशी रहल गाय के सुने के तो जरूर है गीत तोहर खातिन चलाओ अब जा और तोहर घर घर परिवार के जितना लोग हवन सब कोई खातिन तोहर बेटी पिंकी पूजा प्राविनी पूनम तोहर बेटा हवन प्रावेश पत्तो खातिन और जितना कोई सुनत हवन उन सब कोई खातिन चलाओ अब जा है गीत और तू हमनी के संगे जुड़ गल हवन गिवे जो गाँव पर से तो चला है गीत खुशी के संगे लागी ना ही छूटे रहो गीत गायत्री जी हमनी के हमेशा खुशी रहेलन सुने के नोवेल फ्रांस से चला उनकर खातिन उनकर बेटा अजय मामी हवन कल्याणी मोहन और उनकर भौजी शकुंतला खातिन

चला हाइये गीत जोड़ अब जार श्यामा जी खातिन श्यामा रघुनंदन हमनी के साथ देवत हवन घों गो बगल से उनकर भैया जयप्रकाश भौजी हवन नम्रता केशव युधीश विश्वानी जी और वीना रामफल उनकर खास दुगो

0: आज की रात रत्ना के संगे एनबीसी रेडियो पर।
1: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का कार्यक्रम के आगे बढ़ाओ अब सर। और आज जन्मदिन मनावत हवन का नीश, 11 बरिस के होगल हवन और कानिश दसोए, उनकर मामा हवन पूनम, पापा रोशन, नानी हवन पूर्णिमा, बहिन हवन परी और सब कालिया चेटी परिवार, दसोई परिवार, देवी दयाल परिवार, फ्लाक बगल से देवी दयाल परिवार, सात देवत हवन गुडलैंड बगल से कालिया चेटी परिवार और दसोई परिवार हमने के साथ जुड़गल हवन।

वन और कनिष्क के जन्मदिन के बहुत बहुत प्यार से बधाई देवत हवन उनकर प्यारी नानी और उनकर सब परिवार। तो चला हमार तीन दिने से तोहरा जन्मदिन के बहुत बहुत प्यार से हई ललना चलावत हई तोहर खातिर।

0: विश्वजीत की आवाज में रखल है गीत रहल माँ बाप और चलाई कर संगे दमयंती बुलाकी की आवाज में रखल माँ बाप के सेवा। आज के कार्यक्रम बहुत खास है, काहे के काल मनाओ अब जा मातृ दिवस। तो सुनते रह भोजपुरी तड़का कार्यक्रम।
1: भोजपुरी गीत रत्ना के संगे MBC रेडियो पर।

के कार्यक्रम के हाई गीत जो है बहुत ही मजेदार लाखों सुनानो यन और बसंत सुपोल के आवाज में रखल हाई गीत करबजा नेमन परिवार खातिर जे हमनी के संगे जुड़ गल हवन अभी खुशनो बगल से तो चला हाई गीत करबजा नरंजय खातिन और उनकर पत्नी हवन नीला जी संगे हवन बेटा नवीन पतो हवन पूनम साथ हवन बेटी सुनीता और सब नाती पोता खातिन सब निमन परिवार खातिन और चला उनकर परिवार के बलब जा बहुत बहुत मातृ दिवस की शुभकामना चला हंसते मुस्कुराते साथ देते रहिए जा और बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम संगे सब कोई हमनी के साथ दिवत हवन और चचा गजोधर के किस्सा जाते जाते सुनावब जा कि चचा गजोधर बोले आज के जमाना में तनी गर्मी बढ़ जाला तो माँ बाप लोग अपन लैकवा के लेके इतना बड़का देपौस करेलन सजाला हुआ जहाँ बर्फ गिरेला अब जानत हव हमर जमाना में कौन रहल कौन ची रहल हम बोले हम कैसे जानब चचा तोहर जमाना और हम तो आज के जमाना के हई बोले हाँ हमर जमाना में जब गर्मी बढ़त रहल तो जानत हव हमर माँ बाप कौन ची करत रहलन हम बोले नहीं चचा हम तो नहीं जाना था बोले हमनी के लेके जाए नहीं हिया और हुआ जाके हमर कपार पे से सब बाल निकाल के हमनी के टकला कर दे बोला जमाना कैसे बदल गल बा चला हाई बढ़िया सन लाखों सुनब जा और बड़का लाखों सुना नयन और बसंत बसंत सुपोल के आवाज में रखल और हाई लाखों के साथ आज के कार्यक्रम हाईजा पर समाप्त हो जाए काहे के हई बहुत लंबा गीत है तो चला सुनते रह और प्यार से साथ देते रह और सब कोई के फिर उसे बोलब जा मातृ दिवस बहुत बहुत अभिनंदन फेरों से भेट आप सब आवत सामदी के रात के 9 बजे से लेके 11 बजे ले भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में तला चला हंसते रह मुस्कुराते रह और इसी के साथ रत्ना को दीजिए अनुमति नमस्कार शुभ रात्रि।

सुनो, बस तू ऐसे काम पड़ल वहां।

ahí pasa.

जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरी पल रेडियो मॉरिशस के साथ। रेडियो मॉरिशस के साथ जुड़े रहने वाले हमारे सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं को नीतुषा का करजोर प्रणाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बस इस रात्रि को और खूबसूरत बनाते चलें। तो आइए हमारे हम सफर बनते चलें और आपका स्वागत है सुनहरे पल कार्यक्रम में।

आज जिस कलाकार के बारे में हम बात करने वाले हैं श्रोताओं, वो कभी एक्टर भी हुआ करते थे, निर्माता और निर्देशक माने कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी थे बॉलीवुड में, फिल्म इंडस्ट्री में। कौन थे वो? वो थे विजय आनंद। उन फिल्म मेकर्स और एक्टर्स में से एक थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा को एक नई सोच, एक नए स्टाइल और एक नई पहचान दी। उन्हें प्यार से गोल्डी आनंद भी कहा जाता था। वो सिर्फ वैसे एक एक्टर नहीं थे बल्कि एक ब्रिलियंट डायरेक्टर, जैसे कि हमने कहा, लेखक, राइटर और एडिटर भी थे। उनकी फिल्मों में रोमांस, सस्पेंस, इमोशंस और म्यूजिक का अनोखा संगम देखने को मिलता था।

0: काट के
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

विजय आनंद का जन्म 22 जनवरी 1934 को हुआ था। वो मशहूर आनंद परिवार से संबंध रखते थे। बड़े भाई तो थे ही देवानंद, बॉलीवुड के एवरग्रीन सुपरस्टार, और दूसरे भाई चेतन आनंद एक प्रसिद्ध फिल्ममेकर थे। इस तरह सिनेमा का टैलेंट उनके खून में ही था, लेकिन विजय आनंद ने अपनी अलग पहचान अपनी क्रिएटिविटी और डायरेक्शन स्टाइल से बनाई।

डायरेक्टर के रूप में विजय आनंद ने हिंदी सिनेमा को कई यादगार फिल्में दी। उनकी डायरेक्शन की सबसे खास बात थी कैमरा एंगल्स, सॉन्ग पिक्चराइजेशन और स्टोरी टेलिंग। उन्होंने गानों को सिर्फ गाने की तरह नहीं बल्कि कहानी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बना दिया। उनके फिल्माए हुए गाने आज भी सिनेमैटिक मास्टरपीसेस माने जाते हैं।

दिमाग पर आप ही जोर लगा रहे होंगे कि हाँ कुछ फिल्में तो याद आ रही हैं और कौन कौन सी मूवीज विजय आनंद साहब ने बनाई, तो उनकी सबसे मशहूर फिल्मों में से गाइड का नाम सबसे ऊपर आता है। यह फिल्म हिंदी सिनेमा की ग्रेटेस्ट फिल्म्स में शुमार की जाती है। इस फिल्म में देवानंद और वहीदा रहमान की जोड़ी ने क्या कमाल कर दिया था। फिल्म की कहानी, डायरेक्शन, म्यूजिक और इमोशंस ने ऑडियंस के दिल को छू लिया। आज फिर जीने की तमन्ना है या फिर तेरे मेरे सपने, और भी गाने हैं भाई, सब के सब आज भी एवरग्रीन है।

जैसे कि हमने कहा, म्यूजिक के प्रति उनका नजरिया भी कमाल का था। एसटी बर्मन और आरडी बर्मन जैसे लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ मिलकर उन्होंने बॉलीवुड को कई अविस्मरणीय अनफॉरगेटेबल सॉन्ग्स दिए। उनके गाने सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि महसूस भी किए जाते।

बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, इस समय आप सुनहरे पल कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। वैसे विजय आनंद की फिल्मिंग स्टाइल बहुत ही मॉडर्न और स्टाइलिश मानी जाती थी। कैमरा मूवमेंट्स, लॉन्ग शॉट्स और क्रिएटिव एडिटिंग के मामले में वो अपने जमाने से काफी आगे थे। आज भी कई फिल्म मेकर्स उनसे इंस्पायर होते हैं। विजय आनंद साहब जो थे सस्पेंस थ्रिलर फिल्म्स के भी मास्टर माने जाते थे। जुअल थीफ, जॉनी मेरा नाम जैसे फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी। इन फिल्मों में उनका डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, थ्रिलिंग प्रेजेंटेशन ऑडियंस को सीट से बांध कर रख देते थे। जॉनी मेरा नाम में देवानंद और हेमा मालिनी की जोड़ी भी बहुत ही पसंद की गई थी।

जैसे कि हमने आपको बताया कि विजय आनंद साहब सिर्फ डायरेक्टर ही नहीं थे बल्कि एक अच्छे एक्टर भी थे। उन्होंने कई फिल्म्स और टीवी सीरियल्स में एक्टिंग भी की और अपनी कॉल्म पर्सनालिटी और एक्सप्रेसिव एक्टिंग से लोगों का दिल भी जीता। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ही ग्रेसफुल और सोफिस्टिकेटेड थी।

उन्होंने हिंदी सिनेमा को सिर्फ एंटरटेनिंग ही नहीं बल्कि आर्टिस्टिक और क्लासी बनाने में भी बहुत बड़ा योगदान दिया। उनकी फिल्में आज भी नए फिल्ममेकर्स और सिनेमा लवर्स के लिए एक स्कूल की तरह है। 23 फरवरी 2004 को विजयानंद इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनका सिनेमा, उनकी फिल्में और उनका क्रिएटिव मैजिक हमेशा अमर रहेगा। बॉलीवुड के इतिहास में उनका नाम हमेशा इज्जत, अदब और प्यार से लिया जाएगा। शुभ रात्रि, प्रणाम।

ज़्यादा अहमियत है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सैयदुना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और तरबियत औलाद के उसूल के मौजू को डिस्कस किया जाए। नौजवान नस्ल, नई नस्ल जिस तबाही की तरफ सुबह मसा रवा दवा है, वो हमारे और आप सबके सामने जवानियां लुट गई, शबाब लुट गए, हर तरफ माँ बाप ख्वा बेटे हों के या बेटियां हों उनसे परेशान, वो औलाद जो माँ बाप के लिए बायस तस्कीन होती है, वो माँ बाप के लिए अजाब बन जाती है, वो माँ औलाद जिनसे माँ बाप की जिंदगी में एक सुकून होता है, वही औलाद माँ बाप की जिंदगी से सुकून और पीस छीन रहे हैं। इसका मेन रीजन हम खुद हैं कि हमने अपने औलाद की तरबियत इस्लामी खतूत पर न की, इस्लामी उसूलों पे नहीं की। फिर उसके नताइज हमारे सामने। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी और औलाद की तरबियत के उसूलों में से आज हम दो डिस्कस कर रहे हैं। उन्हें ज़हन नशीन फरमाएं और उन खतूत पर औलाद की तरबियत करें तो इंशाअल्लाह फिर आपकी औलाद भी नेक होगी, साले होगी, मुती और ओबीडियंट होगी। सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम और सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम की जिन खतूत पर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तरबियत की, अगर उन्हीं उसूलों पर हम तरबियत करें औलाद की तो फिर फैजान सैयदना इस्माईल और फैजान सैयदना इसहाक अलैहिमुस्सलाम हमें अपनी औलाद की जिंदगियों में नजर आए। पहला उसूल इकामुस्सलाह, एस्टेब्लिशिंग द प्रेयर, नमाज, सलाह, नमाज कायम करना, ये पहला उसूल और बेसिक प्रिंसिपल है औलाद की तरबियत के। माँ बाप खुद भी नमाज के पाबंद हो जाएं और औलाद को भी बचपन से नमाज का पाबंद बनाएं। माँ बाप खुद भी अपने लिए दुआ मांगे कि वो नमाज के पाबंद हों और साथ साथ औलाद के लिए भी ये दुआ मांगे कि अल्लाह पाक
उन्हें भी नमाजी बनाए।

पहला उसूल है जो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से और आपकी तालीमात से हमें मिलता है। जब एक शख्स नमाज न पढ़ता या फिर उसके माँ बाप नमाज न पढ़ते तो फिर उसका अंजाम ऐसा होगा जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये बात फिर ताबीज से नहीं होगी, फिर किसी के पास आने जाने से नहीं होगी, ये बात आप खुद बनाएंगे। आज से अल्लाह की बारगाह में ये प्रॉमिस करें, ये वादा करें कि इंशाअल्लाह हम एक नमाज को भी मिस नहीं करेंगे और अपनी औलाद को नमाज का पाबंद बनाएंगे। आज से कोशिश करें, ज्यादा नहीं, मैं आपको फकत एक वीक का टाइम देता हूं। माँ बाप भी नमाज के पाबंद हो जाएं और जितने बड़े छोटे बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, वो भी नमाज पाबंदी से पढ़ें। फिर देखें कि कैसे घरों का माहौल चेंज होता, फिर घरों में आप देखें कैसे सुकून और पीस और अल्लाह की रहमत करती है। और नंबर दो, खुद भी दुआ की इंपॉर्टेंस समझें और अपनी औलाद को भी दुआ की इंपॉर्टेंस बताएं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सप्लिकेशन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वोकेशन, मा हिया अहमियत दुआ, कि दुआ की अहमियत क्या है। और साथ साथ अल्लाह जल्ला मिन्हू से ये भी मांगे कि ए अल्लाह, हमने और हमारी औलाद ने जो दुआ मांगी है या हम मांगते हैं उसे कबूल फरमा। खुद भी और अपनी औलाद से भी कहें कि वो अपनी दुआओं में इस बात को जरूर शामिल करें और औलाद को कभी बद्दुआ न दें। वो आपको जितना ही परेशान करें माफ कर दें, तकलीफ दें माफ कर दें। बजाय बद्दुआ के माँ बाप को चाहिए कि वो औलाद को दुआ दें, इसलिए कि 24 घंटे में एक टाइम ऐसा होता है कि जिसमें दुआ बद्दुआ दोनों कबूल होती है। तो कभी तो ऐसा टाइम आएगा कि आपकी दुआ कबूल हो जाए, अगर आप बद्दुआ दें तो खुदा ना खास्ता हो सकता है कि वो कबूलियत का वक्त हो और बद्दुआ कबूल हो जाए। वो जितना भी सता है, सिर्फ औलाद नहीं, पूरी उम्मत मुस्लिमा या पूरी उम्मत जो भी आपको तकलीफ दे सताए, आसान नहीं है उस मौके पे दुआ दे, लेकिन अल्लाह के हबीब की सुन्नत है बदमाशों को दुआ देना, तकलीफ देने वालों को, सताने वालों को, तीर बरसाने वालों को, कांटे बिछाने वालों को दुआ देना, ये अल्लाह के हबीब की सुन्नत है। तो आज से मामूल बना लें दुआएं मांगने का। जुम्मतुल मुबारक में असर से मगरिब का जो टाइम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें दुआएं होती है। घरों में अहतमाम करें, मगरिब सूरज

डूबने से पहले, अगर ज्यादा पहले ना हो सके तो कम से कम 10 मिनट पहले जिक्र करें, दुरूद शरीफ पढ़ें और दुआएं मांगें अपने लिए, औलाद के लिए और पूरी उम्मा के लिए। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बड़ी मुबारक सूरह इब्राहीम में रब्बी जअलनी मुकीम अस्सलाती वमिन ज़ुर्रियती रब्बना वतकब्बल दुआ, ये दुआ सीखी। इसका माना ये है रब्बी जअलनी मुकीम अस्सला वमिन ज़ुर्रियती, ए अल्लाह मुझे नमाज कायम करने वाला, नमाज इस्टेब्लिश करने वाला बना और मेरी औलाद नमाज कायम करने वाला, इस्टेब्लिश करने वाला बना, और ए अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमा। रब्बी जअलनी मुकीम अस्सला, ओ माई सस्टेनर, ओ माई मेंटेनर, ओ माई रब, मेक मी द वन हु इस्टेब्लिश प्रेयर नमाज, वमिन ज़ुर्रियती एंड माई चिल्ड्रन एज वेल, وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء او اور سسٹینر مینٹینر اور رب ایکسیپٹ پلیز ایکسیپٹ اور سپلیکیشنز انووکیشنز اینڈ دعاز۔ اب ان دو مبارک جملوں میں آپ نے اللہ سے دعا بھی مانگی، ہمیں اور آپ کو اولاد کی تربیت کے دو عظیم اصول، इसलिए कि अंबिया अलैहिस्सलाम की दुआ में एक पैगाम और एक मैसेज होता है। वो दुआ तो होती ही है, वो मुनाजात तो होती ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें एक पैगाम होता है। तो इस दुआ में एक तरबियत का उसूल है, औलाद की तरबियत के उसूल, और एक मैसेज। सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम को देखें कि जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको अपना ख्वाब बताया तो सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम अपनी सक्रिफाइस के लिए तैयार हुए। लोग आज बड़े बड़े बड़े बड़े प्रॉपर्टीज के मालिक होने के बावजूद भी, बड़े अमीर व कबीर होने के बावजूद भी एक जानवर की सक्रिफाइस करते में इतना टाइम लेते हैं और इतने हीले बहाने तलाश करते हैं और इतने सवाल पूछते हैं कि लगता है ये पूरी दुनिया के जानवरों को ज़बह करने वाले हैं। तो जानवर की सक्रिफाइस इतनी मुश्किल है, तो अपनी जान और वो भी ऐने शबाब। लेकिन आपने वालिद गिरामी की बात मानी, जान देने के लिए तैयार हो गए, बाप की बात पर जान देने के लिए तैयार हो गए। रीजन आपकी तरबियत है और तरबियत का हुस्न और नमाज की पाबंदी है, अल्लाह के जिक्र की और अल्लाह की याद की पाबंदी। आज से आपकी औलाद नमाज के पाबंद हो जाए। मैंने कहा ज्यादा टाइम नहीं दे रहा, मेरा फकत एक हफ्ते में देखेंगे कैसी तब्दीली आती है। तो अल्लाह पाक ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की सूरत में, उनकी जिंदगी में हमारे लिए

0: एक बेहतरीन नमूना रखा और हमें और आपको उन्होंने प्रैक्टिकली बताया कि औलाद की तरबियत कैसे। हदीस पाक में है कि रिदर रब फी रिदल वालिद व सखतुर रब फी सखतुल वालिद। द प्लेजर ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी इज इन द प्लेजर ऑफ पेरेंट्स इन द डिस्प्लेजर ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी इज इन द डिस्प्लेजर ऑफ पेरेंट्स। कि अल्लाह की रजा माँ बाप की रजा और अल्लाह की नाराजगी माँ बाप की नाराजगी में। माँ बाप राजी खुश हो जाएं तो अल्लाह राजी और खुश हो जाए और माँ बाप नाराज हो तो अल्लाह नाराज होता है। तो औलाद माँ बाप के स्टेटस को कब समझे? जब माँ बाप उनको ये बताएं कि रसूलुल्लाह का स्टेटस क्या है, हुजूर का सुप्रीम स्टेटस, हुजूर का यूनिक स्टेटस। जब माँ बाप औलाद को बताएगी तो इंशाअल्लाह मुकाम मुस्तफ़ा से और मुकाम मुस्तफ़ा की तफहीम से औलाद को माँ बाप के मुकाम की तफहीम भी होगी। अल्लाह पाक अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल हमें औलाद की सही तरबियत की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बल।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो।

0: एंड आयल दोनों पे मैच हुआ प्रोफाइल। बायो भी थोड़ा हटके था एंड रेडियस विद इन अ माइल।
1: 52 राइट स्वाइप्स के बाद ये करिश्मा हुआ।
2: आई वाज टोटली वर्थ इट।
1: जिंदगी बदलने आई मेरी जिंदगी में मुस्कान दुआ। पहली

मिलना किसी से था मुझे, दूजा ही कोई मिल गया। नियत जरा बदल गई, मैं भी जरा बदल गया।

0: बता दूं? वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: सी रेडियो हर पल आपके साथ।
1: आबरा कड़ाबरा रिंची बिंची

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: आज संगीत देखा ज्यादा जाता है और सुना कम। बात कर रहा हूँ सिर्फ संगीत की, जो सिर्फ सुना ही जाता है और जिसको सुन सुनकर मैंने बहुत सीखा है। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सलिल चौधरी ने सरल मुकेश की आवाज को जो गंभीर रूप दिया, योगेश के कमाल गीतों से महसूस होता है।